सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 23 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 56 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी

0: की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजारों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है।

मनुष्य मात्र का शरीर अनमोल है, लेकिन यदि उसके हाथों ने कभी दान न किया, नेत्रों ने प्राणियों में ईश्वर के दर्शन न किए और मुख में वसी जिह्वा ने प्रभु का नाम न रटा, तो ऐसे शरीर का कोई मोल नहीं।

जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा, प्रेम और समता का वास है, वहां ईश्वर का आशीष और संतों की कृपा का भी वास स्वतः ही हो जाता है।

आज के कार्यक्रम वंदना में आपने भक्ति रचनाओं को सुना। विस्वर थे अनूप जलोटा, पंडित नारायण राव व्यास, सुरेश वाडेकर, सुरेश गुप्ता, और ये देशभक्ति परक रचना आपने सुनी संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अभी पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज के कार्यक्रम का विषय है जीवन। इस विषय पर आलेख और वाचन श्रीमती विमल अरोड़ा का है। आइए सुने कार्यक्रम चिंतन बिंदु।

0: जीवन विषयक आध्यात्म हमारे गुण कर्म स्वभाव से संबंधित है। हमें चाहिए कि हम अपने में गुणों की वृद्धि करते रहें। ब्रह्मचर्य, सदाचार, मर्यादा पालन और अपनी सीमा में अनुशासित रहना ऐसे गुण हैं जो जीवन जीने की कला के नियम माने गए हैं। व्यसन, अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता व आलस्य अथवा प्रमाद जीवन कला के विरोधी दुर्गुण हैं। इनका त्याग करने से जीवन कला को बल प्राप्त होता है। हमारे कर्म भी गुणों के अनुसार ही होने चाहिए। गुण और कर्मों में परस्पर विरोध रहने से जीवन में न शांति का आगमन होता है और न प्रगतिशीलता का समावेश। हम में सत्यनिष्ठा का गुण तो हो, पर उसे कर्मों में मूर्तिमान करने का साहस न हो, तो कर्म के जीवन कला के प्रतिकूल होते ही वो गुण भी मिथ्या हो जाता है। हम सदाशयी, परमार्थी और सेवाभावी तो हैं और कर्मों में अपनी इन भावनाओं को मूर्तिमान भी करते हैं, लेकिन यदि स्वभाव से क्रोधी, कठोर अथवा निर्बल हैं तो इन सद्गुणों और सत्कर्मों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। किसी को यदि परोपकार द्वारा सुखी करते हैं और किसी को अपने क्रोध का लक्ष्य बनाते हैं तो एक ओर का पुण्य दूसरी ओर के पाप से ऋण होकर शून्य रह जाएगा। गुण, कर्म, स्वभाव तीनों का सामंजस्य एवं अनुरूपता ही वो विशेषता है जो जीवन जीने की कला में सहायक होती है। लौकिक जीवन को सुविकसित एवं सुसंस्कृत बना लेने के बाद ही आत्मिक अथवा अलौकिक जीवन में प्रवेश किया जाए। इसका उल्लंघन करने वाले कभी सफलता के अधिकारी नहीं बन सकते। लौकिक जीवन की निकृष्टता अलौकिक जीवन के मार्ग में पर्वत के समान अवरोध सिद्ध होती है। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सफल जीवन जीने के लिए आध्यात्म से बढ़कर कोई उपाय नहीं है।
1: कार्यक्रम चिंतन बिंदु के अंतर्गत आपने आज का विचार सुना, जीवन विषय से जुड़ा हुआ। इस विषय पर आलेख और वाचन स्वर श्रीमती विमल अरोड़ा का था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस गान। आज के संगीतबद्ध प्रसंग को स्वर दे रहे हैं श्रीकांत पारगांवकर और संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज संध्या 5 बजे आपको सुनवाएंगे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 एवं नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण का सीधा प्रसारण। समय याद रखिए संध्या 5 बजे से।

राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक और रात्रि 9:45 का समय रहेगा कार्यक्रम मंथन का।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बातें। नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में उपयोग विषय पर जानकारी देंगे विजय सिंह नौलखा। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7 बजे से। 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी का, जिसमें आज आपको करवाएंगे यात्रा ब्रज 84 कोस की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय रहेगा काम्यवन से बरसाना तक की यात्रा। प्रस्तुति सहयोग और आलेख होगा रश्मि शर्मा का। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे हवेली संगीत। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर, और प्रातः 9 बजे का समय रहेगा हिंदी वार्ता का। आज आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय जनमानस। आलेख श्रीमती प्रेमलता शर्मा का होगा। जिले की हलचल कार्यक्रम लेकर आएंगे प्रातः 9:15 पर, और 9:30 पर सुनवाएंगे विशेष बातचीत अंगदान महादान। लाल गोयल से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। समय याद रखिए प्रातः 9:30 से। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11 बजे से, और 11:30 पर सुनवाएंगे श्रोताओं को गाने सुहाने। दोपहर 12 बजे का समय होगा कार्यक्रम गीत बात और SMS का। दोपहर 12:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत में जगदीश ब्रजवासी के गाए हुए कुछ लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत करेंगे रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी पर संगत होगी मनमोहन कौशिक की, और परकशन पर संगत होगी गुलाम जफर की। कार्यक्रम वनिता लोक का प्रसारण होगा दोपहर 1:15 से। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका। इस कार्यक्रम में सुनेगा वार्ता सशक्त नारी की पहचान, बजट और बचत में आर्थिक स्वाभिमान। वार्ताकार होंगी डॉ सीमा शर्मा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी पहली सभा का समापन होगा दोपहर 3 बजे, और दूसरी सभा प्रारंभ होगी संध्या 5 बजे से। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर योग और अनुकूलित योग, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, इन सभी विषयों पर आज की बात होगी। साथ ही सुनेगा कानूनी वार्ता कोर्ट मैरिज प्रक्रिया, जानकारी देंगे प्रेम चौधरी एडवोकेट।

संध्या 6:15 पर सुनी का कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस सजीव कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा एकीकृत खेती एवं मछली पालन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा से। इस कार्यक्रम में अपने प्रश्नों के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप भी सीधे बातचीत में शामिल हो सकते हैं।

0: समय याद रखिएगा संध्या 6:15 से 6:45 के मध्य। शाम सुहानी कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7:31 का और एक ही फिल्म से कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 8:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। आज आप सुनेंगे बाला साहब पूंछ वाले का ख्याल गायन राग धानी में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुनिए खेती की बातें। नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में उपयोग, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: भाइयों, आज हम नीम का कृषि एवं पौध

0: रासायनिक कीटनाशक जरूरी नहीं है, क्योंकि भूमि विषैली हो चुकी है, भूजल प्रदूषित हो चुका है, पर्यावरण दूषित हो चुका है, लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया गया है तथा हजारों खेतों व कृषि मजदूरों के प्राण। हरित क्रांति, जिसमें रसायनों के प्रयोग पर बहुत अधिक जोर दिया गया, रसायनों के उपयोग ने समस्याओं को खत्म करने की जगह पर ज्यादा बढ़ा दिया है। कीटनाशकों ने कीट की कई प्रजातियों में परिवर्तन लाकर उन्हें जटिल तथा अधिक खतरनाक बना दिया है। जैविक कृषि क्षेत्र में नीम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। घरेलू कृषि रसायनों और पोषक तत्वों के रूप में नीम का प्रयोग होता आ रहा है, क्योंकि इसमें हानिकारक और जैविक रूप से अपघटित होने वाले तत्व मौजूद हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से यह भी ज्ञात हुआ है कि नीम का सत्व कीड़ों की लगभग 400 प्रजातियों के लिए हानिकारक प्रभाव रखता है। रसायनों के प्रयोग से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में कृत्रिम रसायनों के प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। इस दशा में नीम का प्रयोग प्रभावी जैविक रसायन के रूप में उपयोगी होता जा रहा है। नीम भारत का प्राचीनतम औषधीय वृक्ष है। सदियों से भारतीय किसान अपनी फसल और अनाज की सुरक्षा नीम की पत्ती और बीजों से करते आ रहे हैं। अभी भी ग्रामीण महिलाएं अनाज और ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा नीम की पत्तियों को सुखाकर उनकी एक परत नीचे बिछाकर करती हैं। नीम की पत्तियों, छाल एवं निवोली में जटिल यौगिक पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कि हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में प्रभावी व सक्षम है। नीम कीट के जीवन पर अनेक तरह से प्रभाव डालता है। वह हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है, हानिकारक कीटों को फसल को खाने से रोक देता है, हानिकारक कीटों के अंडों को नष्ट करता है, फसल पर अंडे देने से रोकता है, हानिकारक कीटों की वृद्धि को प्रभावित करता है तथा हानिकारक कीटों के वयस्कों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। नीम के अनेक व्यावसायिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसमें नीम का सत्व कितने प्रतिशत है, उसी पर इसका प्रभाव निर्भर करता है। अब बात आती है इसके प्रयोग करने की विधि पर। नीम की निमोली का सत्व बनाने के लिए 6 महीने से ज्यादा पुराने बीजों को नहीं लेना चाहिए। बीजों को तोड़कर 500 ग्राम निमोली निकाल लेना चाहिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से कूट कर कपड़े की पोटली बांधकर 5 लीटर पानी में डुबो देना चाहिए। रात भर रहने के बाद इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर निचोड़ लेना चाहिए। इसके बाद इस पानी को 100 लीटर पानी में मिलाकर उसमें 1% सस्ता साबुन थोड़ी मात्रा में मिलाकर फसलों तथा सब्जियों में लगने वाले रोगों और कीटों पर छिड़काव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आपसे
2: प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्र प्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
2: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन्, येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः, येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः। आर्थिक क्रियाकलापाश्च प्रवर्त

तीन देवियाँ, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था एस डी बर्मन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना नीरज की थी, संगीत ST परमन का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वरों में आपने सुना फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का ये नगमा। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था ओपी नैयर का। और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म जागते रहो से। गीत को आवाज़ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथी। आइए सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: ओ एवे दुनिया देवे दुहाई झूठा पौंदी शोर ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर ते कि मैं झूठ बोलिया
2: कोई ना
1: कि मैं कुफर तोलिया
2: कोई ना
1: कि मैं

0: झूठ बोल लिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं कुफर तोल लिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं जहर खोल लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।
0: ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले।
2: जागते रहो। इस फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने को है। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए KGMU के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में KGMU जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन

0: शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
1: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए, हर सेक्टर में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं है। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा, घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं।

कार्यक्रम ब्रजमादरी सुनवे वारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर जमुना के तीर विराजें, मुरली अधर धरत मोहन कोटि काम छवि लाजें, कान्हर दास शरण आयो प्रभु चरण कमल चितलायो, भव सागर तारण तरण मेरे मन गिरधर छवि छायो। जे तो कान्हर दास जी की आराधना को पद हतो, कैसे उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना करी। ऐसे सुंदर श्याम जो सबके प्रिय हैं, उनको प्रिय है जे ब्रजधाम, ब्रजधरा जहाँ हमारे कान्हा ने नंगे पांव बिहार की नो है। उन्होंने जा ब्रज में पादुका ग्रहण नहीं कीनी, और ऐसो धन्य जा ब्रज के हम सब वासी हैं, जा ब्रजधाम की हम पे ऐसी कृपा बनी रहे जिस कारण हमें हमेशा ब्रज को बास मिले, और ब्रज के बास मिलवे के बाद ब्रज जन ब्रज 84 की परिक्रमा दे हैं, अपने भाग्य को सुभाग्य सौभाग्य मनावे हैं कि ऐसे ब्रजधाम की उनको प्राप्ति भई है जहाँ पे श्री कृष्ण को जे धाम परम प्रिय है। तो सब जन मिलकर के जब परिक्रमा देवे हैं तो 84 कोस की जे ब्रज मंडल की परिक्रमा है वे है, और कहे हैं ना कि जीव जंतु जो होवे हैं वो 84 लाख के चक्र में फंस करके संसार में घूमे हैं। तो कहीं तो ऐसी भी जाए है कि जो ब्रज 84 का परिक्रमा देवे है वो ब्रज 84 लाख के फंद से स्वयं छूट जाए है। तो ऐसी ही परिक्रमा की बात जब चली है तो अपने कार्यक्रम में आपको ले चले हैं, आगे बढ़े हैं, आपको करवावे हैं यात्रा ब्रज 84 को उसकी। भैया वो पैरंत तो ना ही करोगे लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से तो अवश्य करोगे हमसे जुड़ के। तो आज की परिक्रमा की प्रारंभ हुए हैं काम्यवन से बरसाना तक, और जा कार्यक्रम को आलेख और प्रस्तुति सहयोग हतो रश्मि शर्मा को। आओ सुने कार्यक्रम यात्रा ब्रज 84 कोस की।

जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओ, ब्रज 84 कोस यात्रा के 23वें अंक में हमने किनी कामा और बाकी समीपवर्ती क्षेत्र के अन्य स्थलों की यात्रा, और आज के 24वें अंक में हमारी यात्रा पहुंच रही है काम्य वन से बरसाना मार्ग की माऊ। तो आज यह मार्ग पे जो दर्शनीय स्थल हैं, उनके संदर्भ में आपको जानकारी देंगे।

0: सर्वप्रथम हमारी यात्रा पहुंची है धुलेणा गांव। जब श्री कृष्ण सखान के संग गौचारण के काजे निकरो करते तो संजय को गौचारण करके लौटते बास में लाखन सखान के पैरन थे अगणित गौन के खुर से धूल उड़ के सबरे आकाश में भर जाती। याकू देख के ब्रजवासी को यह सहज ही पता चल जातो कि कृष्ण सखान के संग गौचारण के लिए जा रहे हैं या गौचारण से आ रहे हैं। काम्यवन के पास ही में पूर्व की ओर यह धुलेणा नाम को गांव है जहां सगरो आकाश गयन की रजसों भर जायो करतो। यही के समीप ऊधा गांव भी है जहां समय उद्धव जी श्री कृष्ण को संदेश लेकर मथुरा से नंदगांव आए रहे हैं। वह समय गैल में बिन ने कछु देर विश्राम कीनो। यही काजे उद्धव जी के ठहरवे थे या स्थान को नाम ऊधा भयो। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है आटोर। यहाँ पे श्री कृष्ण दाम, श्री दाम, सुदाम, वसुदाम, स्तोक कृष्ण, कोकिल, ब्रंग, उज्जवल, अर्जुन, सुबल और मधुमंगल आदि प्राण प्रिय सखान के संग आठों प्रहर की क्रीड़ा में भगवान मग्न रहे करते। आटोर शब्द को अर्थ आठों प्रहर की क्रीड़ा से है और या सुख में मग्न रहने से है। यही काजे या स्थान को नाम पढ़ो आटोर। आटोरते आगे बढ़ते भए यानी काम्यवन से 2 मील आगे पूर्व में बजेरा गांव है। बजेरा में रंग देवी और सुदेवी दोनों उनको जन्म भयो। और ये तो आपको पतो ही होगो कि रंग देवी और सुदेवी श्री राधा रानी की अष्ट सखीन में प्रधान सखी हैं। और अब हम आए पहुंचे हैं सुनहरा गांव। सुनहरा गांव श्री राधा जी द्वारा स्वर्ण हार पहनाए के महादेव जी की पूजा करने के कारण यह गांव को सुनहरा गांव के में है। स्वर्णाचल पर्वत के ऊपर बसो होने के कारणों या को नाम सुनहरा कह में है। सुनहरा गांव के पास विशाल कदम खंडी में रास मंडल और रत्न कुंड विद्यमान है। यहाँ भादों शुक्ल चतुर्दशी के दिना बूढ़ी लीला प्रसंग में रास लीला हुए है। कदम्ब खंडी में बरसाना नाभाजी की भजन स्थली है। और अब हम आए पहुँचे हैं ऊंचा गांव। ऊंचा गांव ललिता जी का गांव है।
1: ये ललिता सखी का ऊंचा गांव है, अटोर पर्वत से कहते हैं। ये ललिता जी के गर्भगृह है और निवास स्थान है। यहाँ ललिता जी का जन्म है और ये इनको मंदिर है। तो अटोर पर्वत का मतलब है कि यहाँ ललिता जी की अटारी थी और ललिता जी की बात का कोई तोड़ नहीं है, इनकी बात कोई काट नहीं सकता। और तोड़ यानी बाट झोले को भी कहते हैं, तोड़ कंकर को भी कहते हैं। जब श्याम सुंदर आते थे तो वो यहाँ खड़ी हो जाती थी, वो देखते थे कि वो श्याम सुंदर आ रहे हैं तो बाट जो होती थी वो आवाज लगाती थी कि वो नहीं सुनते थे तो एक कंकर मार देती थी। सीधे हाथ में लगता था तो यहाँ सीधे हाथ में यहाँ ललिता जी विराजमान है। तो वो आते थे भैया देख करके तो यहाँ कुमार कलयुग होता था उनका। ये ललिता जी का जन्म स्थान अटोर पर्वत और उनके माता पिता का नाम विशोक और माँ शारदा। ऊंचे ललिता जी राधा जी की प्रथम सखी है, प्रधान सखी है और श्रृंगार में, गुरु में, परंपरा में, आचार पद में सब में राधा जी की सहायक है। राधा कृष्ण को गुरु भी मानते हैं। तो ये इनकी यहाँ की ललिता सखी ठाकुर जी राय, ललिता जी ठाकुर जी राय।
2: अरे एक सखी हरि संग बिहाय के फूलन कारण बाग गई री, कंटक बेध गयो पद आंगोरी है हरि हाय पुकार दई री। कानन सो धोनि कानन में धोनि धाय के कंध चढ़ाय लई री। सोने ते पहुँच दियो पटी पीते अली यह प्रीत की रीत नई री। तो प्रेम में हमारे श्याम सुंदर एक दिन का हुयो, ये ललिता जी बैठी जैसो

कृष्ण के साथ बैठी, वहां श्याम सुंदर भी आ गए, सखा भी है, राधा जी भी ही। तो श्याम सुंदर ने ललिता जी और सखान के सामने ही राधा जी ते कुछ ऐसी बात कह दी जाते, वैसे तो राधा जी अलग होना है लेकिन नेक्स्ट इनको दिखाए बे कुछ सखार सके इनको राधा जी ते जैसी कही श्याम सुंदर ने तो मुंह फेर लियो ने कहवे पे। और जैसी मुंह फेरे हो तो यहीं पे जहाँ की चर्चा कर रहे तो यहाँ पे उठ के वो मान गढ़े हमारे यहाँ मान मंदिर आज भी विराज थे वहां जहाँ ठाकुर जी सामने मोर बन के नाचे, मोर बिहारी भी है, तो वहां जाके बैठ गई वो मान कर लिया रूस गई थोड़ी सी। तो तीन दिन है गए श्याम सुंदर है, जब राधा जी नहीं आई तो श्याम सुंदर रोते रोते बड़े व्याकुल है गए और आंसू इतने निकले कि जितने भी आंसू हृदय में है वो सबरे आंसू जो है सूख गए। तो चौथे दिन ललिता जी पहुंची है वहां, जब ललिता जी चौथे दिन वहां पहुंची है प्रभु, तो ललिता जी ने देखो श्याम सुंदर रोते जा रहे होते जा रहे बोल, तो जय जय जय जय श्याम सुंदर कही ना बोले, जय जय कही ना बोले, प्रीतम कही जो राधा जी को नाम है प्रिय, बहुते ना बोले वो ना बोले। तो इनको बीड़ी की सेवा इनकी बताई गई है तांबूल पान से, तो इन्होंने जो है ठाकुर के मुख पे लगाई, तो मुख पे जैसी लगाई तो बीड़ी भी यानी राधा जी के वियोग में वो मुख पर नहीं जा पाई, स्पर्श नहीं हो पाया और अधर से नीचे गिर पड़ी वो। जब ललिता जी ने ऐसा दृश्य देखो तो बड़ी व्याकुल हुई और श्याम सुंदर के दृश्य को देखो तो समझ गई कि ये तो राधा जी के रूसने से ऐसी इनकी मतलब दशा है रही है वियोग में, यानी ये राधा जी के प्रेम इतने बाबरे है रहे वियोगी है रहे कि जो मतलब सहन ही नहीं कर पा रहे। तो अब इनके दुखे लेके या कोई संदेश देवे ललिता जी राधा जी के पास जाए तो क्या कहें, हरी चांद।

0: करते हैं।
1: जय हो
0: मेरी प्यारी श्यामा जू, इतना प्रेम कर रहे हैं आपसे कि वह बीड़ी है वाई भी ना खा रहे, मतलब जो कि आपकी प्रिय है उनकी प्रिय मेरे हाथ से दही जाए, तो कह रही है छांड दे हटीली हट छांड दे छवीली आली तेरे बिन लाल आज पान हून खात है। ललता जी की बात सुनिए, मुड़कर देखो ललता जी खड़ी, ललता जी कह रही है आगे तेरी

0: करते हैं।
1: तेरी बात जानना है तो चल तू मेरे संग।
0: अरे मेरो कहो मान प्यारी, देख तू अटारी चढ़ जाठाने बन मारी, अब देर क्यों लगाते।
1: बोल मेरा विश्वास ना तो मेरी अटारी पे यार माते देख ले। इतने में सामना प्रेम सागर पहुंच गए।
0: कि मेरो कहो मान प्यारी, देख तू अटारी चढ़ जाठाने बन मारी, अब देर क्यों लगाते।
1: जब देखी तो पूरे बोल तो बड़े दुखी है। अब सिंगार कर नहीं रहा था जी, मिलवे काजे प्रीतम से
0: तो कर करके सिंगार तू उतारत है बार बार, तू तो इत रात उत रात बीती जात है।
2: स्थान के संदर्भ में वर्णन है कि यहाँ पास ही में सखीगिरी पर्वत है और वह पर्वत में फिसलनी शिला, ललिता जी को विवाह मंडप, सखीगिरी कूप, पास ही में त्रिवेणी कूप, रास मंडल, हीस के कुंजन में दाऊ जी को श्री विग्रह, गोपी पुष्करणी और देह कुंड आदि लीला स्थली विद्यमान हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के धीर ललित आदि नायकोचित गुणंते आकृष्ट है के मुग्ध होई के ललिता आदि सखी ने सखी गिरी पर्वत के ऊपर और नीचे रास विलास आदि विविध क्रीड़ा करी ही। यही काजे या को नाम सखी गिरी पर्वत पड़ो। सखी गिरी पर्वत के ऊपर फिसलनी शिला स्थित है। यह स्थान ललिता विवाह स्थल से लगो भयो है। यहाँ ललिता आदि सखी फिसलवे की क्रीड़ा करो करती, पर्वत पे उनके चिन्ह आजो अंकित हैं। या शिला में गोपीन के चरणन में लिप्त महावर को चिन्ह आजो देखो जा सके है। बाई के बगल में पर्वत के ऊपर कछु उत्तर की ओर चल के चित्र विचित्र शिलाओं दिखे हैं। भाव विभोर श्रद्धालुओं को गोपीन के चरण चिन्ह आज भी कभी कभी दिख पड़े हैं। यहाँ ललिता विवाह मंडप है। सप्त वर्षीय श्री कृष्ण के संग गोपी ने ललिता जी को विवाह रचायो। एक समय ललिता आदि सखी रसिक कृष्ण के संग बैठ के रसालाप कर रही ही। श्री राधा के इंगित से विशाखा आदि सखी ने परस्पर पास बैठे भये श्री श्याम सुंदर के पीतंबर के संग

श्री ललिता जी की चुनरी को गठबंधन कर दी नो। रंग देवी आदि सखी विवाह को गान करने लगी और तुंग विद्या आदि विवाह को मंत्र उच्चारण करने लगी। अवशिष्ट सखी श्री कृष्ण और ललिता की युगल जोड़ी के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। ललिता जी को कछु संदेह भयो, वे जल्दी से उठ के वहाँ से भागन लगी, किंतु गठजोड़ के कारण भाग न सकी। सबरी गोपी ने या जुगल जोड़ी को चारों ओर से घेर के परम उत्सव मनायो। यही लीला के कारण यह स्थान को नाम ललिता विवाह स्थल भयो।

यही गोपी पुष्करणी को स्थान भी है। यह सखीगिरी पर्वत में स्थित है। ललिता आदि सखी यह सरोवर में स्नान करते समय विभिन्न प्रकार की जल क्रीड़ा करो करती। यह देव दुर्लभ स्थान है और सखी ने कभी क्रीड़ा करते समय बद्री फल संग्रह कर उन्हें उखल के रूप में सजायो हो। यह स्थान आज भी बद्री का ओखल के नाम से प्रसिद्ध है। और अब हम पहुँचे हैं सखी कूप। यहाँ ललिता आदि सखी कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में ही बहुत देर तक उत्कंठित रहवे के कारण बिन जल पिपासा लगवे पे अपने हाथन थे या कूप को खोदो और जो ही जलपान करना आरंभ करो वह समय कृष्ण विचित्र वेश धारण करे भय वहाँ उपस्थित है गए। सब सखी ने उन्हें अपने रहस्यमय वचनन के अद्भुत रूप में छकायो। सखीन के द्वारा निर्मित होने से या को नाम सखी कूप है। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं त्रिवेणी कूप। काउ समय माघ माह में ललिता आदि सखी गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदी की स्थली त्रिवेणी संगम में स्नान करने की अभिलाषा कर रही हैं। गोपीन के देखते देखते श्री कृष्ण ने अपनी वेणु के नोक ते यह कूप को निर्माण कर दिनो। उनके स्मरण मात्र ते ही त्रिवेणी संगम को पवित्र जलिया में प्रकटित है गयो। फिर कहा गोपी ने यहीं पे स्नान कीनो और यहाँ कुएं के जल की तो बात ही कहा है। कुएं के निकट की धूली उठाए के धारण करने से ही त्रिवेणी स्नान को फल सहज ही प्राप्त हो जाए है। त्रिवेणी कूप ते पूर्व की ओर निकट ही हींस वृक्षन की घनी झाड़ी के बीच दाऊ जी को विशाल श्री विग्रह है। यह मंदिर को श्री नारायण भट्ट जी के आदेश से राजा टोडरमल ने बनवाया हो। अटोर पर्वत के ऊपर ललिता जी की बाल क्रीड़ा को स्थान है। राधा जी के समस्त भाव और गुण इनमें होवे के कारण ये अनुराधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। राधा कृष्ण की सब प्रकार की सेवा में ये सुदक्षा है और स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा जी भी इनके शासन को अतिक्रमण नहीं कर पाए हैं। ये वेश रचना श्रृंगार इंद्रजाल शैया रचना और राधा कृष्ण को मिलन करवावे में और सभी कार्यन में निपुण हैं और अष्ट सखीन में ये सर्व प्रधान है। ललिता जी के जन्म स्थान से ठीक पश्चिम दिशा में देह कुंड स्थित है। एक समय कई पर्व पर श्री राधा एवं श्री कृष्ण यहाँ सखीन के संग स्नान कर रहे हैं। स्नान के पश्चात वस्त्र धारण कर रहे हैं। वास्तव में एक दरिद्र ब्राह्मण यहाँ आयो गिड़गिड़ा श्री कृष्ण सो बोलो मेरी एक विवाह योग्य कन्या है किंतु अर्थ के अभाव में कोई योग्य वर को कन्या नहीं कर पा रहे हूँ यही का जब कछु अर्थ प्रदान करें। श्री कृष्ण ने सोचो राधा जी ही हमारी संपूर्ण धन है या के मेरे पास तो कछु भी अर्थ ना है। प्रकट रूप में बिन्ने ब्राह्मण से कही मैं तुम्हें थोड़ो अर्थ नहीं संपूर्ण अर्थ ही दान करना चाहू हूँ। ऐसो के बिन्ने श्री राधा को दिखलाई के ब्राह्मण से कही ये ही हमारो यथा सर्वस्व अर्थ संपत्ति है तुम इनको ग्रहण करो। ऐसा सुन के दरिद्र ब्राह्मण अपनो सिर ठोकतो भयो बड़ो ही दुखी हो के कहन लगो हे ब्रजेश नंदन पहले तेई में एक कन्या को कन्यादान नहीं कर पा रहा हूँ फिर दोनों छोरी को कन्यादान कैसे करूँगो यह तो मेरे काजे बड़ी विपत्ति है गई। अब मैं कहा करूँ वह कछु स्वर्ण दान लेना चाहवे हो या

मुंह देखकर श्री कृष्ण ने तराजू व प्रियाजू को सोने से तोल के वह सारो सोनो व ब्राह्मण को दे दीनियो। या ते राधा रानी प्रसन्न है गई, नहीं तो वे बड़ी उलझन में पड़ी भई। इधर ब्राह्मण भी प्रचुर स्वर्ण प्राप्त करके प्रसन्नता से अपने घर लौट गयो और वह ने बड़ी धूमधाम से अपनी छोरी को विवाह करो। कुंड के तट पे वेड़ी

कुंड के तट पर ही वेड़ी शंकर महादेव विराजमान हैं। गोपी ने अपने हाथ हंसों इन महादेव जी की स्थापना कीनी, श्रद्धा पूर्वक देह कुंड में स्नान कर वेणी शंकर को दर्शन करवेते और त्रिवेणी संगम के स्नान को फल प्राप्त हुए है। और जो यहाँ स्नान करे है वह को भगवान कृष्ण की निर्मल भक्ति प्राप्त हुए है, बाकी जीवन के सवरे कष्ट मिट जाए हैं। तो श्रोताओ, आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में हमारी यात्रा पहुँचेगी श्री जी के धाम यानी बरसाना। तो आज के अंक में बस इतना ही। सिगरे श्रोतान को हमारी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

तो अभी आपने कीनी यात्रा ब्रज 84 कोस की हमारे जा कार्यक्रम के संग ही संग आज की जे यात्रा हती कामेवन से बरसाना आलेख और प्रस्तुति सहयोग हतो रश्मि शर्मा को। तो भैया बरसाना की यात्रा अब अगले अंक में जरूर करी हूँ। तो आज के कार्यक्रम में अब आगे बढ़े हैं, आपको सुनवावे हैं हवेली संगीत। आओ सुने हैं सुखदेव बिहारी चतुर्वेदी के स्वर में जा पदकों।

आली री अलबेली। तानसेन की जा रचना को राग भैरव में स्वर दे रहे हते सुखदेव बिहारी चतुर्वेदी। और जय हवेली संगीत के संगे संग अब कार्यक्रम को समय पूर्ण है चलो है, तो आपसे फिर भेंट होएगी अपने कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दो, स्वीकार करो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को

0: सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
0: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे, और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, in it

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में आपने सुना शागिर्द फिल्म का ये गीत। रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि, और ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवां से। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का।
4: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में से...

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वरों में आपने सुना जीना मरना तेरे संग फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था दिलीप सेन, समीर सेन का।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये गीत है फिल्म दिल चाहता है से। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 23/6/26 यानी आज शाम को संध्या 6:15 से 30 अवधि के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में आज का विषय है एकीकृत खेती एवं मछली पालन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान क्रम में खेती बाड़ी के साथ किसान की आय बढ़ाने, जल संसाधनों के प्रबंधन एवं अन्य आय स्रोतों के सृजन और जिले में मछली पालन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-25575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर नित्यानंद पांडे से। कार्यक्रम का समय होगा आज शाम संध्या 6:15 से 6:45 के मध्य। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि, और कार्यक्रम गीतांजलि का ये अंतिम गीत। जावेद अली की आवाज में सुनिए नकाब फिल्म का ये नगमा।

0: नकाब फिल्म के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हिंदी वार्ता क्रम में आज आपको सुनवाते हैं ये भेंट वार्ता, हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय जनमानस। इस विषय पर प्रेमपाल शर्मा से बात कर रहे हैं ओपी सिंह। आइए सुने ये भेंट वार्ता।
4: भाषा भाव की और संवाद की एक माध्यम होती है। भाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत बड़ा अवदान होती है, संबल होती है। भाषा के माध्यम से ही हम ये कहें कि जीवन के जो कार्य व्यापार है हमारे चल रहे होते हैं, लेकिन भाषा हमारे जीवन में कहाँ से आती है, कैसे समृद्ध होती है और हमको एक जीवन प्रवाह, हमारे जो जीवन का प्रवाह है उसको एक नदी की भांति किस तरह प्रवाहित करती हुई ले जाती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साहित्यकार इस पर बहुत कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, जैसा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा का अपना जो विकास है, अपना उसका जो साहित्य है, वो कहाँ और कैसे पैदा हुआ, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार है, प्रेमपाल शर्मा जी। प्रेमपाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
5: नमस्कार
4: जी। हम जानना चाह रहे हैं कि जैसा हिंदी के संदर्भ में कहा जाता है कि हिंदी जो जन की भाषा है, मन की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, और हिंदी की जो अपनी सहोदर भाषा है, बोलियां हैं, या कहें कि अगर हम किसी भी जीवन के पक्ष को ले लें, चाहे वो आजादी के को लेकर ले, चाहे आज वर्तमान की बात करें, चाहे पुराने समय की बात करें, हिंदी हमारे साथ एक नदी की तरह बहती रही है, प्रवाह की तरह बहती रही है, उसी के साथ हम मिलकर के आगे बढ़े हुए हैं। तो हिंदी के अगर अपने साहित्य के साथ साथ उसके विकास की यात्रा को अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप इससे जुड़े रहे हैं, तो किस तरह से रेखांकित करेंगे, हमारे श्रोताओं को कैसे बताना चाहेंगे इसमें?
5: सर, हिंदी साहित्य को लेके
4: जी
5: जो इतना हो हल्ला मचता है कि भाई हिंदी पर संकट है, हिंदी के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है, ऐसा कुछ है नहीं
4: जी।
5: दरअसल हिंदी तो अपने आदिकाल से ही विभिन्न चरणों में इतनी गति से, हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गति से आगे बढ़ती रही है
4: जी।
5: अपनी विकास यात्राओं को इस तेजी के साथ आगे बढ़ाती रही है
4: जी।
5: और आप पीछे लौट के देखें तो हिंदी का जो शब्द सामर्थ्य है कितना विशाल हुआ है
4: जी।
5: और हिंदी के जो साहित्य भंडार है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ये कहना कि हिंदी कुछ अपनी विकास यात्रा रुक

0: गई है या ऐसा कुछ संकट खड़ा हो गया है, तो ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। बल्कि हिंदी तो वट वृक्षों की बात विभिन्न रूपों में बाहर निकलकर आ रही है, विभिन्न विधाओं में
1: जी
0: बुलंदियों पे पहुंच रही है। एक अगर विधा कुछ कम हुई है तो दूसरी विधा ने चरमोत्कर्ष को छुआ है। तो विकास हिंदी का निरंतर हो रहा है और वर्तमान काल में, और मैं कहूं कि पिछले 3-4 दशक से तो हिंदी ने बहुत ही अच्छी गति पकड़ी है और बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य देखने में आ रहा है।
1: जी हिंदी की अपनी जो लिपि है, हिंदी का अपना जो एक वैज्ञानिकता है, हिंदी की वो वाली सामर्थ्य जो किसी को भी अपने में समाहित कर लेती है, चाहे किसी भी भाषा का शब्द हो, किसी भी बोली का हो, कि कहीं से भी कोई आ जाए, हिंदी उसको अपना लेती है। तो उसके स्वीकार करने की जो शक्ति है, वैज्ञानिकता के मामले में अगर हम बात करें तो आज जैसा कि तकनीकी युग है, कंप्यूटर का युग है, एक समय जब था कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में आगमन हो रहा था, समाज में उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी, वो हमारे जीवन में आ रहा था। तो हिंदी की जो स्वीकार्यता है और उसकी जो वैज्ञानिकता है, चाहे वो लिपि के संदर्भ में हो, चाहे उसके कार्य व्यवहार के संदर्भ में हो, ये कितने स्थापित हुई है इसमें?
0: ये तो बहुत मजेदार बात है
1: जी
0: कि हिंदी की जो पाचन क्षमता है बहुत विशाल है।
1: जी
0: वो विभिन्न भाषाओं के, प्रादेशिक भाषाओं के, दूसरी विदेशी भाषाओं के भी शब्दों को
1: जी
0: अपने में ऐसे समाहित कर लेती है जैसे कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। और अगर हम आज के संदर्भ में कहें, तकनीकी संदर्भ में कहें, तो जो हिंदी की सामर्थ्य है कि हर स्वर के लिए एक शब्द है, हर संबंध के लिए एक शब्द है,
1: जी जी
0: हर संपर्क के लिए एक शब्द है। और हिंदी जो है ना, सोनोग्राफी है, फोनोग्राफी है, कि हर स्वर के लिए, हर आरोह ब्रेक के लिए एक शब्द अलग से है उसमें।
1: जी जी जी
0: अंग्रेजी में ऐसा नहीं है।
1: हाँ
0: अंग्रेजी यहाँ बहुत पीछे पिछड़ जाती है
1: जी जी
0: क्योंकि वहां एक ही शब्द
1: कई
0: सी के लिए,
1: संबंधों के
0: हाँ,
1: लिए
0: कई
1: है।
0: संबंधों को उच्चारण
1: जी
0: देता
1: जी जी
0: है,
1: जी
0: अभिव्यक्ति देता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदी में तो ऐसा है कि उसका एक संबंध है तो उसके लिए अलग उच्चारण है, एक कॉलिंग है, एक
1: हाँ
0: पुकार है, तो उसके लिए कई कई शब्द हैं।
1: कई कई
0: उस एक
1: शब्द
0: ही व्यक्ति को कई
1: जी
0: कई संदर्भ में हम पुकार सकते
1: जी जी
0: हैं।
1: तो
0: जी
1: उसकी जो समृद्धि है, उसकी जो व्यापकता है, उसका जो विस्तार है, वो मतलब एक कहें कि अनंत है। आपने बात कही कि हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है, वो
0: जी
1: जननी है, वहीं से हिंदी का विकास हुआ धीरे धीरे।
0: जी
1: इसी तरीके से और भाषाएं भी, बोलियां भी हैं जिनका संस्कृत से जन्म हुआ। तो कई बार ऐसा चर्चाओं में, परिचर्चाओं में ऐसा आभास लगता है कि हिंदी का शायद किसी से कंपटीशन है, प्रतिद्वंद्वता है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं लगता। तो इसको आप किस तरह से रखेंगे इसमें?
0: ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जो ये फोबिया बना रखा है,
1: जी
0: मैं ये मानता हूं कि अगर हिंदी का विकास होता है या
1: जी
0: हो रहा है या होगा,
1: जी
0: तो प्रादेशिक भाषाएं निश्चित ही समृद्ध होंगी।
1: निश्चित तौर पर,
0: उनका आपस में कोई विरोधाभास
1: मतलब
0: नहीं है,
1: अस्तित्व की कोई लड़ाई
0: कोई
1: नहीं है।
0: लड़ाई नहीं है।
1: जी
0: अगर दोनों में तालमेल रहता है तो उसके बहुत सारे शब्द हिंदी में समाहित हो जाएंगे, हिंदी के बहुत सारे शब्द कन्नड़ में भी उपयोग किए जा सकते हैं, तेलुगु में भी उपयोग किए जा सकते हैं, और जैसा कि हो रहा
1: हो
0: है,
1: रहा है जी।
0: संस्कृत के बहुत सारे शब्द उधर भी हैं, इधर भी हैं,
1: जी
0: लेकिन उनके लय ताल बोलने का थोड़ा, उच्चारण का
1: जी जी
0: तरीका
1: तो वो तो
0: थोड़ा।
1: स्थानीयता और व्यवहारिक जो वो है वो तो बना रहेगा, लेकिन बात यही है कि हम कितने लोगों को, कितनी बोलियों को, कितनी भाषाओं को और कितने समुदायों को एक साथ लेकर के चलते हैं, इसी से शायद भारतीयता बनी है। संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, या फिर इस भाषा के विकास की बात करें, तो सामूहिकता और उसमें स्वीकार्यता, ये तो हमारा एक तरह से हमारा संस्कृति का भी गुण है और हमारी भाषा और बोलियों का भी गुण है, तो ये तो बना रहना चाहिए उसमें। इसको आप मानते हैं इसमें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी तो सब भाषाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
1: जी।
0: ऐसा नहीं कि हिंदी तो समृद्ध हो जाए या चरम पर पहुंच जाए और ये रसातल में पहुंचाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अगर अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ता है
1: जी
0: तो हिंदी को भी नुकसान होगा, उसकी छोटी बहनें प्रादेशिक भाषाओं का भी नुकसान होगा, मगर
1: जी
0: हिंदी का विकास होने से ये क्षेत्रीय
1: तो
0: भाषाएं।
1: अब थोड़ा सा इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि व्यवहार में जब हिंदी के प्रचलन की बात करते हैं, स्वीकार्यता और उसकी उपयोगिता की तो बात हो गई, लेकिन जब व्यवहार में हम उसके उपयोग की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि हम चीजों को कहीं छोड़ते भी जा रहे हैं, चाहे वो आधुनिकता के नाम पर, चाहे कामकाज की भाषा के उपयोगिता के नाम पर।

0: या फिर पढ़ाई में अंग्रेजी के थोड़े माध्यम के नाम पर। तो यहाँ कहीं ऐसा लगता है कि व्यवहार में उसको थोड़ा सा उन चीजों को देखने की और समझने की जरूरत है कि व्यवहार में हिंदी बनी रहे, उसमें हमारी आने वाली जो पीढ़ी है कहीं वो थोड़ा सा इससे ना अलग हो जाए। तो जो स्थानीयता है, जो हम बोलियों की बात कर रहे हैं, तो उनके जो देशज शब्द है वो भी कहीं छूटते जा रहे हैं हमसे। तो इस पे कहीं काम करने की जरूरत है व्यवहार में।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल काम करने की। देशज भाषा और बोली और
0: जी
1: उसके शब्दों से ही हिंदी की ताकत बढ़ती है।
0: जी
1: मैं आज ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी में भी, हिंदी के क्षेत्र में भी हजारों हजार रोजगार हैं, उसकी बहुत अच्छी मांग है, बशर्ते हिंदी अच्छी आनी चाहिए।
0: जी
1: हिंदी सर्व गुण सर्वांग रूप में आनी चाहिए।
0: जी
1: और जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इतना पढ़ गया, पीएचडी कर ली, या इतनी ऊंचाई तक मैंने हिंदी का
0: जी
1: अध्ययन किया और मैं आज बेरोजगार घूम रहा हूं, तो उन्हें खुद अपने आप
0: अपने
1: में
0: आप को देखना
1: आत्मलोचन
0: है
1: करना चाहिए
0: जी के।
1: कि मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कैसी हिंदी पढ़ गया और
0: हाँ
1: मुझे कैसी हिंदी पढ़नी चाहिए थी।
0: जी
1: तो उनको थोड़ा इस पर मनन करना चाहिए। लेकिन हिंदी के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जानकार हैं, आज हर क्षेत्र में उनकी मांग बनी हुई है, चाहे प्रकाशन का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे भारत सरकार या राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में अच्छे हिंदी जानकारों की बड़ी मांग
0: जी
1: है।
0: तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि सरकारी कामकाज में हिंदी कहीं कम हो रही है, तो आप इस बात को मानते हैं क्या? इसमें कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो लोग इसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं, जिन पे इनके विकास की बात है, वो ही कहीं हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं या उनके व्यवहार में कमी है। तो सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा काम की भाषा तो है, लेकिन व्यवहार में कहीं ऐसा लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा वो हो रहा है इसमें।
1: हाँ, जिनके हाथों में या जिनके पदों में इसके विकास और इसको समान धारा में लाने की ताकत है, वो
0: जी
1: लोग शायद इस ओर से उदासीन है।
0: जी जी उदासीन है, मतलब व्यवहार
1: हाँ,
0: में तो है लेकिन उदासीन है।
1: अगर वो चाहें, पूरे मन से चाहें,
0: जी
1: तो हिंदी अपने जन जन की भाषा बन सकती है, व्यावहारिक भाषा भी बन सकती है, हर कार्यालय की व्यवहार की भाषा बन सकती है। मैं तो इतना कहता हूं कि छोड़ो दक्षिण को, अगर उत्तर भारत के, खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं,
0: जी जी
1: हिंदी भाषी राज्य हैं, वही ये प्रण कर लें कि हम अपने राजकीय कार्य में हिंदी का ही प्रयोग करेंगे,
0: जी
1: तो हिंदी तो वैसे
0: हिंदी
1: ही व्यवहार में आ
0: तो
1: जाएगी।
0: हिंदी के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है
1: नहीं,
0: उसमें।
1: बिल्कुल नहीं।
0: प्रेमपाल जी, कई बार जब हम साहित्य रचना करते हैं, कोई कृति आती है, लेखन होता है, चाहे वो कहानी हो चाहे अन्य विधाएं हो, कई बार उसमें जो चाहे वर्तनी की शुद्धि हो चाहे व्याकरण की अशुद्धि हो, इस पर भी काफी कुछ लिखा और पढ़ा जाता है। तो इसमें किस तरह की गलतियां एक लेखक से हो जाती हैं और उस पर लिखते समय क्या कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए? अगर हमारे कुछ पाठक सुन रहे होंगे तो उनके लिए बताएं कि लेखन के समय जो होने वाली अशुद्धियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है।
1: ये बहुत अहम सवाल है कि हिंदी तो हम लिख रहे हैं या
0: जी
1: लिखते हैं,
0: जी
1: लेकिन त्रुटियों से, लेकिन हिंदी लिखें तो त्रुटि रहित। अब उनमें किस तरह की त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, और इनका परिमार्जन भी आप खुद कर सकते हैं। जैसे शब्दों के गलत रूप प्रचलन में हैं और हम उन्हीं को चलाए चले जा रहे हैं,
0: प्रयुक्त कर
1: लेकिन
0: लेते हैं।
1: पीछे लौटकर ये देखना चाहिए कि जो मैंने ये लिखा है क्या ये शुद्ध है, अन्यथा
0: उसके
1: कोश,
0: शुद्धता पे
1: हाँ,
0: जाना चाहिए।
1: शब्दकोश का सहारा ले सकते हैं। हिंदी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे संस्थान भारत सरकार ने खड़े किए हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं,
0: जी
1: समय समय पर एडवाइजरी वो निकालते हैं, तो उनको आप अनुकरण करें। वो क्या बताते हैं, उनके द्वारा बताई गई वर्तनी, उनके द्वारा बताए गए शब्द जो वो शुद्ध मानते हैं, उनका
0: जी जी
1: अपने लेखन में उपयोग करें, तो मैं समझता हूं कि अशुद्ध हिंदी लिखने से आप जरूर बच जाएंगे।
0: जी अब प्रेमपाल जी, हिंदी की बात हमने की, हिंदी में आप साहित्य रचना कर रहे हैं, उस रचना के प्रकाशनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संदर्भ और वो आपके आते रहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आपने जो कुछ लिखा है हिंदी में, आप यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों पर काफी कुछ काम करते हैं, तो ये जो विधा है लिखने की, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताओ कि यात्रा वृत्तांत अगर कोई लिखता है तो उसकी क्या प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें क्या कुछ ऐसे स्थायी चीजें जिनको लेना ही चाहिए, तब वो एक अच्छा यात्रा वृत्तांत या संस्मरण होता है। इस पर थोड़ा मैं श्रोताओं के साथ।
1: जी हाँ, जी हाँ सर,
0: जी
1: मैं बिल्कुल इस पे बताना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण

0: हिंदी साहित्य की बड़ी रसदार विधा है।
1: जी
0: इसमें पिछले कई दशक से ऐसा हो रहा है कि जो उथले उथले बिना गहराई वाले कि यहाँ गए वहां गए ये खाया वो खाया ऐसे यात्रा संस्मरण आ रहे थे
1: जी
0: और केवल उसकी पूर्ति भर हो रही
1: जी
0: थी।
1: जी जी
0: लेकिन मैं ये मानता हूं कि यात्रा संस्मरण कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। जब आप किसी स्थान विशेष या तीर्थ विशेष या पर्यटन स्थल की आप यात्रा करते हैं तो मैं समझता हूं कि उस स्थल की भौगोलिक ऐतिहासिक जानकारी पाठक को मिलनी चाहिए और लिखने की शैली आपको ऐसी होनी चाहिए
1: जी
0: जो यात्रा वृत्तांत लिखने वाले हैं कि पाठक को लगे वो पढ़ नहीं रहा है बल्कि लेखक के साथ साथ उनका दर्शन कर रहा है।
1: दर्शन कर रहा है जी।
0: तो इसमें यात्रा वृत्तांत लेखन की सार्थकता जी,
1: मतलब जीवंतता होनी चाहिए
0: जी,
1: उसमें
0: जी,
1: जो
0: जी।
1: जीवंतता मतलब जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो एक तरह से वो उस चीज को विजुलाइज कर पाए, उसके साथ जुड़ पाए, उसको भाव रूप में उसको स्वीकार कर पाए, तो उसके लिए उसकी पूरी पृष्ठभूमि उसमें आना चाहिए। प्रेमपाल जी आप आए और हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े एक इस संवाद के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और निश्चित तौर पर आपके विचारों से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे इसकी हम कामना करते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय जनमानस विषय पर जुड़ी हुई ये भेंटवार्ता, प्रेमपाल शर्मा से बातचीत की ओपी सिंह ने।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
5: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
6: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता, सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को विजय नगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थंकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 170 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं।
7: इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक किए कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो तो कायम होगा।
6: उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यहां कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुंच, हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर सेड, विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबकंठ क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता

0: वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा और यहां के देसावरी पान को पहचान और बीड़े के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अर्जुन सहायक परियोजना, केन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई। महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
1: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गई है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की।
3: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया।
2: जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरतगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने को को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरतगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, SI संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए

0: युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नगद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थ नगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुँचे, जहाँ पर मुख्य अतिथि ने माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वल और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गई, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। सिद्धार्थ नगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थ नगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए। सिद्धार्थ नगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान SDRF प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थ नगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन CCTV कैमरों और ककराहा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। जल संरक्षण के उपाय, इस विषय पर आलेख और वाचन है विष्णु प्रकाश शर्मा का।
3: निसंदेह जल ही जीवन की महती आवश्यकता है। यदि पृथ्वी पर जीवन का मूल कारण जल की उपलब्धता है, तो जीवन के संरक्षण के लिए जल का संरक्षण भी अनिवार्य है। पिछले कुछ दशकों से जल की समस्या विकट होती जा रही है। इसका कारण यह नहीं है कि जल कम अथवा समाप्त हो रहा है, अपितु बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण, वाष्पीकरण और जल प्रदूषण से बड़ी मात्रा में जल संकट के लिए उत्तरदायी हो गए हैं। जल का दुरुपयोग भी जल की कमी उत्पन्न कर रहा है। ये समस्याएं तो सामने दिखाई दे रही हैं, इनसे भी कई गुना गंभीर समस्याएं अन्य भी हैं। यदि प्रकृति की ओर देखें तो जहां एक ओर प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वर्षा का जल घटता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के भीतर जल भंडार का अधिक से अधिक दोहन व शोषण किया जा रहा है। जल के उचित प्रबंधन का अभाव हमारे दैनिक जीवन में जल की कमी का एक प्रमुख कारण है। जल का प्रबंधन, संग्रहण, संरक्षण, बचाव कैसे किया जाए, ये वर्तमान शताब्दी की प्रमुख चुनौती है। जल संसाधनों का नियोजन एवं प्रबंधन एक जटिल कार्य है, क्योंकि जल के प्रयोग एवं उपभोग के स्तर पर अनेक प्रकार के अभिकर्ता अंतर्ग्रस्त होते हैं। इनके लक्ष्य, परिवर्त्य और प्रेरणाएं विविध होती हैं और पर्यावरणीय चिंताओं का स्तर भी भिन्न होता है। कृषि, उद्योग, घरेलू वितरण और उपभोग से लेकर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और मनोरंजन के साधनों के रखरखाव तक जल संसाधनों के प्रयोग में जो क्रियाएं, संस्थाएं एवं अभिकरण प्रत्यक्ष तौर पर परस्पर अंतरक्रिया करती हैं, वे अनेक हैं। अतः जल का समेकित प्रबंधन एवं संग्रहण आवश्यक है, ताकि जल के प्रयोक्ताओं के बीच प्राकृतिक विवादों को कम किया जा सके एवं नए नियमों और प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित किया जा सके। प्राचीन काल से ही भारत में जल संचयन की परंपरा रही है। कुएं, बावड़ियां, तालाब, कुंड आदि के माध्यम से जल का संचयन होता आ रहा है। आधुनिक जल संचय प्रणाली के होते हुए भी पारंपरिक जल संचयन प्रणाली आज के युग में भी पूर्णतया उपादेय है। वर्तमान में भारत के कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 180 अरब घन मीटर है, जो देश में उपलब्ध कुल जल की संभाव्यता का मात्र 10% ही है। देश की अर्थव्यवस्था में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूजल का दोहन सीधे उपभोक्ताओं के नियंत्रण में होने से यह विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिक

एक साधन बन गया है जिसके की कई स्थानों पर विवेकपूर्ण उपयोग भी नहीं किया गया है, जिससे समुचित मात्रा में जल उपलब्ध कराना कठिन हो रहा है क्योंकि अनावश्यक दोहन होने से स्थिति विकट हो गई है। भूजल स्तर में गिरावट चिंता का विषय है। भारत में सभी जगह पर यह स्तर निरंतर घटता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के चलते पृथ्वी के गर्म होने से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, इससे पानी की उपलब्धता कम होती जाएगी। वर्षा तो अधिक होगी लेकिन वह इतनी शीघ्रता से होगी कि बाढ़ें आएंगी, पानी बह जाएगा, जिससे भूमि के नीचे पानी कम पहुंचेगा। क्योंकि जल की मात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं है, अतः उपलब्ध जल का सही प्रबंधन ही एकमात्र उचित विकल्प है। वर्षा जल का संग्रहण ही एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प है। वर्षा जल का संग्रहण जल के अभाव को समाप्त करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है। इसके अंतर्गत वर्षा जल के संचयन की विभिन्न तकनीकों को अपनाकर वर्षा के जल को छतों पर रोककर जल स्रोतों में भेजा जाता है। अध्ययनों के अनुसार यदि 1 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो 1000 वर्ग फुट की छत से लगभग 1000 लीटर जल बहकर निकल जाता है। यदि सभी लोग ऐसे उपाय कर जल संग्रहण करें तो जल संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता मिल सकती है। वर्षा के जल के संग्रहण से भूजल भंडारण में वृद्धि, भूमि जल गुणवत्ता में सुधार एवं भूजल के प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे जल स्तर में गिरावट पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और जल के सतही बहाव से होने वाली समस्याओं जैसे जलाक्रांता, नालों का भरकर रुक जाना इत्यादि को भी कम किया जा सकता है। साथ ही वर्षा जल के संचयन से जल की उपलब्धता बढ़ाने में भी सफलता मिलेगी, विशेष तौर पर वहाँ जहाँ जल की पर्याप्त आपूर्ति है होती है अथवा सतही संसाधनों का अभाव है। बाढ़ की आपदा भी इस प्रक्रिया से कम होगी। स्वतंत्रता के बाद से अनेक बड़े बांधों का निर्माण किया गया है और हो रहा है, जिससे नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक लाभ हुए हैं। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनता के सहयोग से जल के प्राचीन स्रोतों को पुनः विकसित करना आवश्यक है, तभी भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जल आपूर्ति की समस्या का निदान संभव हो पाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, जल संरक्षण के उपाय। इस विषय पर आलेख और वाचन था विष्णु प्रकाश शर्मा का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ये विशेष भेंट वार्ता अंगदान महादान। रोटेरियन लाल गोयल से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह। आइए सुने ये विशेष भेंट वार्ता।
1: श्रोताओ, भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। चाहे हम अन्न का दान करें, चाहे हम वस्तुओं का दान करें, चाहे जीवों का भी दान है, जैसे गाय का दान करते हैं, ऐसे ही अब जो समय की आवश्यकता है उसमें अंग दान भी एक महत्वपूर्ण सोसाइटी का हिस्सा हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीवन के किसी पड़ाव पर स्वास्थ्य कारणों से अंगों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो प्राकृतिक रूप में अंग हैं वो ऐसे ही बाजार में नहीं मिलते और ले भी नहीं सकते, उसकी कुछ लीगल लिमिटेशंस हैं। तो अंगदान क्या है, कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं, उसके आगे पीछे की जो रेगुलेशंस हैं वो क्या है, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन है बहुत आवश्यक देश के लिए भी, समाज के लिए भी और वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए भी। इस सारे संदर्भ में बातचीत और जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं रोटेरियन श्री लाल गोयल साहब। आप शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं और इस क्रम से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास इस संदर्भ में व्यक्तिगत अनुभव भी है और लीगल अनुभव भी है। तो लाल साहब, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। तो अंगदान सुनने में लगता है कि हाँ, अंगों का दान कर सकते हैं हम, लेकिन वास्तव में इसके पीछे का आशय क्यों महत्वपूर्ण है, क्या आवश्यकता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि व्यक्ति एक समझ पाए कि हाँ, इस विधा के पीछे या इसकी आवश्यकता क्यों है।
2: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे
1: जी
2: अंगदान के बारे में बात करने की एक प्रयास किया।
1: जी,
2: अंगदान से पहले हमें समझना चाहिए कि किस तरह के दान होते हैं, क्योंकि तीन तरह के दान मेन होते हैं इससे संबंधित। एक है

0: अंगदान, दूसरा है टिश्यू डोनेशन अवयव दान, और तीसरा है देहदान। देहदान के बारे में तो काफी लोगों को पता भी है कि जिस वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है और तो उसकी देह या तो जलाई जाती है दफनाई जाती है, लेकिन जो देहदान होता है उसमें अगर उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं हो और वो उनकी भी सहमति होती है तो मेडिकल कॉलेज में देह का दान किया जाता है, और उससे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उससे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं एनाटॉमी में, और उसमें रिसर्च होती है। तो इसलिए देहदान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे डॉक्टर्स को सहूलियत मिलती है, तो ये तो देहदान है।
1: मतलब जो डॉक्टर समाज में पढ़ करके आ रहे हैं, हमको स्वस्थ रखने में, समाज को स्वस्थ रखने में जिनका योगदान है, उनकी पढ़ाई के लिए देहदान आवश्यक है।
0: देहदान आवश्यक है,
1: क्योंकि वो बॉडी का पूरा एनालिसिस करके वो जान पाते हैं कि हाँ व्यक्ति की बॉडी कैसी है, उसको कैसे संचालन होता है, फिजियोलॉजी क्या है, इसलिए वो देह पर ही काम करके सीख करके आते हैं। जी,
0: दूसरा है अवयव दान, टिश्यू डोनेशन। जी, टिश्यू जो होते हैं जैसे आंख, आंख का जो कॉर्निया होता है
1: जी,
0: त्वचा, बोन्स, हड्डियां, ये जो टेंडम्स, हार्ट वॉल्स वगैरह, ये सब जो होते हैं ये हमारे टिश्यूज में आते हैं
1: जी।
0: इनसे जिंदगी की एक जिसे कहते हैं इम्प्रूवाइज हो जाती है, सुधर जाती है। जैसे मैं आप एक उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति अगर अंधा है तो वो अगर उसकी उम्र 80 साल है वो 80 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन वो अंधेरे में रहेगा। लेकिन अगर उसको आई कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो वो उसकी जिंदगी रहेगी तो 80 साल ही, लेकिन वो प्रकाश में रहेगी। तो इससे एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है।
1: हाँ।
0: या हड्डियों के दान से जो हड्डियों में लोग टेढ़ा चलते हैं या कोई उन्हें हड्डी से संबंधित रोग होते हैं वो सुधर सकते हैं, लेकिन उम्र वही रहेगी। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अंगदान।
1: जी,
0: अंग क्या होते हैं पहले हमें वो समझना है।
1: जी, जी।
0: जो लाइफ सेविंग अंग है, जो हमारे जीवन रक्षक अंग है, जिन्हें नोटो ने, नोटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। ये नोटो भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। उनके अंतर्गत में 5 रीजनल हैं ट्रांसप्लांट सेंटर, रोटो रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके अंतर्गत सोटो आता है जो हर स्टेट की कैपिटल पे है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है।
1: जी, जी।
0: रीजनल हमारा चंडीगढ़ में है और नोटो हमारा दिल्ली
1: में है। जी,
0: इनके द्वारा इन्होंने बताए हैं कि ये अंग जो हैं लाइफ सेविंग हैं, उनमें हार्ट है, हृदय, किडनीज हैं, लंग्स हैं, पैंक्रियाज है, लिवर है और इंटेस्टाइन है।
1: जी, जी।
0: ये हमारे अंग जो हैं, अगर ये अंग खराब हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है, समय का वो रहता है। सिर्फ किडनी एक ऐसी चीज है जो डायलिसिस पे जाता है पेशेंट, लेकिन वो भी अमूमन 2.5 साल 5 साल, ज्यादा से ज्यादा बहुत ही चला तो वो 7 साल तक जीवित रह पाता है, नहीं तो उसकी भी मौत आती है। अदरवाइज कोई भी अंग अगर फेल होता है तो जब तक उसमें अंग का प्रत्यारोपण नहीं होगा, ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा, वो पेशेंट नहीं सर्वाइव करेगा,
1: लाइफ नहीं है उसके
0: नहीं होता।
1: तो ये 6 अंग आपने बताए, इसमें मैं बता दूं, एक हार्ट यानी हृदय हो गया, आपकी किडनी हो गई,
0: वो 2 होती हैं।
1: जी, जी।
0: तो एक व्यक्ति को एक किडनी दी जाती है,
1: जा
0: तो 2 लोगों की इससे जान बचती है। हार्ट एक ही होता है, एक ही की बचेगी।
1: पेनक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गई
0: और लिवर हो गया।
1: और लिवर हो गया।
0: अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे 2 लंग्स हैं तो 2 लोगों की जान बचती है, 2 किडनी है 2 लोगों की जान बचती है, हार्ट एक है एक की बचेगी, पैंक्रियाज एक बचेगी और इंटेस्टाइन से एक की बचती है। पहले लीवर का 1 को दिया जाता था, एक ही होता है, लेकिन अब नई रिसर्च से वो लीवर को 2 पार्ट में करते हैं, जो बड़ा पार्ट है वो एडल्ट को जाता है, वयस्क आदमी को, और जो छोटा पार्ट है वो बच्चों को जाता है। तो पहले 8 व्यक्तियों की जिंदगी बचती थी, अब 9 की बचने लगी।
1: क्या बात।
0: अब आप सोचिए, हम भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें वो तासीर दी है, वो हमें पावर दी है कि हम 9 लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं।
1: यानी जीवन देने का काम ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर के व्याप पे हम 9 लोगों की लाइफ बचा सकते हैं।
0: और इसमें डॉक्टर भी जहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर बचा सकता है लेकिन उसको अगर हार्ट ही नहीं है उसके पास तो वो दवाइयों से या सर्जरी से नहीं कर सकता जब तक उसे हार्ट ना मिले, वो तो रॉ मेटेरियल है। तो इसलिए

0: अंगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता है और इससे बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है, इतना तो मेरी समझ में आ गया आपकी बातचीत से। लेकिन अब इसकी एक प्रोसेस है कि एक व्यक्ति जो अनायास चला गया या कुछ समय जिया और उस जाने वाला, ये कई बार पता लग जाता है, तो वो तो चला जाता है, लेकिन उसके अंगदान क्या वो पहले करके जाएगा तभी होंगे या उसके परिवार की, तो एक प्रोसेस जो होती है वो किस तरह एक व्यक्ति, मतलब इस कार्यक्रम को हम सोसाइटी में आगे बढ़ाएं, इस पर अवेयरनेस लाएं और जागरूकता लाएं और ये महत्वपूर्ण है इसको समझ करके लोग आगे आए, इसके लिए क्या कुछ जो लीगल और लिखा पढ़त वाली कार्रवाई, इस पर भी थोड़ा सा बताइए आप।
0: देखिए, पहले तो हमें यह समझना है कि भारतवर्ष में क्यों इम्पोर्टेंट
1: जी
0: है। भारतवर्ष में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहां करीब 5 लाख व्यक्ति हर साल मौत ग्रसित हो रहे हैं अंग ना मिलने की वजह से।
1: जी जी जी
0: उसे हम दूसरे रूप में देखें तो करीब 1,500, 1,500 व्यक्ति रोज, और या यूं कहें कि हर मिनट एक व्यक्ति मौत ग्रसित हो रहा है अंग ना मिलने की वजह से।
1: नहीं मिलने से।
0: अब कारण क्या है? अब प्रश्न ये भी आता है कि भारत ही क्यों, बाकी देशों का क्या हाल है? तो मैं एक आंकड़ा दूंगा कि पिछले वर्ष 2024 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहां पे 422 लोगों की मौत हुई अंग ना मिलने की वजह से एक वर्ष में। लेकिन क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है,
1: कम है।
0: तो हम उसको अगर उस फैक्टर को लेते हैं तो करीब 20 गुना वो हमसे पॉपुलेशन में कम है। लेकिन अगर हम 20 को 422 से गुणा करते हैं, वो 10,000 भी नहीं आते, और हमारे यहाँ 5 लाख से
1: 5 लाख
0: ऊपर।
1: बड़ी संख्या
0: तो
1: है।
0: कई कारण होंगे, ये मैंने आपको एक आंकड़ा दिया। इसी तरह हम अमेरिका की बात करें, वहां पिछले 2024 में करीब 6,700 लोगों की मौत हुई। अमेरिका भी भारतवर्ष से जनसंख्या में 4 गुना कम है, तो 4 से भी गुणा करें वो भी 30,000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते हैं, और हम 5 लाख से ऊपर हैं। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन पहले एक चीज समझनी चाहिए कि अंग कौन दे सकता है? जिसकी मृत्यु नॉर्मल होती है वो अंग नहीं दे सकता।
1: जी जी
0: जिस वक्त हार्ट काम बंद कर देगा तो फिर उसके अंग
1: दान देने का कोई
0: अंग खत्म हो
1: जरूरत
0: जाते हैं। तो अंगों को दान दिया जा सकता है जब उसकी मस्तिष्क मृत्यु हो, ब्रेन डेथ हो। ब्रेन डेथ ये होता है कि जब हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाना बंद कर देता है, तो वो आदमी की मस्तिष्क मृत्यु या ब्रेन डेथ हो जाती है। अब किसकी होती है? तो दो तरह से होती है मस्तिष्क मृत्यु। एक तो होती है एक्यूट इलनेस, कोई गंभीर बीमारी जैसे दमा, एस्थमा। जब एस्थमा का एक्यूट उसके ऊपर दौरा पड़ता
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो आपने देखा होगा, श्रोताओं को भी पता होगा कि कई बार वो हवा के लिए तड़पता है, क्योंकि दौरे में,
1: जी जी
0: क्यों, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही दिमाग में। अगर उसका तत्कालीन मेडिकल उसको एड नहीं मिलेगी, तो वो उसकी भी ब्रेन डेथ हो सकती है। लेकिन अगर मिल जाती है तो बच जाता है,
1: बच जाता है जी।
0: या ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक्स, तो वो उन चीजों से आदमियों को बचना चाहिए। दूसरा, ये भी संख्या है, लेकिन जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या है वो है हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट। 2024 का आंकड़ा जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट का है,
1: जी
0: गडकरी जी का,
1: जी
0: कि करीब 1,80,000 लोगों की मौत हुई रोड एक्सीडेंट
1: रोड
0: से।
1: एक्सीडेंट पे जी।
0: उसमें से अगर उन सबकी जांचें हो पाती, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो करीब 50% लोग ऐसे होते हैं जब एक्सीडेंट होता है तो उनके मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि जब आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, दो पहिए पे कोई चलता है, तो उसे हेलमेट का
1: हेलमेट
0: कहा
1: के लिए
0: जाता
1: कहा
0: है,
1: जाता है।
0: क्योंकि हमारा जो ऊपर का सर है, हेड है, वो बहुत स्ट्रांग है, नारियल की तरह, कोकोनट की तरह। लेकिन जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही डेलिकेट होता
1: बहुत
0: है,
1: छोटे से धक्के से भी वो
0: वो
1: प्रभावित हो रहा है
0: प्रभावित होता है।
1: जी।
0: अगर उसको जरा भी जोर से चोट लगेगी, तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को कभी सर पे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच में हमारे होता है। अब एक कारण ये है, ऐसे ही कार में या जो फोर व्हीलर्स
1: बोलो
0: हैं
1: जी जी
0: उसमें सीट बेल्ट कंपलसरी कही जाती है, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होगा सबसे पहले आदमी का सर आगे जाके टकराएगा। अगर वो सीट बेल्ट में, तो सर नहीं टकराएगा। हेलमेट इसलिए जरूरी है कि जब भी एक दो पहिए का एक्सीडेंट होगा, सबसे पहले जो वो
1: वो
0: सड़क पे गिरेगा
1: सर
0: वो सर हिट
1: सराय।
0: होगा, और वो सबसे पहले डेथ होगी। तो ये हुआ ब्रेन डेथ। सिर्फ इनके, अच्छा, जब ब्रेन डेथ होता है तो वो अस्पताल में जाता है, अस्पताल में वेंटिलेटर पे रखा जाता है। मैं सोचता हूं हमारे सभी श्रोता वेंटिलेटर से

0: काफी परिचित होंगे कोविड की वजह से। वेंटिलेटर का काम है कि आपको ऑक्सीजन फोर्सिबली आपको बॉडी में रखना जिससे कि आपके बाकी अंग काम करते रहें, जिसमें हार्ट का काम मेन होता है कि वो पंप करता है और ब्लड भेजता है, सब जगह ऑक्सीजन जाती है। तो वही लोग, क्योंकि उनके बाकी सब अंग सुरक्षित हैं, तो खाली वही लोग अंगदान कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: ये तो है अंगों का। अवयव जो टिश्यू डोनेशन है वो दोनों अवस्थाओं में होता है, ब्रेन डेथ हो या नेचुरल
1: डेथ हो।
0: टाइम फ्रेम होता है, जैसे आई कॉर्निया 4 घंटे पहले था, फिर 6 घंटे हुआ, अब 10 से 12 घंटे तक कॉर्निया डोनेशन होता है। पहले आई कॉर्निया में एक व्यक्ति से 2 लोग देख सकते थे, क्योंकि 2 कॉर्निया जाते थे। फिर रिसर्च एडवांस हुई, 4 लोग देखने लगे। अब जो लेटेस्ट आई है वो 6 लोग देखते हैं। वो लोग उसकी स्लाइस कर देते हैं कॉर्निया को, तो एक व्यक्ति की मौत से 6 लोगों को नई रोशनी मिलती है,
1: दुनिया देखने की शक्ति।
0: आज आप सोचिए कि आज कल जाना सबको है, मौत नश्वर है, लेकिन अगर हम जा रहे हैं और हमारे बाद भी हमारी आंखें 6 लोगों को देख रही हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इससे बड़ा क्या चीज हो सकती है? तो ये है जब नेचुरल डेथ है, और मैंने बताया ब्रेन डेथ में ये है। अब प्रश्न आता है कि ब्रेन डेथ कौन डिक्लेयर करेगा, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे भी और उस पे भी कि ब्रेन डेथ डॉक्टर लोग या अस्पताल अपना पैसा बनाने के लिए करते हैं। ये सब गलत धारणा है। गवर्नमेंट ने बहुत इस पे स्ट्रिक्ट कानून आए। 1994 से पहले भारतवर्ष में कोई कानून नहीं था, लेकिन 1994 में भारत की संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, थोआ एक्ट कहलाता है वो। उसने सारे कायदे कानून बनाए, लॉ फ्रेम किए कि किस अवस्था में, जो आपका प्रश्न था कि कौन दे सकता है कैसे, तो किस अवस्था में ब्रेन डेथ होगा, किसको दिए जाएंगे, और कुछ अंग ऐसे हैं जो जीवित अवस्था में भी दिए जा सकते हैं। तो पहले हम जीवित अवस्था का बता दें कि जीवित अवस्था में पहले सिर्फ किडनी दी जाती थी, क्योंकि हमें भगवान ने 2 किडनी दी है।
1: जी जी जी।
0: लेकिन मेडिकल साइंस एडवांस हुई, फिर हम जीवित अवस्था में लीवर देने लगे, पोर पार्ट ऑफ द लीवर, तो उसमें से 30% 40% 50% 60% लीवर देने लगे,
1: क्योंकि लीवर इटसेल्फ रिकवरी कर लेता है।
0: हाँ जी। ये एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, लीवर में कुदरती एक हमारे करिश्मा है कि रिग्रो हो जाता है, दोबारा उग जाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में, कि दोबारा वो पुनः अपनी अवस्था को ले लेता है, और वो 2 महीने में जो देने वाला है, करीब 1.5-2 महीने में उसका लीवर पूरा हो जाता है। जो लेने वाला है उसका भी 2 से 3 महीने में दोबारा पूरा हो जाता है।
1: जो छोटा सा पार्ट लगाया वो बढ़ के
0: पूरा बढ़ गया। तो आप देखिए, तो जो लोगों में अवधारणा है कि हम देंगे हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी चीज है। अब फिर भी जब लॉ बना, वो लॉ क्यों बनाया गया कि जीवित अवस्था में कौन देगा और किसको मिलेगा, तो उन्होंने बनाया कि जीवित अवस्था में सिर्फ निकट परिवार का व्यक्ति ही दे सकता है। अब निकट परिवार की डेफिनेशन, तो उसमें दी उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स माँ बाप, स्पाउस पति पत्नी, सिबलिंग्स भाई बहन, चिल्ड्रंस बेटा बेटी, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन नाती नातिन, देवता देवती, पोता पोती, ये लोग ही
1: जो ब्लड के रिलेशन,
0: ब्लड है, क्लोज ब्लड रिलेशन, सिर्फ ये एक दूसरे को दे सकते हैं। अब उस वक्त भी ये प्रश्न आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कोई नहीं है, या मैचिंग में प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि ब्लड उस जमाने में, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो ब्लड ग्रुप मैच होना बड़ा कंपलसरी था, साइज की प्रॉब्लम आती थी। जैसे किसी बच्चे को किडनी चाहिए, तो उसको एडल्ट की किडनी फिट नहीं होगी, या लीवर की प्रॉब्लम आती थी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि फिर कोई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे, कि कोई बहुत ही किसी को प्यार करता हो या इज्जत करता हो, उसको भी मिसयूज ना हो। तो उसके लिए भी कायदा यह है कि गवर्नमेंट अपनी एक कमेटी बनाती है, वो कमेटी पूरा एग्जामिन करती है, क्योंकि अगर कोई बाहर वाला, आज आपको पता है कि सगे संबंधी या भाई बहन या भाई भाई भी एक दूसरे को परिवार का कोई संपत्ति नहीं देना चाहते,
1: तो अंग तो बहुत बड़ी बात है।
0: तो बाहर वाला क्यों देगा?
1: सही बात।
0: तो बाहर वाला, लेकिन क्या होता है, जैसे आपको पता हो श्री अरुण जेटली जी या श्रीमती सुषमा स्वराज जी, इन लोगों की इज्जत थी, लोग इन्हें प्यार करते थे, तो इन्हें लोगों ने बाहर से अपनी
1: डोनेट किया,
0: किडनी दी
1: जी, जी।
0: बिना किसी उसके। तो उसमें यह है कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अलाउड है, और उसमें कोई भी मॉनेटरी पैसे का कोई लेन देन,
1: मतलब उसमें व्यापार

0: नहीं आना
1: नहीं आना
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि वो ये दे तो सकते, लेकिन इज्जत के लिए, परिवार के लिए, उसको हमें जीवन में महत्वपूर्ण है, ऐसी सोसाइटी के लिए वो यूजफुल है इसीलिए,
1: जी
0: लेकिन ये व्यापार नहीं
1: नहीं
0: होना
1: होना
0: चाहिए।
1: चाहिए,
0: जी
1: तो उसमें पूरी रोक लगा दी और इसकी भी कमेटी बना दी। अब आया प्रश्न कि ब्रेन डेथ कौन डिक्लेयर करेगा, क्योंकि क्या है आपको पता है जैसे कि एक कोमा होता है और एक होता है ब्रेन डेथ, इसमें बहुत कम फर्क है, पर अंतर क्या है कि कोमा में व्यक्ति 10 साल 20 साल तक भी बेहोश
0: लंबा
1: रहेगा
0: लंबा। हाँ
1: लेकिन बिना किसी भार की सहायता के,
0: जी
1: उपकरणों की, कि उसे ना वेंटिलेटर की जरूरत है। अभी 4-5 महीने पहले एक सऊदी अरबिया के प्रिंस की डेथ हुई थी, वो 20 साल तक कोमा में थे।
0: हाँ, अभी इंडिया में दिल्ली का भी एक केस था, आपने सुना
1: जी
0: होगा,
1: जी
0: वो
1: जी
0: बच्चा जो कई सालों तक जिंदा रहा बालकनी से गिर करके, और माँ बाप ने फिर अंततः जब ये आशा नहीं रही तो
1: सुप्रीम
0: फिर
1: कोर्ट से
0: सुप्रीम कोर्ट से उसकी
1: परमिशन ली,
0: इजाजत मिली और वो बड़ा केस
1: वो
0: हुआ।
1: था इस पे वेंटिलेटर्स पे,
0: जी जी
1: उसका ब्रेन डेथ था,
0: हाँ
1: उसको वो नहीं चाहते थे कि वो उसको किया जाए। तो अब दिक्कत क्या है कि उसको डिसाइड कौन करेगा, तो इसके लिए वो कमेटी बनाते हैं 4 लोगों की, वरिष्ठ डॉक्टरों की। उसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन होना कंपलसरी होता है, बाकी फिजिशियन होते हैं, बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो आके एग्जामिन करते हैं कि जैसे कोई रोड एक्सीडेंट वाला केस आता है और जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसे लगता है कि ये ब्रेन डेथ है, इसको कोई भी पैरामीटर इसका नहीं बता रहा कि ये होश में आएगा,
0: जी
1: तो वो उस कमेटी को खबर करते हैं, वो कमेटी आती है, वो एग्जामिन करती है, और अगर उन्हें देखते हैं वो उसका वेंटिलेटर हटाते हैं। अब वेंटिलेटर हटा के कुछ मिनटों में ये देखते हैं कि इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है या स्थिर है, अगर डाउन होना शुरू हो जाता है तो इमीडिएटली वेंटिलेटर लगा देते हैं, टेस्ट करते हैं, एपनिया टेस्ट वगैरह कहलाते हैं, उन टेस्टों से उन्हें पता चलता है कि अगर हम वेंटिलेटर हटा देंगे
0: तो
1: तो ये
0: ये डेथ
1: सर्वाइव नहीं
0: होगी।
1: करेगा, 5-10 मिनट में मर जाएगा। उस वक्त वो उसको फर्स्ट ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देते हैं पहला, फिर एज पर लॉ 6 घंटे का मिनिमम अंतराल होना चाहिए, उसके बाद वो कमेटी दोबारा आएगी, फिर एग्जामिन करेगी, अगर उस वक्त भी उन्हें लग रहा है कि इसको कोई भी चिन्ह ऐसे नहीं आ रहे हैं, कोई भी साइंस ऐसे नहीं है कि कहीं कभी भी रिकवर कर पाएगा, तब वो उसको फाइनल ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेट देते हैं। जिस वक्त वो फाइनल ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेट आ जाता है, तो जो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ऑर्गन डोनेशन के, वो फिर फैमिली में बात करते हैं। क्यों करते हैं बात? पूरे संसार में दो सिस्टम चलते हैं, एक ऑप्ट इन एक ऑप्ट आउट। ऑप्ट इन सिस्टम ये है जो भारतवर्ष और यूएसए में है, कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, वयस्क हो जाता है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने अंगों को प्लेज कर सकता है
0: जी
1: कि
0: डोनेट
1: मैं डोनेट करने के लिए इसका प्रत्यक्ष
0: शपथ
1: शपथ लेता हूं,
0: शपथ।
1: प्लेज करता है, लेकिन 18 साल के बाद ही कर सकता है, यह है ऑप्ट इन सिस्टम। लेकिन जिस वक्त व्यक्ति ब्रेन डेड डिक्लेयर होता है तो वो बेहोश पड़ा है, तो इस ऑप्ट इन सिस्टम में उसकी जो फाइनल उसको परमिशन देनी है कि इसके हम अंग निकालें नहीं निकालें, वो उसके निकट संबंधी
0: संबंधी परिवार के
1: परिवार
0: लोग।
1: वालों को देनी है। अगर उन्होंने उस वक्त मना कर दी तो वो अंग नहीं दिए जा सकते, भले ही उसने शपथ पत्र भरा हो, भले ही उसने अपनी विल में लिखा हो,
0: ओके
1: कुछ
0: अच्छा।
1: भी किया
0: हाँ,
1: हो,
0: बहुत से लोग समय से पहले ही अपने
1: अपना
0: जीवन काल में ही ये कह
1: अब
0: देते हैं कि
1: वसीयतनामा भी बनाते हैं, उसमें भी लिखते हैं,
0: हाँ,
1: वो इसमें नहीं काम करता है अभी तक।
0: मतलब
1: अभी
0: हमारे देश में
1: ये
0: बाद में फिर परिवार के लोगों की सहमति
1: जरूरी
0: आवश्यक
1: है,
0: आवश्यक।
1: इसलिए हम हरेक से कहते हैं कि जब भी आप फॉर्म भरें पहले अपने परिवार वालों से उसका जिक्रा करें, उनसे बातें करें, और उन्हें भी अगर वो 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें भी इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो भी आके अंग साथ में वो भी प्लेज करें, तो जिससे उन्हें पता है कि भाई अगर जे मेरा संबंधी गया है, मैंने भी प्लेज किया हुआ है, तो वो दें,
0: बिल्कुल, फिर वो
1: क्योंकि
0: उसके महत्व को समझेंगे, उसकी आवश्यकता को
1: जी
0: समझेंगे, और उससे कितने लोगों का हित हो रहा है
1: जी
0: वो उसको समझेंगे, तो फिर नेचुरली उसमें आगे
1: आगे आएंगे।
0: आएंगे।
1: और इतना बड़ा दान कि आप सोचिए 9 लोगों को नई जिंदगी मिल रही है, जो मैं पहले भी कहा कि हम भगवान नहीं
0: ओ
1: है, तो आज हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च में जाते हैं, वहां दान करते हैं, हम शिक्षा का दान करते हैं, हम पुस्तक दान करते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अन्न दान करते हैं, लेकिन आप सोचिए कोई नई जिंदगी नहीं दे सकते,
0: हाँ,
1: इसमें नई
0: ये
1: जिंदगी।
0: बड़ा बड़ा
1: तो
0: दान।
1: इसीलिए अंगदान महादान कहलाता है।
0: हाँ
1: अब फिर क्या कारण है?

0: वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तो ये तो हुआ जो जीवित, अच्छा जीवित अवस्था में जो मेडिकल रिसर्च जब बहुत एडवांस हुई, आज हम सिर्फ हार्ट को छोड़ के पैंक्रियास भी पार्ट दिया जा सकता है, इंटेस्टाइन का भी पार्ट दिया जा सकता है, लंग्स का भी पार्ट दिया जा सकता है, और किडनी में बताई चुका हूं एक दे सकते हैं और उसका पार्ट देते हैं, तो हम सारे अंग दे सकते हैं, सिर्फ हार्ट नहीं दे सकते। वो अभी रिसर्च फाइनल नहीं हुई है, अभी तक नहीं आई है।
1: हार्ट एक
0: एक कोई एक कोई जाएगा, तो वो सिर्फ ब्रेन डेथ के बाद होता है, जैसे मैं ब्रेन डेथ आपको बता चुका, और ये है जीवित अवस्था। अब प्रश्न है कि ऐसा फिर क्या कारण है कि भारतवर्ष में
1: ये चीज कम
0: कम क्यों कम, है, जबकि हम दानवीर कर्ण के देश से,
1: दान हमारी संस्कृति में है, सब कुछ दान है, लेकिन यहाँ शायद फिर अवेयरनेस की कम

0: वो अभी रिसर्च फाइनल नहीं हुई है, अभी तक नहीं आई है,
1: हार्ट एक
0: कोई जाएगा तो वो सिर्फ ब्रेन डेथ के बाद होता है, जैसे मैं ब्रेन डेथ आपको बता चुका और ये है जीवित अवस्था। अब प्रश्न है कि ऐसा फिर क्या कारण है कि भारतवर्ष में
1: ये चीज कम
0: क्यों है, जबकि हम दानवीर कर्ण के देश से,
1: दान हमारी संस्कृति में है, सब कुछ दान है, लेकिन यहाँ शायद फिर अवेयरनेस की कमी है।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है, लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं है। तो इसके हमने जो बताते हैं हम कि चार मुख्य कारण है अंगदान, सबसे पहला है जागरूकता। तो इसके लिए जो हमने अपनी संस्था बनाई, मैंने एक संस्था बनाई है रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल, जो रोटरी इंटरनेशनल के अंतर्गत है और उसमें हमारा क्लब है, और उस क्लब में हमारा सिर्फ एक मकसद होता है अंगदान की जागरूकता देना, और वो हम जगह जगह जाके जहां भी हम जाते हैं, जहां भी मौका मिलता है वहां हम जागरूकता बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, और ये भी बताते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले आप अपने परिवार वालों
1: की सहमति
0: लीजिए, उन्हें बताइए कि आप फॉर्म भर रहे हैं। और इसका फॉर्म भरना बहुत आसान है, अगर आज कोई भी फॉर्म भरना चाहता है और उसके परिवार वालों ने सहमति दी है तो आप अपना जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उस पर आप जाइए, उस पर आप नोटो टाइप करिए और उसमें आपको नोटो की साइट आ जाएगी,
1: NOTO,
0: उस पे नोटो की साइट पे आपको एक QR कोड आएगा या आधार कार्ड वो नंबर मांगेगा, अगर आपका फोन रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से तो QR कोड आएगा, उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो दो थियाई फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा, उसमें आपका नाम सब कुछ लिखा हुआ आएगा, सिर्फ आपको उसमें भरना है कि आपका कौन निकट संबंधी जिसको सूचित किया जाए और जो डिसीजन भी ले
1: उस समय,
0: और आप कौन कौन से अंग देना चाहते हैं वो भी आपको भारत सरकार आपको देती है, कि आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ किडनी दूंगा या मैं टिश्यू देना चाहता हूं, मैं ऑर्गन नहीं, मैं सिर्फ आंख देना चाहता हूं, वो भी आपकी चॉइस है। और जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, जैसे रेलवे का टिकट और हवाई जहाज का टिकट आपके मोबाइल पे आ जाता है, ऐसे ही उसका एक डोनर कार्ड, दान का जो कार्ड है वो आ जाएगा, लेकिन महत्वता तभी है उसकी
1: जब आप अपने परिवार को बताया,
0: परिवार वाले एग्री करें,
1: क्योंकि वो उनकी असहमति उस समय रही, आप तो नहीं होंगे लेकिन आपका बताया हुआ वो जो सहमति है वो काम करेगी तो ही आप डोनेट।
0: जैसे मैं गत 10 वर्षों से इस कार्य में दिन रात लगा हुआ हूँ, मैंने भारतवर्ष में विदेशों में भी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट संस्थान नहीं है जहां पे चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एटॉमिक प्लांट है जैसे तारापुर एटॉमिक प्लांट है, बहुत सारे एटॉमिक प्लांट्स हैं, इसरो है, सब जगह, इवन आपका जो चेन्नई का दूरदर्शन है, उन्होंने कहा दूरदर्शन पे तो प्रोग्राम आप देते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी हमारा स्टाफ है, जितने एम्प्लॉइज हैं, आप सब उनको भी अवगत कराएं, क्योंकि ये जो अंगदान है ये हर व्यक्ति से संबंधित है, इसमें कोई संस्था नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है। तो एक तो जागरूकता, तो इसके लिए मैं सबसे अपील करूंगा और आपके श्रोताओं से खासकर करूंगा कि आप लोग इसके लिए जागरूक हो, और कोई भी प्रश्न है वो आप प्रश्न अपने रेडियो स्टेशन को ग्रसित करें, तो ये लोग जब भी मौका मिलेगा, जो भी इसके एक्सपर्ट्स आते हैं उन्हें वो बताएंगे या जब भी मुझसे भी पूछेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा, लेकिन अंधकार में ना रहें क्योंकि इससे बड़ा दान कोई नहीं।
1: आपने काफी बता दिया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहमति और आपका जो बताया हुआ वो है वो काम करेगा।
0: दूसरा कारण है
1: जी
0: इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतवर्ष में नोटों के आंकड़े के हिसाब से करीब 15-16% जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां पे अंगों का प्रत्यारोपण, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, या अंगों का निकालने का जिसे रिट्रीवल कहते हैं, उसकी सुविधा है। तो अब आप सोचिए कि जब सुविधा निकालने की नहीं होगी और वो व्यक्ति वहां पे उसका अगर ब्रेन डेथ होता है डिक्लेयर, तो पहले तो ब्रेन डेथ डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि वहां कमेटी नहीं होगी, अगर वो डिक्लेयर भी हो गया तो हम अंग नहीं निकाल सकते। तो आज भारतवर्ष में बहुत सारे अंग सब वेस्ट हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं,
1: क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर।
0: अब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे यहाँ 75 जिला मुख्यालय हैं, उसमें से 7 या 8 जिला मुख्यालयों में सुविधाएं हैं। आज हम मथुरा में बात कर रहे हैं, आप मथुरा छोड़िए आगरा तक में नहीं है, आगरा अलीगढ़ मथुरा फिरोजाबाद एटा इटावा कहीं भी ये सुविधा नहीं है।
1: बहुत बड़ा एरिया
0: ये बहुत बड़ा एरिया है
1: तो मतलब

0: इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी सबसे बड़ी समस्या
1: सबसे बड़ी
0: है,
1: समस्या
0: समस्या
1: है
0: है इसका।
1: इसमें। काफी गवर्नमेंट भी कर रही है और अभी इस बार उन्होंने डिक्लेयर भी किया है, क्योंकि क्या हो रहा है, जहां तक जागरूकता की बात है, अगर आप 99वां एपिसोड, जो 99वां वाला संस्करण था मन की बात का, उसको अगर आप दोबारा सुने, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत जोर दे के अंगों के ऑर्गन डोनेशन के लिए कहा। उसके बाद भी कई बार ऑर्गन
0: उसको
1: डोनेशन पे बोल
0: रिपीटेड, हाँ अपील
1: रिपीटेड
0: कर
1: बोल, क्योंकि
0: चुके।
1: वो समझते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस पर्सनल है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। तो
0: ये
1: ये
0: मानव के लिए, मानव के द्वारा
1: एक
0: किया जाने
1: मानवता का
0: वाला
1: एक बहुत बड़ा,
0: कार्य है यार
1: तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है रुपया कॉस्ट। अभी भारतवर्ष में करीब 800 सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष में, जहां ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। उनमें से करीब 650 से 675 सेंटर ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, मुश्किल से 100-125 सेंटर गवर्नमेंट के हैं।
0: गवर्नमेंट सेक्टर
1: उसमें भी
0: में।
1: ज्यादातर सेंटर सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट करती हैं या लिवर कर पाते हैं, बाकी वो सब रेफर करते हैं प्राइवेट को। प्राइवेट में किडनी जो सबसे सस्ते में ट्रांसप्लांट होती है, उसके करीब कॉस्ट 10 लाख रुपए आती है। इसके अलावा करीब 10,000 से 25,000 रुपए महीना जिसको किडनी लगती है, उसे जीवन
0: उसकी
1: पर्यंत दवाइयां खानी है हर महीने। तो आप सोचिए कि एक बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन को भूल जाइए, आप मीडियम क्लास
0: सामान्य।
1: साधारण आदमी भी, मैं कहता हूं साधारण, ये तो मतलब मैं किडनी की बात कर रहा हूं।
0: जी, अन्य अंगों
1: अब
0: का तो।
1: आप लीवर पे आइए, लीवर करीब 20 से 25 लाख रुपए खर्च आता है, हार्ट 25 से 50 लाख खर्च आता है, लंग्स करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। आप मध्यम वर्ग भी नहीं अफोर्ड कर सकता। पहले इंश्योरेंस कंपनी इसमें कुछ पैसा नहीं देती थी, अब बहुत जोर लगाया हम लोगों ने, काफी सामाजिक संस्थाओं ने, अब वो 1 लाख रुपया देती है, अब वो ऊंट के मुंह में जीरा है।
0: जीरा, बिल्कुल सही कह
1: तो
0: रहे।
1: ये कारण ये है। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं जब कोविड टाइम था, मैं उस वक्त मैंगलोरु में था, साउथ इंडिया में, तो वहां की एक लोकल चैनल ने मुझे कहा कि क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं, तो आप एक कोई प्रोग्राम ऐसा बनाइए कि 1-1.5 घंटे लोगों को उससे घर में अच्छी कोई चीज, नई चीज पता
0: जी
1: चले।
0: जी जी
1: तो मैं 1.5 घंटे का रोज लाइव टेलीकास्ट करता था, उसमें ऑर्गन डोनेशन पे और भी सब्जेक्ट्स लेता था। तो एक हमारे रेगुलर पैनलिस्ट थे डॉक्टर सीवी आनंद बोस आईएएस, जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लेबर एडवाइजर थे, बाद में वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने, अभी उन्होंने 2-3 महीने पहले ही त्यागपत्र दिया है। वो मेरे हर मंगलवार को प्रोग्राम में आते थे गेस्ट बन के। तो एक बार वो बोले कि आप जो बार बार पैसे की बात करते हैं, अब हमने आयुष्मान भारत में स्कीम में 5 लाख की लिमिट बनाई है। तो मैंने कहा देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस 5 लाख से भी कुछ नहीं
0: कुछ
1: होगा,
0: नहीं हो रहा
1: जब
0: है।
1: तक 10 लाख ना हो, या आप गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में फ्री करा दो
0: फ्री करा दो, सही
1: तो
0: बात है।
1: कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप इसकी छोटी सी क्लिपिंग हमें भेजिए इस प्रोग्राम की। तो मैंने करीब 5 मिनट की क्लिपिंग और भेजी, उन्होंने वो क्लिपिंग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉरवर्ड की। और मुझे श्रोताओं आप सबको कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि 2023 में दिसंबर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी, और उसमें किडनी पूरी तरह फ्री हो गई और अब लीवर भी कवर होने लगा। तो कम से कम दो चीजों में बीपीएल वालों के लिए
0: जी,
1: ये
0: और
1: बहुत
0: ये
1: बड़ी
0: भी
1: सहूलियत।
0: बड़ा बड़ी
1: जी,
0: सौगात है।
1: लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारा, फिर हम कहेंगे कि ये स्वास्थ्य, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है।
0: नहीं है।
1: तो इसमें बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इंप्लीमेंट करने में आनाकानी की। और ये जो स्कीम आई है वो है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, श्रोताओं को, कि कभी भी आप कोई बीपीएल पेशेंट के आप अक्रॉस आते हैं, ये पता चलता है, तो आप बताइए, ये आयुष्मान भारत ABPMJY स्कीम है, जिसमें 15 लाख की लिमिट है।
0: मतलब किडनी और लिवर
1: लीवर तो
0: के
1: फ्री
0: लिए।
1: हो ही जाते हैं,
0: जी,
1: अगर कोई और भी अंग है तो
0: हाँ
1: भी 15 लाख रुपए तक
0: वहां
1: गवर्नमेंट
0: मिल
1: देगी,
0: सकता
1: मिल
0: है।
1: सकता है। अब हमने इसके बाद भी हमने बहुत जोर लगाया महाराष्ट्र में, मैं आजकल रहता हूं मुंबई में, तो 1.5 साल लगा वहां के, मैं आयुष्मान भारत के जो चेयरमैन है उनसे कई बार मीटिंग हुई, तो 4 नवंबर 2023 25 को मुझ पे फोन आता है सुबह कि आज आपको आयुष्मान भारत ऑफिस आना है, हम आपका सम्मान

0: जानना चाहते हैं। मैंने कि ऐसा क्या हो गया, बोले आप आइए तभी पता चलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि हमारे वहां के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने
1: जी।
0: वो लिमिट 5 लाख से अब 22 लाख कर दी और उसमें किडनी लीवर टोटल फ्री हो गया। इसमें वो 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख तक दे रहे हैं बाकी के लिए भी। बाकी भी गवर्नमेंट कर रही है, तमिलनाडु ने कर रखा है, कुछ गवर्नमेंट अभी नहीं कर पा रही है, तो अभी हमारा प्रयास जारी है। ये तो हुआ ऑर्गन डोनेशन के। अभी इसी वर्ष 2025 में, क्योंकि 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, पहले ये 13 तारीख को मनाते थे लेकिन अब उसको 2 साल से 3 अगस्त को कर दिया है, तो 2 अगस्त को एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था जो नोटो ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिल्ली में आयोजित किया था। उसमें हमारे आदरणीय मंत्री स्वास्थ्य श्री जेपी नड्डा जी ने डिक्लेयर किया कि अब जो भी गरीब है उसको 10,000 रुपए महीने का आर्थिक सहायता ट्रांसप्लांट पेशेंट को हर महीने दी जाएगी,
1: जो अब
0: दवाओं पे खर्चा होता है। क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा था, लोग बाग करवाते नहीं थे ट्रांसप्लांट की, हम ट्रांसप्लांट कराएंगे, हमारा पैसा घर में खाने को नहीं होता है तो हम ये क्या करेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बाकी काम हम आपको करना है। तो ये तीसरा कारण। चौथा जो बहुत बड़ा कारण है भारतवर्ष में, वो है मिथ्याएं, जो हमारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, अवधारणाएं हैं, मिस कंसेप्शन
1: है। जी जी।
0: वो है दो तरह से है, एक है रिलीजियस और एक है कल्चरल।
1: जी।
0: कल्चरल है, जैसे कि एक अवधारणा ये है कि अगर मैंने आंख दे दी तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा। एक है कि डॉक्टर अगर उसे पता चले कि मैंने अपने ऑर्गन्स डोनेट का प्लेज भरा हुआ है तो मेरे ऑर्गन्स जानबूझ के निकाल लेंगे। ये दोनों अवधारण गलत है।
1: जी जी।
0: अगर हम ये कहते हैं कि आई डोनेशन के बाद अगर अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा तो उसका एक ही मैं कारण बता सकता हूं, दो बता सकता हूं, कि आज हम कहीं पैसे देते हैं दान में तो क्या हम अगली बार बिना पैसे के होंगे।
1: जी जी।
0: दूसरा कारण है कि जैसे आपको पता है जो वयस्क स्त्रियां हो जाती हैं, थोड़ा अवस्था वाली हो जाती हैं, प्रौढ़ 45-50 वर्ष की, उनको कई बार यूट्रस में प्रॉब्लम होती है तो उनके यूट्रस को रिमूव किया जाता है, हिस्टेक्टमी
1: निकाल दिया जाता है। जी।
0: कभी कोई नहीं पूछता कि क्या अगले जन्म में ये बिना यूट्रस के पैदा होंगे, तो ये बिल्कुल धारणा गलत है।
1: जी, मतलब ये ऐसी है जो बिना उसके ही है, इसका कोई कारण नहीं है।
0: बिल्कुल कोई कारण नहीं।
1: जी, जी, जी।
0: और ये तो हुई, और जहां तक डॉक्टर की बात है, डॉक्टर सेवा करने के लिए, डॉक्टर आपको नई जिंदगी देने के लिए है, और जैसा मैंने बताया कि ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, और वो जो अंग भी निकलते हैं वो सारे के सारे अंग जाते हैं, उसकी वेट लिस्ट होती है, क्योंकि भारतवर्ष में अंगों की डिमांड बहुत है। हमारे यहाँ करीब 5 लाख व्यक्ति हर वक्त वेट लिस्ट में है, उसमें से पिछले वर्ष करीब 20,000 लोगों को अंग मिले हैं।
1: बताइए, मतलब डिमांड एंड
0: सप्लाई में बहुत बहुत डिफरेंस है। इसलिए सारी कंट्रोल किसको अंग देना है वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, जो नोटो रोटो सोटो है वो वेट लिस्ट के हिसाब से। तो कई बार ये होता है कि सपोज दिल्ली में पेशेंट का ब्रेन डेड डिक्लेयर हुआ, उसका हार्ट, वो हार्ट जाना है मुंबई में वेट लिस्ट के हिसाब से। अब हार्ट की ये है कि वो उसे 4 घंटे के अंदर निकालने के बाद प्रत्यारोपण जरूरी है,
1: हो जाना चाहिए।
0: अब 4 घंटे में आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक कितना है कि वो एयरपोर्ट तक 2 घंटे में, तो 1.5 से 2 घंटे में पहुंचेगा। बॉम्बे में, मुंबई में भी बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और प्लस 2 घंटे कम से कम फ्लाइट को 1.5 से 2 घंटा लगता है,
1: उस समय वो मिल जाए फ्लाइट,
0: तो उसके लिए भी सरकार ने कायदे कानून बनाए हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनता है। अब ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, जैसे आपने रोड पे लाइट्स देखी हैं, जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है उसमें होता है रेड लाइट होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, तो ग्रीन लाइट पूरी लाइट वहां तक अस्पताल से एयरपोर्ट तक सारी लाइट ग्रीन रहेंगी, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा। जैसे कोई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब चलते हैं या कोई भी मंत्री चलते हैं,
1: वो पूरा बना दिया जाता है,
0: रोड खाली रहेगी, पुलिस की जीप उसे एस्कॉर्ट करेगी, उसका जो डिब्बे में हार्ट जा रहा है। तो ये करिए कि अगर सपोज अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से हार्ट निकला और वो जाना है एयरपोर्ट, वैसे अमूमन 1.5 घंटा लगता है, वो डिस्टेंस ना हो, ज्यादा नहीं होता है, तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली।
1: अच्छा, इसी तरह का बॉम्बे में भी मिलेगा,
0: ऐसा ही मुंबई में।

0: होगा, लेकिन उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, जब वो रिट्रीव करते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पे तो व्यक्ति जिंदा है, तो वो जिस वक्त देख लेते हैं कि कौन सी फ्लाइट जा रही है, वो सूचित करते हैं एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट वाले बताते हैं कि ये फ्लाइट 10:10 पे जाएगी, तो उसी हिसाब से वो टाइम गैप लेके निकलते हैं। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट के जो उच्च अधिकारी हैं, सीआईएसएफ के उच्च अधिकारी हैं, वो उस डिब्बे को रिसीव करेंगे, और उसकी डिब्बे को एक्सरे में नहीं डाला जाता, वो उस लेकिन जो उसके संग एकम्पनिंग डॉक्टर है उसकी स्क्रीनिंग सबसे पहले होगी। जैसे आपने देखा होगा वहां लंबी क्यू होती है सिक्योरिटी में, वो सब हटा दिए जाएंगे, उन्हें सबसे पहले अलग से स्क्रीन करके सीधा हवाई जहाज में, जब हवाई जहाज का दरवाजा बंद होने वाला होता है तब
1: तब
0: बैठा तब
1: बोलना।
0: पहुंचते हैं। और जैसे ही वो बैठेंगे, अभी उसके बाद भी एक पेच होता है कि हवाई जहाज मुंबई दिल्ली या बड़े शहरों में 10-10, 15-15 हवाई जहाज आगे होते हैं कतार में, तो उसमें आधा घंटा जाता है, कई बार एक एक घंटा। उस वक्त भी इस प्लेन को टॉप प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले इसको
1: इसको
0: टेक ऑफ
1: टेक
0: किया
1: ऑफ
0: है।
1: कराना है।
0: अब जब ये मुंबई पहुंचेगा,
1: हाँ
0: लॉ ये कहता है, कायदा ये कहता है कि वहां कई बार एक एक घंटे तक हवाई जहाज ऊपर घूमता है,
1: हाँ
0: लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भी हवाई जहाज उस वक्त हवा में है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति का भी हवाई जहाज हवा में है, उनको रोक के पहले
1: इस
0: इसको लैंड कराया
1: लैंड
0: जाएगा।
1: कराया जाएगा।
0: और वहां जैसे ही वो उतरेगा, अंदर टर्मैक पे, मतलब अंदर ही वहां पर एम्बुलेंस तैयार होगी, दरवाजा खुलते ही सबसे पहले वो निकलेंगे, वहीं से एम्बुलेंस फिर वही ग्रीन कॉरिडोर बन के वो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में करीब 3 घंटे में हाज दिल्ली से मुंबई पहुंचता है, वहां डॉक्टर की टीम तैयार होती है, 4 घंटे में प्रत्यार्पण हो जाता है। ऐसा बहुत होता है, अमूमन होता रहता है, और इसकी वजह से बहुत लोगों की नई जिंदगियां बची हैं, बहुत लोगों की जिंदगियां बची हैं।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: देखिए ये काम इतना बहुत
1: मतलब लीगल वे पे इतना रोड मैप बना हुआ है
0: सब बना हुआ
1: कि इतनी सपोर्ट आपको मिल सकती है। इसमें यहां हमारी विलिंग आती है कि
0: जी।
1: हम कम से कम देने के लिए तैयार
0: अब
1: हों।
0: आते हैं हम धार्मिक पे, जो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में करीब 5-6 धर्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिंदू धर्म है, 80% हमारी जनसंख्या हिंदुओं की है। फिर इस्लाम है, करीब 15%, 5% में क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं और बौद्ध हैं। मैं उल्टे ढंग से चलता हूं, बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष के बहुत नजदीकी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे ज्यादा आई डोनेट होती है, कारण है कि बौद्ध धर्म कहता है कि अगर आपने आईज का डोनेशन किया तो आपको बौद्ध धर्म में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। श्रीलंका में इतना डोनेशन होता है कि उनके यहां सरप्लस आई कॉर्निया है, वो भारत और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब बौद्ध धर्म इसके अगेंस्ट नहीं है।
1: नहीं है जी।
0: उसके बाद हम दूसरा धर्म आता है जैन धर्म। मेरी पत्नी जैन है, तो उनके, और आपको पता है पत्नी की सबको सुननी पड़ती है, तो मैं उनकी वजह से मैं बहुत जैन के धर्म वाधिकारियों से मिला, सबसे बातें भी की। वो लोग इसको बहुत प्रचारित और प्रसारित करते हैं, और उसी वजह से अगर आप भारतवर्ष में देखें, जैन जो ज्यादातर बहुतियात है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है, और वहां के जो जैनी हैं वो लोग बहुत प्रोत्साहित रहते हैं अंगदान में, तो जैन धर्म इसके कहीं भी अगेंस्ट नहीं है।
1: अंगेश नहीं है अंगदान के।
0: जी, फिर इसके बाद आता है सिखिज्म। आज उनके मुकाबले दान में कोई आगे नहीं है, क्योंकि उनका कहा जाता है कि जहां स्वार्थ है वहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान है वहां स्वार्थ नहीं है।
1: स्वार्थ नहीं जी, इसलिए
0: और
1: देना वो
0: देना, वो
1: प्रेफर।
0: आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों पे सरदारों ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, खाना, दवाइयां, अपनी जान की परवाह किए बिना सबको प्रोवाइड कर
1: सेवा
0: रहे हैं,
1: की जी।
0: सेवा की है। तो उनके यहां भी, और इसका एक एक कारण मैं ये भी दे सकता हूं कि आज जो रीजनल वो बनाया गया, ऑफिस बनाया गया
1: वो
0: सोड रोड,
1: चंडीगढ़
0: वो चंडीगढ़ में बनाया गया,
1: चंडीगढ़
0: जबकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है
1: सही जी जी
0: लखनऊ की जगह, तो सरदारों में भी नहीं है। अब आप आइए क्रिश्चियन में।
1: जी जी
0: मैंने आपको दो कंट्रीज के उदाहरण दिए, एक दिया मैंने उदाहरण यूके का और एक यूएसए का, दोनों क्रिश्चियन बहुतायत देश हैं।
1: जी जी
0: लेकिन इसके अलावा भी एक, मैं एक और बताऊं कि अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है

0: लव दाई नेबर, इसका मतलब है कि अपने पड़ोसी से वो ही प्यार करो जैसा आप अपने से प्यार करते हैं। और ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है, इसलिए जो क्रिश्चियंस हैं वो हमेशा इसको प्रोत्साहित करते हैं ऑर्गन डोनेशन को।
1: इसीलिए मतलब क्रिश्चियनिटी में भी कोई रुकावट नहीं है,
0: कोई रुकावट नहीं है इसकी। और इसलिए जो ये अवधारणा है कि और लोग नहीं करते या कम करते हैं वो गलत है, इसलिए हमें सबको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं इस्लाम पे।
1: जी,
0: व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है कि मुसलमान अंग नहीं देते, इनके यहां ये बहुत ही गलत माना जाता है। ये गलत है, मैं इसमें दो कारण बताऊंगा। कुराने शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी की जिंदगी बचाता है तो जैसे उसने सारे मैनकाइंड की, एक पूरे समाज की जिंदगी बचाई है। ये कुराने शरीफ में लिखा है। तो आज अगर आप कहते हैं तो कुराने शरीफ जो मुल्ला मौलवी हैं उनसे तो ऊपर है। इसका एक आपको मैं उदाहरण भी दूंगा। सऊदी अरबिया भारतवर्ष के पास में ही है, मतलब थोड़ा दूर है, और सबको पता है सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है। वहां पे अंग देने की जो दर है प्रति 10 लाख पर मिलियन वो 4 है, 4%। भारतवर्ष में वो दर है 0.65।
1: तो यहां से वो काफी
0: बहुत आगे है। तो अगर इस्लाम में मना होता
1: तो नहीं हो पाता,
0: नहीं होता,
1: और कम से कम सऊदी अरेबिया में तो नहीं होता।
0: तो ये भी गलत है। अब हम आते हैं
1: हिंदूज।
0: सबसे प्रथम जो मैं एक ही बात हर एक से पूछता हूं कि आप जब कोई भी नया काम करते हैं तो आप किस भगवान की पूजा सबसे पहले करते हैं, किसका नाम पहले लेते हैं, किसका लेते हैं?
1: गणेश जी का।
0: गणेश जी का। अगर हम हिंदू हैं और अगर हम भगवान गणेश में विश्वास रखते हैं तो हमें ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि गणेश जी का सर एक हाथी के सर से ट्रांसप्लांट हुआ था, रिप्लेस हुआ था, और करा किसने था? भगवान शंकर ने। तो इसका मतलब भगवान शिव और भगवान गणेश ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को चाहते थे, मतलब कभी उसके अगेंस्ट।
1: वो इस विधा के जनक हैं।
0: जनक हैं। तो इसको अगर कोई कहता है तो उसको गलत है। अब क्योंकि आज ये कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण की धरा पे हो रहा है ब्रजभूमि में, और मैं पैदा यहीं हुआ, पला भी यहीं, अब मुंबई में निवास है मेरा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो लोग मानते हैं तो गीता में चैप्टर 2 वर्स 22 अध्याय 2 और 22वां जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हिंदी में, मैं उसका वो कर रहा हूं
1: जी जी,
0: कि जिस तरह शरीर पुराने कपड़ों का त्याग करता है उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्यागती है। तो क्या हम पुराने कपड़ों को जलाते हैं या दफनाते हैं? ना उन्हें जलाते हैं ना दफनाते हैं। हम क्या करते हैं? उन पुराने कपड़ों को जो जरूरतमंद है
1: उसको
0: दान कर देते हैं, उसे दे देते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जब आप पुराने शरीर के कपड़ों को त्यागते हो उसी तरह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्यागती है, तो आप उसे जलाते और दफनाते क्यों हो? आप उसको, अगर वो नॉर्मल डेथ हुई है तो उसको मेडिकल कॉलेज को दो, जिससे कि वो वहां के डॉक्टर पढ़ के हम आप सबकी सेवा करें, हमारे बच्चों को नई जिंदगी दें। नहीं तो अगर ब्रेन डेथ है या तो, अगर नॉर्मल है तो टिश्यू डोनेशन दीजिए कि एक व्यक्ति की आंख से 6 लोगों को नई रोशनियां मिलती हैं, कितनी बड़ी बात है। और नहीं तो अंग दीजिए, 9 लोगों को नई जिंदगी मिलती
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: तो भगवान श्री कृष्ण
1: जी, और वैसे भी हम भारतीय संस्कृति में रहे दूसरे के लिए तो दधीच,
0: हाँ वो भी मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी और एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो भगवान राम को मानते हैं। तो अगर भगवान राम को आप मानते हैं तो देखिए भगवान राम ने क्या कहा था। आज रामायण जो बनी पूरी वो क्यों बनी थी? कि उनके पिता ने कोई वचन दिए,
1: वचन दीजिए,
0: और उन्होंने उन वचनों को अपने लड़के को बताया, भगवान राम को बताया महाराज दशरथ ने, अपने पिता के वचनों को रखने के लिए,
1: पूरा करने के लिए
0: उन्होंने कहा था कि ये सत्य है, मेरे पिता के वचन सत्य है, इन्हें मैं पूरा कर रहा हूं। तब जब अगर किसी ने प्लेज किया है और अगर उसकी डेथ होती है, ब्रेन डेथ होती है, अगर आप उसके पुत्र हैं या भाई हैं

0: या बेटी है या पत्नी है या पति है,
1: जी
0: उसके वचनों को आप भी रखें, क्योंकि भगवान राम ने, और एक और बात बताऊंगा कि जिस वक्त हमारा युद्ध हो रहा था, रावण से जाने वाले थे भगवान राम, तो उन्हें किसी ने बताया कि देखो आप युद्ध में रावण को नहीं हरा पाओगे क्योंकि उस पे माता का आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा क्या करना है, बोले आपको माता को प्रसन्न करना है, दुर्गा माता को। तो उन्होंने वहीं पर ही समुद्र के किनारे दुर्गा माता पे व्रत रखे, नौ दुर्गे। वो रोज 108 कमल के फूल चढ़ाते थे, नीले कमल के फूल। आखिरी दिन 107 नीले कमल के फूल मिले, तो भगवान राम ने 108 फूल करने के लिए अपनी आंख निकाल के चढ़ाई, क्योंकि भगवान राम को एक नाम और कहा जाता है, कमल नयन।
1: कमल नयन।
0: वो इसलिए कहा जाता है कि उनकी आंखें नीली थी और कमल के समान बड़ी आंखें थी। अब माता उनकी इस त्याग से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने विजयी भव का उन्हें आशीर्वाद दिया। तो भगवान राम भी अगेंस्ट नहीं थे। तो हमारे यहां भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणपति, कोई भी भगवान अगेंस्ट नहीं है। अब जो
1: जी
0: आपने दादी जी की बात की, आज पता है जिन्होंने मॉरल साइंस पढ़ी हो कि जब सुर असुरों में भयानक युद्ध हो रहा था, और जब बताया गया कि कोई दानवीर अपनी अस्थियों का, अपनी हड्डियों का दान अपनी स्वेच्छा से करेगा, वो उससे जब व्रज बनेगा, उससे एक वेपन बनेगा,
1: बजरंग।
0: उससे उसको हराया जा सकता है, तो भगवान इंद्र, देवता इंद्र, अपने सब देवताओं को लेके पता चला कि महर्षि दधीचि ऐसे हैं जो हर चीज दान दे देते हैं। वो उनके आश्रम में गए, उन्होंने कहा कि महर्षि जी ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है। बोले हाँ मुझे पता है, क्या चाहिए आपको? बोले आप अपने अगर अपनी अस्थियों का अपने के
1: दान
0: लिए।
1: दे दे।
0: उन्होंने सहज ध्यान स्वेच्छा से दिया, उससे उन्होंने पूरी मानवता को बचाया। तो आप बताएं इससे बड़ा दान क्या होता है?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जो ये गलत फहमियां हैं कि धर्म हमारा ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि हम ब्रज में बात कर रहे हैं, और आज आपको पता है कि हमारे वृंदावन में जो इस वक्त सबसे बड़े महात्मा हैं,
1: प्रेमानंद जी।
0: प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने पूरा इसी के बारे में बोला है कि ऑर्गन डोनेशन जरूर करना चाहिए, अंगदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंगदान से किसी को जिंदगी मिल रही है। आपका जो शरीर है वो तो जल के खाक हो जाएगा, वो तो जल जाएगा, अंगों को क्यों जलाते हो अगर उनसे किसी को नई जिंदगी मिले?
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये कारण है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: आपका प्रश्न एक आ सकता है
1: हाँ
0: कि हम क्या कर रहे हैं,
1: हाँ
0: हमारा
1: जी
0: रोटरी क्लब
1: जी
0: क्या कर रहा
1: चलते
0: है?
1: चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो संस्था है वो इसमें किस तरह से काम कर रही है, तो संक्षेप में ये भी
0: जी,
1: थोड़ा सा बता
0: पहले
1: दें।
0: कार्य तो सबसे पहले जागरूकता, उसके लिए हमने बहुत काम किया और कर रहे हैं। दूसरा, जो हम 2 जुलाई 2026, 10 दिन बाद हम एक स्कीम कर रहे हैं लॉन्च, ऑर्गन डोनेशन वॉरियर। उसमें बिना पैसे के घर बैठे ऑनलाइन हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे, 5 सेशन देंगे फ्री, बिल्कुल मुफ्त होंगे। सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसमें आपको, आप एडल्ट होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको 5 लेसन्स देंगे जिसमें बताया जाएगा, जैसे आज मैंने इतना विस्तार में बताया कि क्यों जरूरत है, क्या क्या गलतियां हैं, और पब्लिकली इसे कैसे बोला जाना चाहिए, वो सब बताएंगे। और अगर आपने वो सुन लिया और समझ लिया तो उससे दो फायदे, आप जब जूम पे होगा, घर पे होगा या ऑफिस में होगा, तो और लोग जो बैठे हैं उन्हें भी सब उसकी जानकारी हो जाएगी। दूसरा, एक बार आपको पता चल जाएगा तो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, आप वॉरियर बन जाएंगे, हम उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। फिर आप अपने घर में, घर के बाद अपने समाज में, आप अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों में जागरूकता करेंगे। ये हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास ये है कि इस तरह हम लाख लोगों को जोड़ें, जिससे वो 10-10 लोगों को भी अगर अवगत करा दें, जैसे आज हम आपके यहाँ करा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि कितने आपके श्रोता हैं जो इससे सुनेंगे, समझेंगे और वो
1: तो
0: आगे भी इसको बढ़ाएंगे।
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोता बंधु, आप थे रोटेरियन लाल गोयल साहब, ब्रजवासी हैं, मुंबई में रहते हैं, और बड़े विस्तार से अंगदान क्या होता है, देहदान क्या होता है, टिश्यू दान क्या होता है, समाज के लिए क्यों उपयोगी है, क्या आवश्यकता है और करने से क्या मिलेगा। निश्चित तौर पे कुछ मिले ना मिले, लेकिन देने का सुख आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सभ्यता कहती है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि देने से बड़ा सुख कुछ नहीं है, दान से बड़ा कुछ नहीं है, तो आप इस सब में, क्योंकि जाने के बाद तो कुछ नहीं रहा, तो

0: जाने के बाद का सुख भी आप अंग दान करके, देह दान करके, टिश्यू दान करके आप ले सकते हैं। गोयल साहब, आप आए, इतनी विस्तार से और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने बांटी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये शुभकामनाएं कि इस नेक काम को आप जो समाज में लेकर जा रहे हैं, समाज का भी सहयोग मिलेगा, हमारे श्रोताओं का भी मिलेगा। और जब कभी फिर मिलेंगे आपके साथ तो इस विषय पर फिर से बात करेंगे कुछ नए अनुभव और नई प्रगति के साथ। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे हिंदी वार्ताक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता, जिसका विषय था हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय जनमानस। क्षमा कीजिए, अंगदान महादान। इस विशेष बातचीत को आपने सुना रोटेरियन लाल गोयल से बातचीत की ओपी सिंह ने।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, आज मंगलवार दिनांक 23 जून सन 2026 को संध्या 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा एकीकृत खेती एवं मछली पालन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान क्रम में खेती बाड़ी के साथ किसान की आय बढ़ाने, जल संसाधनों के प्रबंधन और अन्य आय स्रोतों के सृजन और जिले में मछली पालन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर नित्यानंद पांडे से। कार्यक्रम का समय रहेगा आज संध्या शाम 6:15 से 6:45 के मध्य। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत।

बाबुल सुप्रियो की आवाज में आपने सुना हंगामा फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

वजूद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का।

अलका याग्निक, कमाल खान और साथियों की आवाज़ में आपने सुना ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, आज मंगलवार दिनांक 23 जून सन 2000

26 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज का विषय है एकीकृत खेती एवं मछली पालन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान क्रम में खेतीबाड़ी के साथ किसान की आय बढ़ाने, जल संसाधनों के प्रबंधन और अन्य आय स्रोतों के सृजन और जिले में मछली पालन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर नित्यानंद पांडे से। कार्यक्रम का समय होगा आज शाम 6:15 से 6:45 के बीच। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और अब सुनते हैं फिल्म संगीत का ये अगला गीत।

रेडी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना तुलसी कुमार और के की आवाज़ में। गीत को लिखा था नीलेश मिश्रा ने और संगीत था प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

क्या सुपर कूल हैं हम। इस फिल्म का ये गीत आप सुनिए सोनू निगम की आवाज में। शब्द रचना कुमार की, संगीत मीत ब्रदर्स का।

क्या सुपर कूल हैं हम। फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त हुआ। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, हमें खेद है कि हम तकनीकी कारणवश आपको कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी नहीं सुनवा पा रहे, लेकिन अब आप सुनिए फिल्म संगीत।

अलका याग्निक, बाबुल सुप्रियो को आपने सुना हम तुम फिल्म के इस गीत में। इस गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीत था जतिन ललित का। और अब सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में जब वी मेड फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह को, फिल्म थी मौसम, गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत था मदन मोहन का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, इस गीत को हमने फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लिया है। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और साथियों ने। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा और संगीत रविंद्र जैन का।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म जुदाई के इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, जीवन का संगीत तभी मधुर बनता है जब उसमें आशा, विश्वास और आत्मबल का स्वर शामिल हो। चाहे लोक सेवा का क्षेत्र हो या जीवन की चुनौतियों का सामना करती महिलाएं, दोनों ही हमें धैर्य और समर्पण की प्रेरणा देते हैं। इसी दिल की बात के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। फिल्म संगीत के सफर में आपका स्वागत है साथियों, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, आपसे करेंगे चर्चा किन्हीं दो विषयों पर, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

साथियों, 23 जून का दिन विश्व स्तर पर दो महत्वपूर्ण अवसरों के लिए जाना जाता है। एक संयुक्त राष्ट्र लोवा लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। साथियों, एक ओर यह दिन समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले लोक सेवकों के समर्पण को सम्मानित करता है, वहीं दूसरी ओर यह दिन उन महिलाओं के संघर्ष, साहस और अधिकारों की बात करता है जिन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का मार्ग चुना और इस मार्ग को हमेशा चुनते हुए उन्होंने हर तरह की कठिनाई का, विषम परिस्थितियों का सामना किया। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की। और कार्यक्रम के दौरान आप सुनते ही रहते हैं प्यारे प्यारे ऐसे गीत जो जीवन, संघर्ष, सेवा और आशा का संदेश देते हैं। तो साथियों, चर्चा आपसे इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम के मध्य में एक और ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अंधेरे में भी जो रोशनी को छू जाए वही सच्चा सेवक कहलाता है। हर वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन लाखों लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देना है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, सुरक्षा, स्वच्छता और जन कल्याण के क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रहे हैं। लोक सेवा केवल एक नौकरी नहीं है साथियों, ये एक राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का भाव है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव है। एक शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में जनसेवा के महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं। डिजिटल युग में लोक सेवाओं का स्वरूप और अधिक प्रभावी हुआ है। ऑनलाइन सेवाओं और ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं अधिक सरलता से उपलब्ध हो रही हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण ईमानदार और समर्पित लोक सेवकों के सहयोग से ही संभव है। सेवा, समर्पण और सुंदर जीवन का जो संदेश है वो देता है लोक सेवा में संलिप्त प्रत्येक नागरिक। आपसे होती रहेगी चर्चा।

साथियों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के साथ साथ आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाते हैं। इसका उद्देश्य सम्मानपूर्ण जीवन की आवश्यकता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। विधवाओं की समस्याओं और अधिकारों और उनके सम्मान को वापस लौटाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में

सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है साथियों कि हम समाज में व्याप्त भेदभाव और पूर्वाग्रहों को समाप्त करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें यह संदेश देता है कि किसी भी महिला की पहचान केवल उसके वैवाहिक जीवन से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा, क्षमता और व्यक्तित्व से होती है। हमें ऐसा समाज बनाना है जहां हर महिला सम्मान, सुरक्षा और समान अवसरों के साथ जीवन जी सके। सम्मान मिले हर नारी को, यही हमारी शान। दुख की घड़ियों में भी मिले जीवन को नई उड़ान। हौसलों की रोशनी से हर अंधियारा छट जाए। सम्मान और अधिकारों से हर जीवन मुस्काए।

साथियों, अभी हमने जाना संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में। आज आवश्यकता है कि हम अपने आसपास कार्य कर रहे लोक सेवकों के प्रति सम्मान व्यक्त करें और समाज में प्रत्येक महिला को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने दें। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि समाज में सेवा, संवेदनशीलता, सम्मान और सहयोग की भावना को और अधिक हम मजबूत बनाएंगे। सेवा का दीप जलता रहे, मानवता मुस्काए, सम्मान और अधिकारों से हर जीवन खिल जाए। संघर्षों से जो हार न माने वही सच्ची पहचान, साहस सेवा और संवेदना से बढ़े देश का मान।

को। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इसी चर्चा के साथ यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

साथियों, कोरा उपदेश भी तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसे चरितार्थ न किया जाए। वाणी के बजाय कार्य से दिए गए उदाहरण कई ज्यादा प्रभावी होते हैं और प्रत्येक सफल व्यक्तियों की एक बात की समानता मिलती है कि उन्होंने केवल वाणी से नहीं बल्कि अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए हमारे महान से महान संकल्प भी केवल रेत के विशाल महल का निर्माण करने जैसे हो जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है साथियों आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बात और SMS में। और आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

साथियों, अब वक्त हो गया है आपके संदेशों की ओर बढ़ने का, यानी उन्हें पढ़ने का। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम की ये पहली पेशकश आपकी फरमाइश पर।

साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए पढ़ देते हैं आपके संदेशों को। 11:45 पर सदर बाजार कोरावली से हमसे जुड़ चुके हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। ये संदेश प्राप्त हुआ है। अगला हमें राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी, प्रियांशी, समस्त मनवर परिवार शाहूनगर यवतमाल से हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे अगले फरमाइशकर्ता गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र के सोपान तायडे, बसंतराव भोजने, पीहे स्वानकर, तुषार करांगले का संदेश प्राप्त हुआ। राजनगर मधुबनी बिहार के राजकुमार गुप्ता, विनीता, रवि राज, गौरव कुमार, समस्त मित्रगण, छपरा दालदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार, सर्वजीत, सुधांशु कुमार गुप्ता का संदेश भी मिल चुका है। अगला संदेश हमारे पास आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी भाटिया का, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमसे जुड़ चुके हैं।

राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। ये संदेश हमें मिला है अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले का, कुम्हार गली श्रीरामपुर से, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका विशाखा का संदेश भी मिला। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमसे जुड़ चुके हैं। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा नाज, असद, अरहाम और समस्त परिवारीजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हमसे जुड़े। खमरिया छत्तीसगढ़ के साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार का संदेश भी प्राप्त हुआ। गांव हांडी खेड़ा के राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का संदेश नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमें प्राप्त हुआ। बाबा कुटीर रायगढ़ के शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान का संदेश भी हमें मिल चुका है। अगले हमारे फरमाइश करता है जो हमसे जुड़ चुके हैं, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन के दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। लालपुर मरो छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी, निमी पम्मी और निशांत ध्रुव। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा का संदेश हमें मिला पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा भी हमसे जुड़ चुके हैं। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख कुमार, सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी हर्षिता ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गंगदीप आरजू और गुड्डू जजौरिया का। एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, गणेशपुर गंजटुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ चुके हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमसे जुड़े। सुभाष योगी, सुशील, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से हमसे जुड़े। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, कोटवा, नारायण, बाबा पट्टी बलिया से, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय भी हमसे जुड़े। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का संदेश प्राप्त हो चुका है। अगले फरमाइश करता है दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले, शेडी बडनेर अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर का भी संदेश हमें मिल चुका है। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ चुके हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला का संदेश प्राप्त हुआ। अगले फरमाइश करता है जो हमसे जुड़ चुके हैं पलारी छत्तीसगढ़ के नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत हमसे जुड़े। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, माहौली चंडीगढ़ से हमसे जुड़े। मलकापुर महाराष्ट्र के सोपान तायडे, नारायण इंगले, आशीष मुरहेकर हमसे जुड़े। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस फानकर, निर्मला, विशाल हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश मिल चुका है हमें दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।

का ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। साथियों आइए सुन लेते हैं अब कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म हमसाया के इस गीत को अभी आपने सुना। शेवान रिजवी ने इस गीत को लिखा और ओपी नैयर का था संगीत। आइए पढ़ लेते हैं अब आपके संदेश। तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष वसाने उषा ऋषिकेश अनिकेत सागर कटक का संदेश मिला। दिंडोरी नासिक से विशाल गवली सोनाली समर्पण और भक्ति भी हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश आया है हमारे पास फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद और शाहिद का। हमसे जुड़ चुके हैं वासुदेव बोधबड़े अनीता रामेश राव बुलढाणा महाराष्ट्र से कमल बालूजा मधुसागर उमंग आकांक्षा माही मजनू का टीला से हमसे जुड़े जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस का संदेश भी हमें मिल

चुका है। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का संदेश भी हमें मिला। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान भी हमसे जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ के सतीश अनेजा, विमला अनेजा भी हमसे जुड़े। सुदर्शन शाह, बल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का संदेश हमें पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य, बघेरा दुर्ग से हमसे जुड़े, हमसे जुड़ चुके हैं। अपना संदेश भेजकर हमारे अगले फरमाइशकर्ता सुशीला देवी, मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव, डाबकी रोड अकोला से आप हमसे जुड़े हैं। सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण, शीनिका, शनिजा का संदेश प्राप्त हुआ, आप हमसे जुड़े हैं। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से साधु शहर के रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ भी हमसे जुड़ चुके हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा का संदेश प्राप्त हुआ। निसार सलमानी, नौशाद बेबी, आलिया आयान बाबू, धनौरी तेली वाला से हमसे जुड़े। उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका, भानु प्रकाश का संदेश भी प्राप्त हुआ। दिलदार मेरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मेरी, कुर्मा जांजगीर, चांपा छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ चुके हैं। सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश प्राप्त हुआ झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया का। डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल, बेबी सिया हमसे जुड़े हैं। नेहरू चौक पैंठड़ से जालना शहर के सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव भी हमसे जुड़े। सौंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार का संदेश मिल चुका है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा का संदेश प्राप्त हुआ। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीशु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत और गुड्डी भगत भी हमसे जुड़ चुके हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी, प्रहलाद, उमेश, राजेंद्र, प्रमिला, ज्योति वर्मा हमसे जुड़े। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। साथियों आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों हमसे जुड़ चुके हैं कृष्णा पार्क दिल्ली के सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। अगला संदेश हमारे पास आया है अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और सभी मित्रगण हमसे जुड़ चुके हैं मगनपुर झारखंड से। हमसे जुड़े हैं अपना संदेश भेजकर गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। अगला संदेश हमारे पास आया है यशपाल धीमान, धर्मपत्नी कृष्णा धीमान और सारी धीमान फैमिली हमसे ये जुड़े हैं मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक बहादुर, गंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान, परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद का संदेश हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आराध्या सुरलकर। अगला संदेश हमारे पास आया है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू हमसे जुड़ चुके हैं। मोहाली पंजाब के बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का संदेश भी हमें मिला। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा, असद अरहाम, समस्त परिवारीजन नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमसे जुड़े। संदेश भेजा है हमें उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका भानु प्रकाश ने, राजेश कुमार, मेहरानंद किशोर, विनोद अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर राहुल, चंदू देवराज, लक्ष्य, समस्त ग्रामवासी हमसे जुड़ चुके हैं। बकानी खुर्द ग्राम पोस्ट आंवली कला वाया भवानी मंडी जिला झालावाड़ राजस्थान से संदेश ये प्राप्त हुआ है। शिवाजी चौक बोराला खुर्द महाराष्ट्र के आदिनाथ बाघ पाटिल, अमोल बाघ गुड़िया, कृष्णाली अशोक देशमुख का संदेश भी हमें मिल चुका है। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया का संदेश भी हमें मिल चुका है। ये संदेश हमें भेजा है सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती हिमांशु गोदारा ने, हीरावाली फजिल का पंजाब से, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदली जंघेल का संदेश भी प्राप्त हुआ। साथियों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का और आपसे अनुमति लेने का। चलते चलते बस यही कहूँगी कि रहोगे उदास तो कोई खबर नहीं पूछेगा, मुस्कुराते रहोगे तो ज़माना वजह पूछेगा। तो ये

निर्भर करता है आप पर कि क्या करना है आपको। इसी विचार के साथ, सद्भावना के साथ अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए उषा पांडे का नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज के कलाकार हैं जगदीश ब्रजवासी, संगत कलाकार हारमोनियम पर रामेश्वर दयाल शर्मा का, ढोलक पर संगत दी है प्रोफेसर मिश्रा ने, सारंगी संगत मनमोहन कौशिक और परकशन संगत गुलाम जाफर की। आइए सुनते हैं जगदीश ब्रजवासी के ही स्वरों में कार्यक्रम का ये पहला ब्रजलोक गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार। निक्षय मित्र।

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत में कलाकार जगदीश ब्रजवासी के गाए हुए कुछ ब्रज लोक गीतों का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत कलाकार जगदीश ब्रजवासी के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रज लोकगीतों का।

हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस. हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ. शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बुक योर टिकट्स नाउ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान.

इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं जगदीश ब्रजवासी के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रजलोक गीतों का। संगत कलाकार हैं, हारमोनियम पर संगत दी है रामेश्वर दयाल शर्मा ने, ढोलक पर संगत प्रोफेसर मिश्रा की, सारंगी संगत मनमोहन कौशिक की और परकशन संगत गुलाम जाफर की।

0: कार्य इसलिए कि नाफेड़ जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड़ ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threat for us.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होबिजर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी।
5: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

0: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे जगदीश ब्रजवासी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संवेद स्वरों में देशगान। अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम में होगी चर्चा, विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस एवं बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा सशक्त नारी की पहचान, बजट और बचत में आर्थिक स्वाभिमान। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सीमा शर्मा। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी भावना शर्मा। अपराह्न 1:45 पर श्रोता साथी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे अपराह्न 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:00।

राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 एवं नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे संध्या 5 बजे, जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर योग और अनुकूलित योग एवं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे कानूनी वार्ता कोर्ट मैरिज प्रक्रिया, जानकारी देंगे एडवोकेट प्रेम चौधरी। संध्या 6:10 पर संवेश स्वरों में आप सुनेंगे देशगान।

0: संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम में विषय होगा एकीकृत खेती एवं मछली पालन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज बेडनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। संध्या 6:45 पर गैर फिल्मी संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रजलोक कथा भक्त नारायण के विषय में जानकारी देंगे कथाकार गौरी अग्रवाल। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बाला साहब पूंछ वाले का ख्याल गायन राग धानी काफी में आप सुनेंगे। तबला पर संगत करेंगे श्री अब्दुल सलाम, सारंगी पर संगत हरिबाबू कौशिक की। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मनी टॉक और रात्रि 9:45 पर दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मंथन आप सुन सकेंगे।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

0: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं. सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान.

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस मंगलवार यानी कि आज दिनांक 23/6/2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट की अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है एकीकृत खेती एवं मछली पालन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज बेडनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान क्रम में खेतीबाड़ी के साथ किसान की आय बढ़ाने, जल संसाधनों के प्रबंधन एवं अन्य आय स्रोतों के सृजन

और जिले में मछली पालन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज बेडनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज बेडनरी यूनिवर्सिटी मथुरा से। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम यानी आज 6:15 से 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं भावना शर्मा।

वनिता लोक सुन रही सभी श्रोता बहनों को भावना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों चलिए आपका आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो बहनों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी उस शब्द की जो बहुत ही दुखद है, और वो शब्द है विधवा। सुनने में कितना कठिन है, अपनी जुबान से कहना कितना कठिन है कि वो विधवा है। क्या बीती होगी उस पत्नी पर जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं। बहनों हमारी उन बहनों के लिए ये दिन, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, जो कि हर साल 23 जून को ही मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की विधवाओं महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद झेली जाने वाली जिल्लत, गरीबी, दुर्व्यवहार, अन्याय और अकेलापन, इस के प्रति हमारे समाज में उनको जागरूक रहना है। यह दिवस विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिससे ये पता चलता है कि उन्हें समाज में किस प्रकार की उपेक्षा और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून 2011 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। दुनिया में लाखों विधवाओं को गरीबी, बहिष्कार, हिंसा, बेघर, बीमारी और बहुत शारीरिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। कई शहरों में विधवा आश्रम भी हैं, जहां वे अकेली अपने परिवार से दूर होकर के रहती हैं, अपने दिन काटती हैं। वे अकेली विधवा आश्रमों में गुजर तो कर लेती हैं, लेकिन ये तो उनका दिल ही जानता होगा कि उनका जीवन कैसे गुजरता है। उनकी कोई आवाज़ सुनता ही नहीं। ऐसे में विधवाओं की आवाज़ों और ज़रूरतों पर ध्यान आकर्षित कैसे हो, उनको सब जगह से कैसे समर्थन मिले, यह जरूरी है कि नहीं, है ना। तो भारत में करीब 4 करोड़ विधवाएं हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इनमें से अधिकतर महिलाएं जीवन यापन के लिए संघर्षरत हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बताना ये बहुत आवश्यक है कि उनके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो विधवा पेंशन योजना उन्हें ये लाभ दे सकती है, उन्हें आर्थिक मदद दे सकती है। अगर वे शिक्षित हैं तो उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, इस तरह से वे स्वावलंबी बन सकती हैं। उनके पति की मृत्यु के बाद वे लाचार और बेसहारा ना रहें, ऐसा उन्हें सोचना नहीं चाहिए। वो खुद भी कुछ ना कुछ कार्य कर सकती हैं, स्वावलंबी बन सकती हैं। वो एक अलग चीज़ है कि

कि उनकी उम्र उस लायक नहीं है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर वो कर सकती हैं, शारीरिक रूप से समर्थ हैं, तो ज़रूर उनको करना चाहिए। और ये भी है कि साथ साथ बेसहारा ना रहें और उनकी जमीन और संपत्ति को भी कोई ना हड़पे। ये उनको इतना सतर्क रहना पड़ेगा कि उनके साथ कोई बुरा ना हो और कोई भी अन्याय ना हो। तो वो थोड़ा अगर सजग रहेंगी, जागरूक रहेंगी, तो निश्चित ही उनके ही हित में कार्य होगा। तो बहनों, अब अगली बात हम आपसे करेंगे नारी शक्ति के बारे में। नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई भी प्रकाश नहीं। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुमको विश्वास नहीं। नारी कर लेगी सब काम बेहतर और से को उपहास नहीं। तो बहनों, नारी की शक्ति को आंकना बहुत ही कठिन है। बहनों, बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका केवल घर परिवार तक सीमित ना रह करके बहुआयामी और अत्यंत प्रभावशाली हो गई है। आज के वे शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, कॉरपोरेट राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का मुख्य आधार स्तंभ बन गई हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी माननीय महोदया राष्ट्रपति को ही आप ले सकते हैं। आज देश की बागडोर एक महिला ही संभाले हुए है। शिक्षित महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। एक परिवार को नहीं बल्कि दो दो परिवारों को चला रही हैं। वे आत्मनिर्भर हैं। पारिवारिक दायित्वों के साथ वे नेतृत्व कर सकती हैं। और कोई भी पद हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो संभाल सकती हैं। वे सक्षम हैं उस पद को संभालने के लिए, और वो भी बखूबी। जो महिलाएं किसी भी कारणवश पढ़ी लिखी नहीं हैं, आज वे भी स्वरोजगार यानी खुद अपना धंधा लघु उद्योगों में भी लिप्त रह सकती हैं और रह रही हैं। और कुछ तो आज के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट को समझते हुए घर से ही कार्य कररत हैं, जैसे कि क्लाउड किचन यानी घर से ही खाना फूड सप्लाई कर रही हैं। कुछ तो एनजीओ चला रही हैं और वो भी बखूबी चला रही हैं। कितने ही बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं। भारतीय महिलाएं बहुत सक्षम हैं। भारतीय महिलाएं हर कार्य को, किसी भी उद्योग को अच्छी तरह से चला सकती हैं। फिर वो चाहे उसकी अपनी पसंद का हो, जैसे कि बुटीक है, अगर कोई जानती है महिला तो वो अपना बुटीक खोल सकती है। पार्लर है, पार्लर को भी महिलाएं चला रही हैं। जहां एक तरफ नई नई चुनौतियों का महिलाएं सामना भी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर विकास की ओर उनकी भूमिका में वृद्धि भी होती जा रही है। यह विकास उन्हें नई स्वतंत्रता, समानता और समाज में प्रमुख भूमिकाओं का अवसर प्रदान कर रहा है। समाज में आए बदलाव के साथ भारतीय महिलाएं शिक्षा, तकनीकी, करियर में अपना परचम लहरा रही हैं। तो महिलाएं अपने हर क्षेत्र में अपना बेस्ट दे रही हैं और वो समर्थ हैं, इसीलिए आगे बढ़ रही हैं। तो बहनों, अब अपने इस चर्चा को अपने एक गीत के साथ जोड़ देते हैं और सुनते हैं एक गीत।

0: तो बहनों, अभी आपने ये बहुत ही बढ़िया प्यारा सा गीत सुना और हम आपसे बात कर रहे थे महिलाओं की, उनकी नारी शक्ति के बारे में। तो बहनों, आज की जो वार्ता है वह एक करियर वार्ता है और विषय है सशक्त नारी की पहचान, बजट और बचत से आर्थिक स्वाभिमान। ये हम अब सुनने जा रहे हैं और इसकी वार्ताकार हैं डॉक्टर सीमा शर्मा। तो आइए अब सुनते हैं।
1: महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। वे सीमित संसाधनों से पूरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करती हैं और सक्षम होती हैं। एक सशक्त महिला केवल परिवार देखभाल ही नहीं करती बल्कि परिवार के आर्थिक भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है। प्राय हम सोचते हैं कि बजट केवल बड़े व्यापारियों, कंपनियों या सरकार के लिए होता है, लेकिन वास्तव में बजट की सबसे अधिक आवश्यकता एक परिवार के लिए होती है और परिवार का आर्थिक प्रबंधन प्राय महिलाओं के हाथों में होता है। बजट हमें अनुशासन सिखाता है, बचत हमें सुरक्षा देती है और आर्थिक जागरूकता हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जो महिला बजट की शक्ति को समझती है वह केवल घर नहीं चलाती बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का निर्माण करती है। अतः हमें जानना चाहिए कि बजट बनाने के सरल तरीके क्या हैं। बजट बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके कुछ चरण सरल तरीके से अपनाकर प्रभावशाली

बजट अपनाया जा सकता है। इस हेतु सर्वप्रथम यह जानिए कि महीने में कुल आय कितनी है, उसके पश्चात घर खर्चों की सूची बनानी होगी। इसके लिए सभी खर्चे जैसे राशन, बिजली, पानी, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, यात्रा आदि सभी खर्चों को लिखना होगा। सभी खर्चों को लिखकर आवश्यक और अनावश्यक खर्चों को अलग अलग करना होगा। उसके बाद जरूरी खर्चों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करना होगा और अनावश्यक खर्चों को या तो कम करना होगा अथवा कम करने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप स्वतः ही बचत हो जाएगी और खर्च करते समय अपनाएंगे कि पहले बचत करें फिर शेष राशि खर्च करेंगे। बचत और बजट एक दूसरे के पूरक हैं। यदि बजट सही होगा तो बचत अवश्य होगी और यदि बचत होगी तो भविष्य सुरक्षित होगा। यह शाश्वत सत्य है कि कमाई से नहीं बचत से समृद्धि आती है और चाहे बचत छोटी हो या बड़ी, नियमित बचत का बहुत महत्व है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और रुपया रुपया जोड़कर भविष्य सुरक्षित बनता है। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी आर्थिक शक्ति में बदल जाती हैं। आज के समय में आर्थिक सशक्तिकरण केवल पुरुषों की ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी आवश्यकता है। एक शिक्षित, जागरूक और आर्थिक रूप से सक्षम महिला न केवल अपने परिवार को सशक्त बनाती है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहा भी गया है, आय बढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण है आय का सही प्रबंधन करना, और वह प्रबंधन होगा बजट से। एक सुव्यवस्थित बजट परिवार के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, अनावश्यक खर्चों को कम करता है, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयारी करता है, तनाव और आर्थिक चिंताओं को कम करता है। सरल शब्दों में बजट आय और व्यय का एक सुनियोजित लेखा जोखा है। यह हमें यह बताता है कि हमारी आय कितनी है, खर्च कहाँ और कितना हो रहा है तथा भविष्य के लिए कितनी बचत की जा सकती है। जैसे किसी घर का नक्शा उसके निर्माण को व्यवस्थित करता है, उसी प्रकार बजट हमारे आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करता है। महिलाओं के लिए बचत के व्यवहारिक उपाय इस प्रकार हैं। प्रत्येक माह आय का कम से कम 10-20% बचत के लिए अलग रखें, दैनिक खर्चों का लेखा जोखा रखें, अनावश्यक खरीदारी से बचें। बैंक खाते, आवर्ती जमा, सावधि जमा खाते तथा अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों का उपयोग करें। आज के समय में महिलाओं को बैंक खाता, ATM, UPI, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि आर्थिक लेनदेन भी सुरक्षित और पारदर्शी बनता है। डिजिटल माध्यमों से बचत और निवेश की जानकारी प्राप्त करें, बच्चों को भी बचत की आदत सिखाएं। आज की आवश्यकता वित्तीय साक्षरता। आज महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बीमा, निवेश और सरकारी बचत योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। जब महिलाएं वित्तीय रूप से जागरूक होंगी तभी वे अपने अधिकारों और अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकेंगी। बजट और बचत केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं बल्कि बेहतर जीवन की मजबूत नींव हैं। एक महिला जब अपने वित्त का सही प्रबंधन करती है तो वह स्वयं अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाती है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि आय चाहे कम हो या अधिक, हम नियमित बजट बनाएंगे, बचत को आदत बनाएंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर प्रयास करेंगे। हम अपनी आय का सम्मान करेंगे, सोच समझकर खर्च करेंगे, नियमित बचत करेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। बचत की शुरुआत बड़ी राशि से नहीं बल्कि सोच से होती है, इसलिए
बजट की समझ महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बजट से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। जब महिला सोच समझकर खर्च करती हैं, तो घर की आय का सही उपयोग होता है। इससे परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। बजट से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण हो जाता है। बजट हमें सोच समझकर खर्च करने की आदत सिखाता है। इससे हम अनावश्यक

0: वस्तुएं खरीदने से बच जाते हैं। बजट से भविष्य सुरक्षित बनता है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह या किसी आपातकालीन स्थिति के लिए पहले से योजना बनाना आसान हो जाता है। बजट से मानसिक तनाव कम होता है, क्योंकि जब आय और व्यय का संतुलन बना रहता है तो आर्थिक चिंताएं कम होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ता है। जो महिला आर्थिक मामलों को समझती है और सही निर्णय लेती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है तथा परिवार में उसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस हेतु एक छोटी सी प्रेरक कहानी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। एक गृहिणी प्रतिदिन केवल 50 रुपये बचाती थी। परिवार के लोग सोचते थे कि इतनी छोटी सी राशि से क्या होगा, लेकिन 5 वर्षों बाद उसकी बचत इतनी हो गई कि उसने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण सहयोग किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बजट के साथ छोटी छोटी बचतें बड़े सपनों को पूरा कर सकती हैं। अंत में अपनी बात को समाप्त करने के साथ कहना चाहूंगी कि जो महिला आज बचत करती है, वही कल आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीती है। बजट और बचत केवल धन नहीं बचाते, बल्कि भविष्य संवारते हैं।
1: अभी आपने ये करियर वार्ता सुनी। विषय था सशक्त नारी की पहचान, बजट और बचत से आर्थिक स्वाभिमान, और वार्ताकार थी डॉक्टर सीमा शर्मा। तो बहनों, आइए अब सुन लिया जाए आपके मनोरंजन हेतु एक और गीत, क्योंकि गीत देता है खुशी, मन हल्का करता है। तो आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं. सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
2: आराम से मैडम.
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
4: बहनों, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और कार्यक्रम खत्म करने से पहले हम आपको देते हैं कुछ घरेलू टिप्स. तो सबसे पहला है कि चावल बनाते वक्त गर्म पानी में एक दालचीनी का टुकड़ा या थोड़ा सा नारियल तेल की कुछ बूंदें डाल दें तो चावल में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और चावल पकता भी अच्छा है. दूसरा है, सब्जी को एक घंटे एक हफ्ते रखना है तो उसको कंटेनर्स में डालने और साथ ही एक मिट्टी का दीवला, जैसे पहले यूज होता था दीवला दीपक, उसको आप उसी के कंटेनर में रखें जिससे कि वे सब हरी जो सब्जी है वो हफ्ते भर तक खराब नहीं होगी. अगला है, पूरी को नरम और खस्ता बनाना है तो आटा मारते वक्त या तो 2 चम्मच ठंडी दही मिला लें और या फिर थोड़ा सा मोन डाल दें. इन दोनों काम करने से ही पूरी नरम भी रहती है और स्वादिष्ट बनती है. अगला है कि सब्जी या दाल अगर हम पका रहे हैं और वो नीचे से थोड़ी सी लग गई है यानी जल गई है तो उसमें ऊपर से एक ताज़ा पान का पत्ता जो पान खाते हैं, चबाते हैं, खाने लायक जो होता है वो डाल दें और थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक्कन ढक दें तो 5 मिनट के बाद वो जली हुई जो बदबू है वो खाने में से या दाल में से गायब हो जाएगी स्वतः ही. अगला है, अगर किसी कारणवश आपका पेट खराब है, पेट में ऐठन ऐठन जैसा लग रहा है, हल्का सा दर्द है तो एक देसी जुगाड़ भी है कि केले के साथ आप इसबगोल की भूसी मिक्स करके सुबह शाम खा सकते हैं तो उससे आपके जो बीच बीच में जो दर्द है वो चला जाएगा. अगला है कि रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में शहद मिला करके पीने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है तो आप शहद मिलाइए, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें. तो बहनों, अब कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं. आप सुनेंगे कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक गीत. तो कार्यक्रम समाप्त करने की भावना शर्मा को दे आज्ञा.

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया भावना शर्मा ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे।

अभी आपने सुना के और वसुंधरा दास को फिल्म मैं हूं ना के इस गीत के लिए। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत था अनु मलिक का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। साथियों, इस गीत को हमने लिया है फिल्म मैं प्रेम की दीवानी से। सुनिधि चौहान और करीना कपूर की जुगलबंदी में ये गीत है। देव कोहली ने गीत को लिखा और संगीत अनु मलिक का।

इस वक्त जिस गीत का आप आनंद लेने जा रहे हैं उसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है मैं तेरा हीरो। गीत को लिखा कौसर मुनीर ने और धुन तैयार की साजिद वाजिद ने। तो लीजिए।

फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से NAFIX.IN, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांति

0: करी, इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो

0: की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या?
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now. Noida International Airport, जहां सपने भरे उड़ान।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में

0: यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की।

0: उत्तर है। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? क्या खचन? अरे चल सब खोज रहे तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं,

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई, तेरा

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।

0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों साथ?

0: सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है। मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
0: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
0: अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
0: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
2: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं?

0: और उसी से कोसी का जन्म हुआ
1: और क्या?
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
0: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
3: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?

0: हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
3: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5 बजे हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजने को हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे श्रोता सुनेंगे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 एवं नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करने जा रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित है वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितेश,
1: A warm welcome to all the listeners of Akashvani from Ganatantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. In a short while,

0: From now, Honorable President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 at the second civil investiture ceremony of this year. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry.
1: और नितेश हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है. सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में. सभी को नमस्कार करते हुए.
0: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in lifetime.
1: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितेश. यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है. ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है. श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता यह है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं. यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं. हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितेश. इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है. आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है.
0: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the bugler announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया, बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गुरुंग के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ले गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज विधिवत
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deen Dayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: बहुत ही गौरव का क्षण।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस, लोक कार्य।
0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति टॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे

0: उन्हें वो पुरस्कार दिए मिल चुके हैं.
1: दिस इज राइट. थॉमस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, पुलिस रिफॉर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड्स. इज रिसीविंग द पद्म विभूषण फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू.

0: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस।
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुँचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार लेते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलियानंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times, and National Safety Awards 2 times, Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
1: अपना पुरस्कार ग्रहण करते हैं।
0: श्री ममूटी कला फिल्म अभिनय।
1: ममूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में है, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री ममूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी के कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
2: Clad is in a formal band gala. Shri Mamuti is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes also and the patron for several
0: charitable initiatives. Shri Vellapalli Nateshan Lok Karya.
1: Shri Vellapalli Nateshan Kerala ke pramukh rajneetik neta aur pratishthit vyakti hain. Shri Nateshan ne के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
2: एंड श्री नटेशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फैमिली यूनिट्स एट द शाख लेवल, एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इनटू हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर विमेन्स लीडरशिप, एजुकेशनल सपोर्ट, सेविंग्स प्रमोशन, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी कोहेजन बियॉन्ड केरला। SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi and the Gulf. Receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
0: Dr. Datta Treyodu Nori, Chikitsa Oncology.
1: आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्ति ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी नेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
2: डॉक्टर नोरी हैज एक्सटेंडेड हिज एक्सपर्टाइज इन एक्सपीरियंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स इन नियरली 2000। In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
0: Shri Shibu Soren, Marnopran, Lok Karya, unki patni, Shrimati Rupi Soren.
1: Shri Shibu Soren ko Marnopran ka ye award diya ja raha hai, jo unki patni lengi aur maane Rashtrapati niche utarte hue unko ye padak pradan karne ke liye पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धापूर्वक दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
2: फॉर मिलियंस श्री सोरेन वाज मोर देन ए पॉलिटिकल लीडर, ही वाज ए कस्टोडियन ऑफ मेमोरी, रेजिस्टेंस एंड होप।
0: अलका याज्ञिक कला पार्श्व गायन।
1: और अब नाम बुलाया गया है अलका याज्ञिक का,

0: जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका हैं और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं 4 दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
1: Born on 20th of March 1916 in Kolkata, West Bengal, Srimati Yagnik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. Her most famous song was Ek Do Teen.
0: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति
2: पद्मश्री श्री नूरुद्दीन अहमद कला निर्देशन।
1: Now we move on to पद्मश्री awardees. And Shri Nuruddin Ahmed is a visionary art director, sculptor and set designer who has refined the visual landscape of Ahamiya art and culture through his pioneering work in mobile theater, films and television.
0: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक चित्रों में अपने अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है। पुरस्कार ग्रहण करते हुए
2: श्री तिरुवरूर भक्त वसलम कला मृदंगम।
0: श्री तिरुवरूर भक्त वत्सलम प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार हैं। कर्नाटक संगीत के ताल वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार हैं। श्री भक्त वत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था। और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया, जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ। अपना सम्मान
1: Shri Thiruvarar Vatsalam was rooted in Tanjore style.
2: And Dr. Krishnamurti Balasubramanyam, Vigyan Evam Engineering.
0: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यम का, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित एल्टन फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
2: श्री ब्रिज लाल भट्ट समाज सेवा।
1: Shri Brijlal Bhatt is known for his distinguished social service promoting peace and harmony after his exemplary contribution during active service in Jammu and Kashmir. Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as chairman administrative committee Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra Nagdandi Anantnag Kashmir. Clad in the bandgala two-piece suit, receiving the Padma Shri from the president.
2: श्री तरुण भट्टाचार्य कला संतूर।
0: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का जो प्रख्यात संतूर वादक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शततंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शततंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
1: श्री भट्टाचार्य And credited for having created new Hindustani classical ragas, Rag Ganga, based on Swachh Ganga Abhiyan, and also having created
2: Shri Jyotish Devnath Kala Hatkarga Bunai.
0: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का, जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और चांदनी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के समृद्ध वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे बारीक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
1: Beyond his personal artistry, Shri Devnath has made significant contribution as a mentor and
2: Dr. Jogesh Deori Krishi.
0: अगला नाम डॉक्टर जोगेश देओरी का, आसाम एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ है जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
1: Absolutely, Dr. Deori is एरी सिल्क pioneer credited

0: it with modernizing traditional Eri silk rearing methods. He's a strong advocate for Eri silk ahimsa, or non-violent silk, viewing it as a sustainable future for Assam's economy and rural youth. I think he's wearing the Eri silk.
1: Shri Bhiklaya Ladkaya Dinda Kala Lok Sangeet.
2: Agla naam Shri Dinda. आप एक प्रतिष्ठित आदिवासी लोक संगीतकार हैं और बालगंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में, संरक्षित करने में बताया है।
0: When in addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional
1: Dr. Amida Fernandez, Chikitsa, neonatology.
2: प्रसिद्ध न्यूनेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस को भारत में न्यूनेटोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
0: डॉक्टर फर्नांडिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस। Clad in a green sari, she is proudly receiving this award from Honorable President
1: Dr. Chandramouli Gaddamunugu, Vigyan Evam Engineering.
2: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक परियोजना निदेशक, आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
0: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
1: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
2: डॉक्टर प्रेमलाल गौतम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात पादप प्रजनक शिक्षक, मार्गदर्शक, अनुसंधान प्रबंधक, संस्था निर्माता हैं।
0: डॉक्टर गौतम वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ डजन इंप्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज, पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन, एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वैराइटीज।
1: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर कला कांस्य शिल्प।
2: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
0: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which was struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
1: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
2: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह के संस्थापक, निदेशक और लद्दाख अमची सभा लेह लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हैं। एक अत्यंत गौरव का पल।
1: श्री अशोक कुमार हल्दर, साहित्य एवं शिक्षा।
0: श्री अशोक कुमार हल्दर इज ए नोटेड इंडियन राइटर एंड सोशल थिंकर फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन एडिशन टू बुक्स, श्री हल्दर हैज ऑथर्ड अप्रॉक्सिमेटली 3,000 आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। हिज फर्स्ट वॉक्ड अप टू द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड इज नाउ वॉकिंग स्लोली टू रिसीव हिज पद्मश्री अवार्ड।
2: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम में उनके द्वारा लेते हुए श्री अशोक कुमार हल्दर।

0: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, चिकित्सा हीमोफीलिया।
1: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी देवनगिरी KHS, इज अ डिस्टिंग्विश्ड मेडिकल प्रोफेशनल, विजनरी इंस्टीट्यूशन बिल्डर एंड अ टायरलेस एडवोकेट फॉर पर्सन्स विद हीमोफीलिया एंड रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन इंडिया। Himself being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over four decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation and dignity for thousands of affected hemophilia.
2: Mananiya Rashtrapati Dr. Suresh Hanagwadi ko Padma Shri se sammanit karte hain.
1: A proud moment for his family members who are all standing.
0: डॉक्टर चरण हेम्ब्रम, साहित्य एवं शिक्षा संथाली।
2: श्री चरण हेम्ब्रम एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने उड़ीसा में संथाली भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्य पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
1: श्री हेम्ब्रम प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर ASECA Rai Rangpur from 1992 to 2004.
0: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
2: डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर एक प्रख्यात वैज्ञानिक है जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
1: रिसीविंग द पद्मश्री डॉक्टर अयंगर मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशंस आर दृष्टि विजिबिलिटी मेजरिंग सिस्टम एंड एविएशन वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम व्हिच हैव एनहांस्ड द सेफ्टी ऑफ ऑल इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स As they are mandatory
0: श्री
1: equipments.
0: T.T. जगन्नाथन मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग उनके पुत्र श्री मुकुंद थट्टे।
2: श्री जगन्नाथन को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जब उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने किया था।
1: As chairman of the TTK group, Shri Jagannath built a reputation for quality, innovation and
0: संत निरंजन दास जी अध्यात्म।
2: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड पल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
1: Since August 9, 1994, संत निरंजन दास जी has been leading डेरा सचखंड बल्लान। His tenure has been marked by unparalleled contributions to social welfare. He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
0: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
2: IIT Madras, Chennai के निदेशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
1: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS by research scholars. He has published over 200 extensively cited papers in international
0: Professor Mangala Kapoor, साहित्य एवं शिक्षा शास्त्रीय संगीत।
2: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का। आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका संगीतज्ञ शिक्षाविद हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में PhD में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं।
1: प्रोफेसर कपूर हैज मेड

0: Significant contributions to Indian classical music through performance and research, she is the author of the 5 books on music, including her autobiography, Seerat.
1: Professor Mangala Kapoor, Mananiya Rashtrapati se Padma Shri grahan karte hain.
2: Dr. Ashok Khare, Vyapar evam Udyog.
1: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का. आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपत्यीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
0: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन 1975 मुंबई,
2: साहित्य एवं शिक्षा,
0: वेयर ही वर्क्ड इन स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल.
1: और अब अगला नाम खोकलोवा. डॉक्टर खोकलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं. वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनको उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं.
0: At present, Dr. Khokhilova is teaching different linguistic courses at Moscow
2: Dr.
0: State University,
2: Prabhakar,
0: which are very popular among students, Hindi
2: Kore,
0: at BA
2: Sahitya
0: and MA in Punjabi.
1: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं. डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है.
0: Among his most significant achievements is the establishment and development of 2 universities, KLE Academy in Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
2: Shrimati Pakhila लेखथेपी कला करबी गीत.
1: श्रीमती पखीला लेखथेपी असम की करबी गीतों के प्रसिद्ध गायिका हैं. वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए. उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए.
0: श्रीमती लेखथेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन करबी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर करबी यूथ फेस्टिवल्स. शी गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हर ओन कंपोजिशन लिरिक सॉन्ग इन करबी यूथ फेस्टिवल इन 1976. अटायर्ड इन अ ट्रेडिशनल
1: पारंपरिक परिधान में, असम के परिधान में, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए.
2: श्री रामा रेड्डी मामिदी मरणोपरांत सहकारिता, उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी.
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे. आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे.
0: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. Shri Mamidi passed away on 26th October 2025. And the award is
2: Shri
0: received by her Ra his wife.
2: Vesu Mani, Civil Seva.
1: Shri RVS Mani, एक सुपर परिचित सिविल सेवक हैं. श्री मणि ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी. अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा. श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया.
0: श्री मणि has written 5 books of national importance and has worked as a sincere government servant in an apolitical manner. Credits were given to him for handling several sensitive cases without falling prey to any vested interest.
2: श्रीमती कला मंडलम विमला मेनन
1: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो इसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है.
0: श्रीमती मेनन फ्रॉम द यंग एज रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ आर्ट एज ए नेशंस वाइटल सॉफ्ट पावर एंड डेवलप्ड हर जर्नी टू यूजिंग क्लासिकल डांस एज ए मीडियम फॉर पीस, यूनिटी, इंक्लूजन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट.

0: श्री व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।
1: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा।
2: He is remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medalists.
0: श्री मागंटी मुरली मोहन, कला फिल्म अभिनय।
1: श्री मुरली मोहन एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी अपने कार्य किया।
2: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed golden jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
0: श्री मोहन नागर, समाज सेवा।
1: मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
2: श्री नागर हैज हैड लेड सेवरल लैंडमार्क कैंपेन्स। इन 2006 ही अंडरटूक ए पदयात्रा टू एडवांस एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Mathura river catchment area. Dr. Punyamurti
0: Nateshan, Pashu Chikitsa.
1: Dr. Punyamurti Nateshan, a pratishthit Pashu Aushad Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
2: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Nateshan has served as a trainer and consultant to organizations such as Department of Animal Husbandry and Dairying.
0: Kala Ikat Bunai.
1: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हरकरकार शिल्पकार हैं, जो इकत बुताई बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वर्ष एक उल्लेखनीय कृति है।
2: श्री पात्र कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क। ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज। His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman who is widely known for his contribution in ikat weaving.
0: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
1: श्री श्रीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत, नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
2: Born on 7th July 1927, श्री पात्रा hails from a poor rural family. And as per family tradition and culture, he is inclined to Vaishnavism. श्री पात्रा from the age of 7 learnt sakhi nata, said to be precursor of classical odissi dance where male boys act as female sakhi, from guru shri narsingh pradhan.
0: guru sangyu sang ponganar kala lok kala.
1: गुरु पोंगनर नागा वादिर वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य, संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो, क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश।

0: पारंपरिक परिधान है और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप व्यापक प्रसिद्धि मिली है।
1: गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, कला अभिनय।
2: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर। For over four decades, starting with his debut in 1977, Shri Gadde Babu graced more than 286 films across six languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages and comedy that hit home, blended with skills like mind mimicry.
0: नितेश वो सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए और पर्दे के पीछे नम्र मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
1: सुश्री सविता पूनिया, खेल हॉकी।
2: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
0: बिल्कुल भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया।
1: श्री कबीन्द्र पुरकायस्त मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्त।
0: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्त, जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था। आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे।
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्त breathed his last on 7th January 2026 and his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
1: Shri Bhagwan Das Raikwar, Marnoparant, Khel, Bundeli Martial Art, Unki Putra, Shri Rajkumar Raikwar.
0: Agla Puraskar Bhe Marnoparant, Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai, jo unke पुत्र माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। श्री भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।
2: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस।
1: प्रोफेसर के रामस्वामी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: प्रोफेसर के रामस्वामी करपगम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है, के कुलपति कुल अधिपति चांसलर हैं। वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण, भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं।
2: As a member of planning commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture through
1: Shri Madhavan Ranganathan, Kala Abhinay.
0: और अब नाम पता लग गया श्री माधवन रंगनाथन का और आप सुन पाएंगे श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट आप तक भी पहुंच रही होगी। और माधवन सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नमस्कार की मुद्रा में और अब माननीय राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए। माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रहे हैं। उनको मैडी के नाम से जाना जाता है, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
1: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री, कला कर्नाटक संगीत।
2: श्रीमती रंजनी एंड श्रीमती गायत्री आर एमिनेंट कर्नाटक म्यूजिशियंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज अ परफॉर्मिंग ड्यूओ फॉर नियरली फोर डेकेड्स।
0: श्रीमती रंजनी और श्रीमती गायत्री को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलाईनमा मणि पुरस्कार, समागान मंथरा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं। प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग 4 दशकों
1: श्रीमती गायत्री
0: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में।
2: Shrimati Gayatri along with Shrimati Ranjani have received numerous honors in recognition of their contribution to Indian classical music, including the Kalai Mamami Award from the government of Tamil Nadu.

0: डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, कला नाट्य कला।
1: डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी एक कलाकार, एक वैज्ञानिक और एक परोपकारी का अनूठा मिश्रण है। डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएचडी की।
2: डॉक्टर रस्तोगी हैज बीन वर्किंग इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 64 इयर्स, हैविंग स्टेज्ड अराउंड 1000 शोज ऑफ 100 प्लेज ऑल ओवर द कंट्री। He staged his 100th play Beyond the Curtain in December 2025.
0: Professor Dr. Mahendra Nath Roy, Vigyan Evam Engineering.
1: Professor Dr. Mahendra Nath Roy, Rasayan Vigyan ke Professor, Uttar Bengal Vishwavidyalay mein Vigyan aur Kala Sankayo mein Purv Dean aur Alipur Dwar Vishwavidyalay ke Sansthapak Kulpati hain.
2: Beyond academia, he is recognized as a social worker, particularly for the efforts in uplifting the common people. He has donated on several organizations and schools on behalf of his parents for the development of the society.

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनिया।
1: श्री सतीश शाह उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Enoch Blaylock Endowed Professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: प्रोफेसर शर्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपी और जीआई कैंसर क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैस्ट्रोएंट्रोलाइटल रोगों के और कैंसर के गुरुनाथ शर्मा के लिए अपना
0: खेल क्रिकेट
2: द मैन इन ब्लू एंड आल्सो इन व्हाइट्स व्हेन ही प्लेज टेस्ट क्रिकेट टुडे कैन बी सीन वेयरिंग ए फॉर्मल ब्लैक बंद गला टू पीस सूट वॉकिंग अप टू द प्रेसिडेंट टू रिसीव पद्मश्री A master stroke.
1: बिल्कुल। और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए ऋषि शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है।
2: As captain of the international team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू। अब पंजाब पुलिस से उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें व्यापक रूप से झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है।
2: बॉर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गग्गरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब, श्री सिद्धू स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड। He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service, IPS.

0: The election as a member of the Bloc Panchayat Biladi in 1995 and again in 2020.
1: श्री रघुपत सिंह जी की धर्मपत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हैं।
2: श्री खेमराज सुंदरियाल कला हथकरघा बुनाई
1: उत्तराखंड के सुमरी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरियाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया। खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
0: श्री सुंदरियाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज गरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स। Also in 1980, he introduced polyester yarn in hand loom under Petrofil project.
2: Dr. Budhri Tati, Samaj Seva.
1: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉक्टर पुथरी ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है।
0: डॉक्टर बुधरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू by building the Hiranar Women's Upliftment Center. They are working to empower women with self-reliance.
2: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
1: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे। यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है।
0: डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज इज द CSIR भटनगर फेलो एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद।
2: मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनकी पत्नी श्रीमती हीरामणि टूडू।
1: श्री रबीलाल टूडू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपका निधन 4 जून 2026 को हो गया। आप वर्धमान पश्चिम बंगाल से संथाली साहित्य के लेखक थे जिन्होंने संथाली नाटक और भाषा संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए
0: Shri Tudu was awarded with Sahitya Academy Award in 2015 for his play Parsi Khate in the Santhali language category. In addition to his national recognition, he received the Banga Bhushan Award from the Government of West Bengal in 2022, honoring his significant contribution to Santhali literature and culture.
2: Shri Naresh Chandra Dev Verma साहित्य एवं शिक्षा
1: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का। आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य भाषा संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है।
0: एट प्रेजेंट श्री वर्मा सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द Kokoborok Sahitya Parishad, a leading literary organization dedicated to the promotion and development of the Tripuri language.
2: Shri Shashi Shekhar Vempati, Sahitya Evam Shiksha.
1: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है।
0: एज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017 टू 2022 श्री वेम्पटी रोज टू द चैलेंज बाय लॉन्चिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स।
2: पीतल शिल्प

0: श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उत्कीर्णक हैं। आपने विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2010 में ढाका बांग्लादेश गए और 2015 में उन्होंने भारत सरकार के हस्तशिल्प निर्यात वर्धन परिषद के माध्यम से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
1: श्री यादव सर्वड एज मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 1980 टू 1982। ही हैज टॉट ब्रास एनग्रेविंग टू 30 चिल्ड्रन इन पूरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ही आल्सो ट्रेन्ड 10 चिल्ड्रन इन कार्विंग वर्क इन मुरादाबाद इन 2011 थ्रू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का

0: अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज़्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 आप सुनेंगे राज्यस्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह हमारा सजीव कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरेंद्र सिंह और रूप किशोर शर्मा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा एकीकृत खेती एवं मछली पालन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। श्रोताओं, यदि आप भी एकीकृत खेती और मछली पालन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नित्यानंद पांडे से फोन करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25:30-135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565-25:30-135। समय याद रखिएगा संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति परक गैर व फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रजलोक कथा, भक्त राम नारायण, कथाकार होंगी गौरी अग्रवाल।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक।

देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम सुना जा सकता है रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी स्त्री। रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे बाला साहब पूछ वाले का ख्याल गायन राग धानी और राव काफी में। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे अब्दुल सलाम और सारंगी पर होंगे हरिबाबू कौशिक। रात 11:00 होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को वीरेंद्र सिंह और
4: रूप किशोर की राम राम।
3: राम राम भैया। तो रूप किशोर भैया देखो आज को तो मौसम कछु ना थोड़ो सो तापमान कम है गो। अब कछु किसान भैया ने राहत है योगी आजकल तुम जानो खेती क्यारी में काम चल रहा है जुताई को खरीफ की फसल की तैयारी चल रही है।
4: धान की फसल की तैयारी चल रही है।
3: हाँ।
4: क्योंकि भैया धान की फसल खरीफ में अच्छी होए।
3: बिल्कुल।
4: और खरीफ की फसल के काजें और धान की फसल के काजें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए,
3: अधिक चाहिए।
4: लेकिन पानी की मात्रा के संग संग हम बा पानी ते धान की फसल ती नहीं कछु और काम कर सके।
3: बिल्कुल सही कही आप। जो है मैं समझ रहा हूँ सारो आप का कहना चाह रहे हो। देखो फसल बचाओ अभियान के अंतर्गत हमारी सरकार ने जी योजना चला रखी है भैया कि हमारी खेती बचे, हमारी फसल अच्छी उन्नत हो, पैदावार हो अच्छी। और देखो खाली हम गेहूं धान चना जो मक्का बाजरा यही नहीं और एकीकृत खेती कर सके।
4: कहवे को मतलब आपको जी है कि खेती के संग संग हमारे कछु और रोजगार ऐसे हों कि जाते हमें मुनाफो मिलतो रे, आमदनी हमारी होती रे।
3: अब देखो जैसे कि हमने आपको एक चीज बताई एकीकृत खेती, या के बारे में हमारे संग डॉक्टर साहब बैठे वो और ज्यादा जानकारी देंगे, पर पहले हम थोड़ी सी चर्चा जी कर लें कि भाई एकीकृत खेती को मतलब किसान भैया हम अपनी खेती में न सिर्फ फसल लेके संग संग पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और बागवानी जैसी फसल लेके क्यों अपनी आय को दुगनी चौगुनी कर सकें।

0: कहिए को मतलब आपको जी है कि खेती के संग संग दूसरे रोजगार करवो
1: जरूरी
0: जरूरी
1: है। तो आज आप जानो को देखो हेलो किसान वाणी हमारा जो कार्यक्रम रे फोन इन, तो या में आज हमारे संग आए हैं डॉक्टर नित्यानंद पांडे जो डीन हैं फिशरीज कॉलेज वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा से।
0: और हम अपने भैया को बता दें हमारा जो फोन नंबर है 0565 एसटीडी कोड है और 2530135 फोन नंबर है।
1: बिल्कुल जा भैया आपको अपनी जा एकीकृत खेती से संबंधित मछली पालन से संबंधित या फिर औरू को या के संग जैसे मुर्गी पालन हो तुम्हारो बागवानी हो या तो संबंध की कोई बात पूछनी हो और तुम चाह रहे हो कि भाई हम अपनी मछली पालन खेती में कैसे करें, तो डॉक्टर साहब हमारे बहुत विशेषज्ञ हैं अच्छे माने हुए जाने हुए। डॉक्टर साहब राम राम साहब।
2: राम राम और सभी हमारे किसान भाइयों को भी मेरा राम राम
1: जी।
2: जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया कि मेरा नाम नित्यानंद पांडे है
1: जी
2: और मैं हमारी जो मथुरा स्थित वेटनरी यूनिवर्सिटी है
1: जी जी
2: उसमें मत्स्य पालन महाविद्यालय है, मैं उस महाविद्यालय में अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हूँ और इस महाविद्यालय में मछली पालन से संबंधित जो भी वैज्ञानिक हमारी गतिविधियाँ हैं वो हमारे की किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से लाभ दे सकते हैं।
1: जी जी जी।
2: और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में हम अपनी जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको टिकाऊ कैसे बनाएं,
1: बिल्कुल सही कही आप।
2: पहली बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि हम अपने किसान भाइयों की किस तरह से आमदनी बढ़ाएं। तो इसके लिए जो एक एकीकृत हमारी कृषि प्रणाली है
1: जी जी
2: ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब यही पे ना एक थोड़ा सा प्रकाश डाल दो कि अगर हमारो भैया जी जानना चाहे कि एकीकृत खेती का है तो वो कैसे समझे कि एकीकृत खेती।
2: देखो हमारे जो किसान भाई हैं पहले तो बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, खेती होती थी, अब हमारे खेत भी जो है कम आकार के रह गए हैं। अब यह है खेती बाड़ी का आकार कम है, खेत हमारे छोटे छोटे हैं। अब इन खेतों में हम कई जो हमारी खेती बाड़ी की चीजें हैं जैसे कि फसल उत्पादन करते हैं, हम सब्जी उत्पादन भी करते हैं
1: जी जी।
2: और कुछ हमारे किसान भाई तो बहुत बढ़िया पुष्प उत्पादन कर रहे हैं।
1: हाँ बागवानी लगा
2: और
1: रहे।
2: कुछ हमारे जो किसान भाई हैं वो मुर्गी पालन करते हैं,
1: मुर्गी पालन
2: तो मुर्गी पालन में मुर्गी पाल के उन्हें बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं
1: जी जी।
2: और इसके साथ हम कुछ कुछ किसान भाई बत्तख भी पाल रहे हैं।
1: हाँ बत्तख पाल
2: तो ये और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि गाय भैंस जो पालन है वो हमारी किसानी से जुड़ा हुआ है। तो हर किसान के पास भैंस भी है और गाय भी है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये जितनी भी किसानी से संबंधित चीजें हैं इनको अगर हमारे किसान भाई सुविधा के अनुसार एक साथ करें तो वही एक वही हमारी
1: एकीकृत खेती।
2: हाँ खेती है।
1: तो डॉक्टर साहब फोन लाइन हमारी खुल चुकी है, एक भैया हमारे लाइन पे पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो किसान वाणी। हाँ थोड़ा आप पास से बोलो, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हेलो हेलो
3: हेलो।
1: हाँ जी राम राम साहब कहाँ से बोल रहे हैं।
3: राम राम साहब गांव में डोली है।
1: हाँ क्या पूछना चाह रहे हो, मछली पालन के संबंध कुछ पूछना चाह रहे हो।
3: हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, हमारी दो गाय हैं, गाय में से कलीली काफी।
1: हाँ वो तो एक आपको विषय अलग रहो, आज आप जी पूछो कि भाई हम फसल के संग संग जो है औरू कौन सी फसल कर सकें या मुर्गी पालन कर सकें, मछली पालन कर सकें, या तो संबंध को आज बात पूछो। आज पशुन के रोगन से संबंधित को विषय ना है, आज वो है मछली पालन के संबंध को।
3: अच्छा पशुन के डॉक्टर नहीं बैठे हैं।
1: हाँ पशुन के डॉक्टर ना है, जो जो अन्य जो खेती के साथ साथ जो करते हैं ना पालन, मछली पालन मुर्गी पालन, इनके संबंध के आज डॉक्टर साहब है हमारे संग। तो डॉक्टर साहब जैसे कि थोड़ा सा विषय से हटके पूछ रहे जे, पर हम अपनी बात को अगर जारी रखेंगे, पर एक भैया ऑनलाइन पे पहले उनसे बात कर लें। हेलो किसान वाणी।
3: हेलो।
1: हाँ राम राम जी कहाँ से बोल रहे हैं।
3: राम राम साहब सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मछली पालन करना चाहूँ तो इसमें कैसे हमको जानकारी मिलेगी।
1: हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सुनो ध्यान पूर्वक डॉक्टर।
2: हाँ राम राम जी।

0: देखिए,
1: जानता
0: बड़ी अच्छी बात है कि मछली पालन की आपकी रुचि है। देखिए, मछली पालन बड़ी आसान चीज़ है,
1: जी।
0: और इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा पानी कहाँ पर मतलब उपलब्ध है, और कितना पानी हमारा उपलब्ध है। क्या
1: बिल्कुल।
0: पहले से तालाब बना हुआ है, या हमें तालाब बनाना है, या हमें तालाब भरने के लिए जमीन से पानी निकालना है, या तालाब में पहले से ही पानी है।
1: है
0: तो अब पानी को हमें पता चल गई कि कितना पानी है,
1: जी।
0: और दूसरी बात कि किस तरह को पानी है। अगर हमारा पानी कम खारा है,
1: हाँ
0: तो हम कम खारे पानी वाली मछली उसमें पालेंगे। और अगर हमारा पानी थोड़ा सा खारा है या
1: हाँ
0: और ज़्यादा खारा है,
1: जी।
0: तो कम खारे वाली मछली पालेंगे या ज़्यादा खारे वाली पालेंगे। तो
1: बिल्कुल।
0: सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे तालाब में पानी का स्रोत क्या है
1: क्या है?
0: और पानी किस तरह का है। अगर हमारा पानी मीठा है, हल्का हल्का खारा है,
1: जी
0: तो उसमें हम रोहू, कतला, मृगल, ये
1: अच्छा।
0: तीन मछली हम पालेंगे। और एक एकड़ का अगर हमारा तालाब हो, तो 20 से 25 कुंतल मछली हमारी 12 महीना में पैदा हो जाएगी,
1: अच्छा।
0: और उसमें 2 से 3 लाख रुपया हम जो है अपनी आमदनी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, या के काज फिर तालाब हम भाई छोटे थे बड़ो बड़ो या फिर एक जैसी तालाब के बनावे, कैसे कैसे बनावे भाई? किसान भैया पूछना चाह रहे हैं।
0: देखो, ऐसा है कि जितनी जमीन हमारी उपलब्ध है, उस हिसाब से तालाब बना लें।
1: जी
0: अब बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो,
1: अच्छा।
0: कि जैसे कि एक एकड़ होता है,
1: हाँ
0: एक एकड़ का 1/4 भाग,
1: अच्छा
0: तो चौथाई एकड़ का तो तालाब हो।
1: जी।
0: बहुत ज़्यादा छोटा तालाब होगा तो उसका पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और
1: हाँ
0: बहुत जल्दी पानी ख़त्म भी हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो कम से कम चौथाई एकड़ हो, और
1: हाँ
0: वैसे अगर एक एकड़ को तालाब हो तो बहुत बढ़िया है,
1: अच्छा।
0: और उसमें जाल भी अच्छी तरह से चलेगा और मछली की बढ़वार भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल। अच्छा, एक भैया लाइन पे, वो अपना अलग कोई पूछना चाह रहे हैं प्रश्न। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो सर, नमस्ते
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर। हमारा ये क्वेश्चन ये है कि
1: हाँ
2: मछली का आहार कैसे बनाएं।
1: अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब बता रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: आपने राम राम जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मछली को बढ़ने के लिए आहार की तो ज़रूरत है ही है।
1: बिल्कुल है।
0: अब आहार में ऐसा होता है कि सरसों की खली होती है, और भूसी होती है, ये चावल की भूसी, जिसको कि राइस पॉलिश भी बोलते हैं।
1: जी।
0: अब इसको बराबर बराबर मात्रा में मिला के, और उसको शाम को भिगा दें पानी डाल के,
1: अच्छा।
0: और सुबह को उसके लड्डू बना के और मछली को जो है खिला दें।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अब जो है इसकी ज़रूरत ही ना है। मार्केट में, बाजार में बना बना मछली का आहार मिलता है,
1: रेडीमेड।
0: हाँ, रेडीमेड।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि हमारे जो गाय भैंस को आहार है,
1: हाँ
0: उसी तरह से पैलेटेड फीड खूब मिलता है।
1: जी।
0: अब उसकी बोरी खरीद लाएं, और हम जो है जितनी मछली तालाब में है, अगर 1 कुंतल मछली है तो 2 किलो रोजाना,
1: डालते रहे।
0: और 2 कुंतल मछली अगर हमारी तालाब में है तो उसमें 4 किलो रोजाना। इस
1: अच्छा
0: तरह से 2% के हिसाब से हम उनको दाना
1: अच्छा
0: दें, तो इस तरह से आहार की व्यवस्था आराम से हो जाती है। और बाजार में अगर वो ना मिले पैलेटेड फीड, जो मछली का आहार है, तो
1: जी
0: घर में बना लो, सरसों
1: अच्छा।
0: की खली ले लो, और जो है ये राइस राइस पॉलिश ले लो, आधी आधी मात्रा में मिलाओ। 2 किलो बनानी है तो 1-1 किलो ले लो, और
1: अच्छा।
0: उसको शाम को जो है पानी डाल के भिगा दो, और सुबह को थोड़ा सूखो डाल के लड्डू बना के,
1: अच्छा।
0: और एक मिट्टी के बर्तन में रख के, और उसको जो है तालाब में मछलियों को खाने को रख दो।
1: बिल्कुल। अच्छा, एक भैया लाइन पे जरा पूछें। हेलो किसान माणी।
2: हेलो,
1: हाँ, राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: राम राम जी। मैं बोल रहा हूँ गोवर्धन चौराया
1: अच्छा,
2: से। जी
1: मथुरा से ही?
2: जी जी मथुरा से हूँ।
1: हाँ, पूछ रहा, पूछो, आपको कहाँ सवाल हो?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मैं मछली पालन से संबंधित ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो
0: हाँ जी, हाँ
2: ये
0: जी।
2: लोन किस प्रकार से किसान भाई ले सकते हैं, उसके
0: हाँ
2: ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालो।
0: हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मछली पालन के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम बना रखी हैं, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हमारे किसान उसका फायदा ले सकते हैं।
1: जी।
0: अब हमारे जनपद में एक मछली विभाग है, उसके अधिकारी

0: यहाँ पे सहायक निदेशक मत्स्य वो बड़े अधिकारी हैं और दो तीन इंस्पेक्टर हैं,
1: जी
0: तो कई सारी स्कीमें हैं और उसमें सब्सिडी भी है। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना पड़ेगा कि मछली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको चाहे फोन पे संपर्क कर लो या उनका यहाँ पे मथुरा में ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ जाके उनसे जो है
1: सीधे मिल लो।
0: सीधे मिल लो। और इसके अलावा ये है कि हमारे जनपद में मथुरा में कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत बढ़िया मछली पालन कर रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे आपसे, हमारे जो किसान बंधु जिन्होंने प्रश्न किया है,
1: जी
0: कि उनके यहाँ जाके थोड़ा एक बार देख लें कि किस तरह से कितना उत्पादन ले रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, और फिर जो विभाग वाले हमारे अधिकारी हैं और जो इंस्पेक्टर हैं उनसे संपर्क करके और अपना फॉर्म भर के और स्कीम का फायदा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक भैया लाइन पे तो लगता है फोन कट गया है। तो डॉक्टर साहब जी, बहुत अच्छी अच्छी आपने बात बताई। हमारे भैया पूछ रहे कि भाई अगर लोन, अगर सरकार की कोई सहायता अगर मिल जाए तो वह में कहा है किसान को जो लाभ है जाए, और वह अपनी पूंजी न लगा के कुछ सरकार की सहायता मिल जाए,
0: हाँ बिल्कुल,
1: है कि नहीं। अच्छा, तो जैसे पीछे हम एक चर्चा कर रहे, अच्छा पहले एक भैया की ले लें। हेलो हेलो, किसान वाणी।
2: हेलो नमस्कार साहब।
1: नमस्कार जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं।
2: बाबू जी, ये मैं नार सिंह बोल रहा हूँ साहब।
1: हाँ बोलो सर।
2: ये पसून वाले डॉक्टर साहब से बात हो सकती है?
1: नहीं, आज जो है मछली पालन, मुर्गी पालन ऐसे संबंधित किए गए हैं आज डॉक्टर साहब। पूछो आप कुछ भी इस मछली पालन से, या मुर्गी पालन से, या पशु पालन में कोई हो जैसे कि, या फिर बागवानी से संबंध को, एकीकृत खेती के बारे में आज पूछना चाह रहे हैं। तो लगता है संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी चर्चा चल रही कि भाई हमने जो है तालाब बना लो, उसमें जल भर लिया, उसका जो है आहार तैयार कर लिया। अब एक हमारे किसानों की जिज्ञासा रहती है कि भाई मछली कितनी बड़ी है जाए, उसको कितनों बड़ो आकार है जाए, तब वो बाजार में ले जाए के काजे तैयार है जाए।
0: हाँ सही प्रश्न किया आपने।
1: जी
0: देखिए ऐसा होता है कि मछली का जो हम बीज तालाब में डालते हैं,
1: जी
0: जिसको कहते हैं कि मछली को बीज हमने संचयन कर दिया, बीज डाल दिया, हमें बड़े आकार का बीज ही डालना है तालाब में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: अक्सर हम क्या करते हैं, यहाँ गलती कर जाते हैं कि कम आकार का अगर बीज डालेंगे तो उस बढ़ने में टाइम ज़्यादा लेगा।
1: हाँ
0: और तो मछली के बीज को बोला जाता है अंगुलिका।
1: अच्छा,
0: अब अंगुलिका का मतलब है कि जितनी लंबी हमारी उंगली
1: अंगुली के बराबर
0: उतनी
1: होनी
0: कम से कम लंबाई उस बीज की हो।
1: चाहिए।
0: अब अंगुलिकाएं अगर हम डालें तो वो जो है 8 महीना 10 महीना में तैयार हो जाती है।
1: जी जी जी
0: और वो जो है अंगुलिका जिस समय डाली जाती है 40 ग्राम की 50 ग्राम की होती है,
1: अच्छा
0: और वो 10 महीने के अंदर 1 किलो के आकार की हो जाती
1: हो
0: है।
1: जाती
0: और उस 1 किलो जब वो हो जाती है
1: है।
0: तो हम अपना जाल चला के अपनी फसल निकाल लें और बाजार में बेच दें, या फिर हम जो है निकालने वाले को ठेका दे दें तालाब का, और जितना माल निकले उतना अपना पैसा आमदनी प्राप्त करें।
1: जी जी
0: एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा
1: जी
0: कि तालाब जो है खेती, एकीकृत जो हमारी कृषि प्रणाली है
1: जी
0: उसमें तालाब एक महत्वपूर्ण घटक है।
1: जी
0: वो कैसे है, एक छोटा सा तालाब है हमारे पास, तो उस तालाब के किनारे ही एक छोटा सा मुर्गी घर बना लें और उसमें देसी मुर्गी रख लें
1: जी
0: या वो हम ब्रॉयलर रख लें,
1: हाँ
0: तो उसमें जो मुर्गी की बीट वगैरह होती है
1: अच्छा
0: वो जो है तालाब में जाती है।
1: हाँ
0: अब उससे क्या होगा कि तालाब में उसकी उत्पादकता बढ़ती है
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: मछली को जो चारा है हमें, जो हमें भोजन देना है, वो हमें कम देना पड़ेगा।
1: अच्छा
0: यहाँ
1: अच्छा
0: तक कि हम आधी मात्रा में भी दें तब भी हमारी मछली बड़ी हो जाएगी,
1: जी जी जी जी
0: क्योंकि जो मुर्गी का बीट होती है वो जब तालाब में जाती है तो उससे मछली का प्राकृतिक भोजन तैयार होता
1: तैयार
0: है
1: हो
0: और
1: जाता है।
0: वो मछली खा लेती है। तो इस तरह से हमारी जो लागत है वो कम हुई। अब इसके अलावा हम बत्तख भी पाल सकते हैं, और
1: अच्छा
0: सबसे बड़ी बात है कि तालाब के किनारे हम इस तरह से सब्जी उत्पादन करें।
1: अच्छा
0: अब तालाब होता है, पानी होता है, आर्द्रता रहती है, तो सब्जी की बढ़वार भी अच्छी होती है। और उसके अलावा 2 साल में या सालाना जब तालाब सूख जाए तो तालाब की मिट्टी निकालें और वो हम अपनी जहाँ पे हम सब्जी उत्पादन कर रहे हैं या हम अपना जो है फूलों की खेती कर रहे हैं, तालाब के पास ही बंदों पे
1: जी
0: जो तालाब के बंदे होते हैं।

0: उस पे वो मिट्टी डाल लें और फिर उसमें तालाब में पानी भर दें,
1: जी
0: तो जो वो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छा खाद के रूप में काम करती
1: वो खुदाई से जो है तालाब की गहराई भी बढ़
0: है,
1: जाती है।
0: गहराई बढ़ जाती है।
1: जी
0: तो इस तरह
1: अच्छा
0: से तालाब होने से
1: जी
0: उसके साथ साथ हम कई काम कर सकते हैं। अब हमारे कुछ ऐसे किसान भाई हैं कि हम मछली नहीं पाल रहे, मत ठीक है मछली मत पालो, छोटा सा तालाब आप बना लो और उसमें मोती का उत्पादन करो।
1: बहुत बढ़िया बात बताई।
0: अब मोती का जो उत्पादन होता है उसमें छोटी छोटी सीपें होती हैं, अब वो सीपें जो है हम जो है थैलों में रख के और उस जो तालाब का पानी होता है उसमें लटका देते हैं।
1: अच्छा
0: अब वो सीपें जो पानी में काई होती है उसे खाती हैं और वो जो मोती होता है उसके अंदर बड़ा होता रहता है। अब 12 महीना में एक मोती मिल जाता है एक सीप से, तो
1: अच्छा
0: इस तरह से मोती की खेती भी हम कर सकते हैं।
1: हाँ डॉक्टर साहब। और फिर दूसरी बात ये कि कच्चू भैया अगर मामे सिंघाड़ा पैदा
0: आप
1: करना चाहें।
0: सिंघाड़ा सिंघाड़े सिंघाड़े का हम कर लें और सिंघाड़े के साथ कुछ मछली भी डाल लें, तो सिंघाड़ा भी हो रहा है और
1: अच्छा
0: नीचे मछली भी हो रही है।
1: एक भैया लाइन पे हैं, वो अपनी बात पूछना चाह रहे हैं। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो,
1: हाँ राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: वीरेंद्र भैया, राधे राधे
1: हाँ
2: जी।
1: राधे राधे भाई साहब, राधे राधे, स्वागत है कार्यक्रम में। तो
2: मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राना, सिहोरा से।
1: हाँ जी बिल्कुल पहचान गए, आप हमारे नियमित श्रोता हैं। तो आज
2: आदरणीय
1: रखे
2: डॉक्टर साहब, राम राम।
0: राम राम जी चौधरी साहब।
2: बाबूजी, मैं ये जानना चाहता हूँ अच्छे उत्पादन हेतु किन किन प्रजातियों का चयन किया जाए और
1: हाँ
2: ये बीज कहाँ से उपलब्ध होगा सर?
0: बिल्कुल सही चौधरी साहब, आपने सही प्रश्न पूछा है।
1: जी।
0: देखो मछली पालन में हमारी जो प्रजातियां हैं रोहू कतला मृगल है ना, और ये तो तीन हो गई हमारी मेन प्रजाति, और तीन प्रजाति और हैं सिल्वर कार, ग्रास कार और कामन कार। अब बात आई कि अच्छी प्रजातियां कौन सी हैं। अब हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं उन्होंने तीन नई वैरायटी डेवलप करी हैं, विकसित करी हैं,
1: जी
0: है ना। तो उसमें है जयंती रोहू, देखने में बड़ी सुंदर और इसकी जो बढ़वार है 20% ज़्यादा है, और एक है अमृत कतला और एक है अमूर कार।
1: जी
0: अब ये अमूर कार पे ऐसी मछली है कि थोड़ा सा हमारा पानी अगर खारू भी है तो उसमें भी अच्छी
1: सर
0: अच्छी जो है
1: हाँ
0: उसकी वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये तीन जो है वैरायटियां हैं बड़ी अच्छा उत्पादन देती हैं, लगभग 20% ज़्यादा उत्पादन है, और जब मछली निकलती है 12 महीने में 1 किलो का आकार की, इतनी सुंदर होती हैं कि बाजार में बड़े अच्छे दामों पे बिकती हैं। अब
1: जी
0: इनके बीज की बात है
1: जी
0: तो जो हमारा मछली विभाग है हमारे जनपद को, ये इन लोगों को बस बताने की देर होती है कि
1: अच्छा
0: हमें ये बीज चाहिए,
1: चाहिए।
0: ये बीज जो है आपके वहीं पे उपलब्ध करा देंगे,
1: बिल्कुल
0: और बड़ी आसानी से इन प्रजातियों का बीज उपलब्ध है।
1: जी।
0: तो अब पुरानी बात, वो तो पुरानी बात हो गई कि रोहू कतला मृगल पालें, अब तो बात यह है कि जयंती रोहू पालेंगे हम,
1: अच्छा
0: अमृत कतला पालेंगे और अमूर कार पालेंगे।
1: हाँ। तो एक भैया लाइन पे हैं, जरा उनकी बात सुने। हेलो किसान वाणी।
3: हेलो।
1: हाँ राम राम जी, शुभ नाम बताइए।
3: डॉक्टर राम
0: राम राम।
3: हाँ, मैं सतवीर बोल रहा हूँ जरीपुरा से।
0: हाँ सतवीर जी बोलो।
3: हाँ, मैं सर ये पूछना चाहता था कि जैसे किसी काम को करने के लिए एक चुनौतियाँ का भी सामना करना पड़ता है, तो वो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जैसे मछली पालन में जो सामने आ सकती हैं, और इनका जो सबसे अच्छा है कि बीज, अच्छा बीज हम कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें,
0: देखिए
3: और कुछ
0: आपके
3: सरकार का कुछ वो अनुदान भी मिलता है क्या इसमें?
0: हाँ जी, देखिए बहुत सारी स्कीमें हैं मछली पालन से जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे जनपद के जो मछली विभाग के अधिकारी हैं और जो हमारे इंस्पेक्टर हैं वो आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। आपने कहा चुनौतियाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे बड़ी चुनौती है पानी,
1: बिल्कुल
0: मछली जल की रानी है, पानी है तो मछली का उत्पादन है। अब पहले हमें ये देखना है कि पानी का हमारा स्रोत क्या है, पानी हम कहाँ से भरेंगे, अब कितना पानी हमें उपलब्ध हो जाएगा। तो पर्याप्त पानी हो, तालाब में कम से कम 3-4 फुट पानी बना रहे, ये तो पहली चुनौती है। और
1: जी
0: दूसरी चुनौती है कि पानी की किस्म क्या है, कितना मीठा है पानी और कितना खारा
1: खा
0: है।
1: रहा है
0: अब बहुत ज़्यादा खारा होएगा तो खारे वाली मछली पालें, उसमें
1: बिल्कुल
0: झींगा पालन यहाँ पे हमारे क्षेत्र में हो जाता है, झींगा पालन बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है उसमें भी झींगा पालन हो जाता है।
1: जी जी जी

0: और मार्केट में खूब ऊंचे दाम पे बिकता है। और अमूर कार्प मछली हमने बताई, वो जो है जो अगर मीडियम हमारा खारा पानी होगा वो उसमें भी हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: और मीठा पानी है तो जयंती रोहू और कतला हम करेंगे। और जो ये मछलियां हैं, जो प्रजातियां हैं, इनका बीज हमारा जो मत्स्य विभाग है ये बड़ी आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। और दूसरी बात है कि जो स्कीमें हैं उनका कैसे फायदा हम हमारे किसान भाई प्राप्त करें, उसके लिए कई सारे हमारे इंस्पेक्टर हैं जनपद में, और एक हमारे अधिकारी हैं सहायक निदेशक मत्स्य जो मथुरा में बैठते हैं, उनसे संपर्क करके। और बहुत सारी स्कीम है और उसमें सब्सिडी भी है, 40% तक की सब्सिडी है,
1: जी
0: 25% की सब्सिडी,
1: बिल्कुल
0: अलग अलग स्की अलग अलग जो स्कीम है उसमें अलग अलग, उनका हमें जो है फायदा मिल सकता है।
1: एक भैया लाइन पे यार पूछे कहाँ से हैं।
2: हेलो डॉक्टर,
1: हेलो किसान वाणी।
2: नमस्कार डॉक्टर,
0: हाँ नमस्कार नमस्कार,
2: मैं गोंडा ब्लॉक से बोल रहा हूँ।
0: हाँ, नमस्कार, बोलिए।
2: बतख के बारे में किसान को क्या लाभ मिलेगा
0: देखिए
2: बताने की कृपा करें।
0: देखिए,
2: बिल्कुल
0: ऐसा है, मछली पालन के साथ बत्तख पालन भी किया जाता है।
1: हाँ
0: अब हमारा अगर तालाब मछली पालन का है तो उसके ऊपर बत्तख घर ऐसे बनाते हैं कि आधा बत्तख घर हमारे जो तालाब की डॉल है उस पे, और आधा जो है पानी में लटका हुआ। तो बत्तख जो है तालाब में घूमती है, और बत्तख जब घूमती है तो तालाब हिलता है, ऑक्सीजन भी बढ़ती है, और बत्तख का जितना भी बिष्ठा होती है वो खाद के रूप में मछलियों की बढ़वार करती है। तो हमारा जो मत्स्य विभाग है, मत्स्य विभाग इस बत्तख मछली बत्तख के साथ मछली पालन इसके लिए लोन भी उपलब्ध रहता है, और वो स्कीम है उसमें सब्सिडी भी मिलती है। उसके लिए हमें जो है संपर्क करना पड़ेगा अपने मछली विभाग से।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जैसे कि एक किसान की जिज्ञासा फिर यूँ होगी कि अगर बत्तख तालाब में डूलेगी तो फिर वो मछली नहीं बीन लेगी, ऐसा ना है वो का।
0: देखिए ऐसा है, जो बत्तख होती है वो छोटी मछली को ही खा सकती है,
1: अच्छा।
0: बड़ी मछली को नहीं खाती। जब हम बत्तख पालन कर रहे हैं मछली के साथ, तो बत्तख को हम तब रखेंगे तालाब पे जब हमारी मछली उंगली से बड़ी हो जाए,
1: अच्छा,
0: कम से कम 80 ग्राम की मछली होगी, उसे बत्तख नहीं खाती है।
1: नहीं खाती है। एक भैया ऑनलाइन पे, हेलो किसान वाणी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कभी कभी हमारे किसान भैया पूछने लगते हैं कि भैया एक तालाब में हम तीन प्रकार की मछली पाल सकें का, जैसे कि एक ऊपर की लेयर पर, एक बीच की पर, एक सबसे नीचे, ऐसा कुछ है का?
0: देखिए जो मछली की वैज्ञानिक खेती है
1: जी
0: उसमें ऐसा ही होता है कि मछली के तालाब में हमारा पानी 3 फुट से ज़्यादा है, 4 फुट है, तो उसमें हम ये मान लें कि जैसे कि रेल के डिब्बे में जो है लेटने की बर्थें होती हैं,
1: अच्छा।
0: तो हम एक तालाब में 3 प्रजाति या 6 प्रजाति हम पाल
1: अच्छा,
0: सकते हैं।
1: छह तक पाल सके, भाई
0: हाँ, अब
1: वाह।
0: उसमें रोहू कतला मृगल हो गई, और सिल्वर कार्प ग्रास कार्प,
1: जी
0: और हमारी कॉमन कार्प। अब इसमें जो नीचे का स्तर है, नीचे के स्तर में 2 प्रजाति रहती हैं,
1: जी
0: वो मृगल हो गई और हमारी कॉमन कार्प हो गई। अब बीच का जो पानी है उसमें 2 प्रजाति हैं, रोहू हो गई
1: अच्छा।
0: और हमारी ग्रास कार्प हो गई, और जो पानी की सतह है उस पे हमारी कतला हो गई और सिल्वर कार्प हो गई। तो
1: अच्छा।
0: एक ही तालाब में जैसे रेल का डिब्बा होता है, इसी तरह से 6 प्रजाति रहती हैं, ना आपस में लड़ें और ना आपस में खाने का कोई प्रतिस्पर्धा।
1: क्या बात है। नहीं तो हम तो ये समझें कि मान लो ऊपर से जब चारों डाल हो जाएगा तो ऊपर वाली मछली खा लेती होंगी, फिर नीचे वाले को तो मिले ही कौन आए।
0: ऐसा नहीं है,
1: अच्छा
0: चारा खाने के लिए
1: जी
0: वो बारी बारी से ही आएंगी, और
1: हाँ
0: हम जो चारे की व्यवस्था करते हैं
1: जी
0: ऐसा करते हैं कि हम जगह जगह जो है चारा उनको उपलब्ध कराते हैं।
1: अच्छा
0: वो कुछ सतह पे करवाते हैं, कुछ बीच में करवाते हैं, और कुछ नीचे करवाते हैं। तो
1: अच्छा
0: अलग अलग स्तर की मछली अलग अलग चारा खाती है, उसमें
1: अच्छा
0: आपस में कोई लड़ाई झगड़ा या वो कुछ नहीं होता, और
1: जी
0: इससे हमारा उत्पादन 3 गुना तक हमारा उत्पादन बढ़
1: बढ़ जाता
0: जाता
1: है।
0: है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मान लो नीचे की तह वाली मछली बड़ी है गई
0: हाँ
1: और बीच वाली मछली अभी छोटी है, तो फिर यूँ सुनो करें कि बड़ी मछली छोटी खा जाए तो वो बड़ी वाली मछली नीचे वाली वो बीच की खा जाएंगी, ये सुना
0: देखिए,
1: है?
0: मछली 2 प्रकार की होती हैं,
1: जी
0: मांसाहारी और हमारी सामान्य मछली। ये जो
1: अच्छा
0: पाली जाने वाली मछली है ये आपस में खाती नहीं है।
1: अच्छा अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: हमने बताई छह प्रजाति,
1: हाँ
0: ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे को

0: खाने वाली नहीं है।
1: खाने वाली नहीं, मतलब जी खाली अपने चारे पे ही
0: अब
1: निर्भर करे।
0: बस चारा ही खाएंगी। अब
1: अच्छा
0: इनकी छोटी मछली भी अगर होएगी तो छोटी मछली को ये नहीं है कि ये खा जाए,
1: अच्छा
0: छोटी अलग अपना बर्बाद करेगी,
1: हाँ
0: बड़ी अलग बर्बाद करेगी।
1: अच्छा, मतलब कि पालन करने वाली मछली
0: हाँ
1: सिर्फ और सिर्फ अपने चारे ही खावेगी,
0: हाँ जी
1: और किसान के काजे वृद्धि करके आगे के काजे वो जो है बाजार में बेच भी खाए तैयार होगी।
0: हाँ जी
1: तो रूप किशोर भैया आ गए, कहाँ के नौचारे भैया, समय की कछु।
2: वीरेंद्र भैया, हमारे
1: हाँ
2: किसान भैयान की तो जिज्ञासा बरकरार बनी रहे। और देखो अब वो फोन आ रहे हैं,
1: हाँ बिल्कुल
2: लेकिन हम समय सीमा में बंधे हुए हैं,
1: हाँ
2: और हमारी जो घड़ी लगी हुई है हमारे स्टूडियो में,
1: हाँ
2: और जी हमें संकेत दे रही है कि अब हम अपने कार्यक्रम को कर दें
1: यही बात
2: विराम, और
1: तो लियो भैया,
2: सब भैयान को कर दें राम
1: राम
2: राम।
1: राम।
0: चलिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब ये सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: अखियों के झरोकों से इस फिल्म में भी आपने जसपाल सिंह और हेमलता को सुना। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में भक्त कथा, भक्त राम नारायण, कथाकार हैं गौरी अग्रवाल।
1: राम नारायण की जन्मभूमि वैसे तो पंजाब हती, परंतु वो बहुत ही पहले मोक्ष दायिनी भगवान शंकर की नगरी काशीपुर में आकर रहने लगो। बाकी संग पंजाब के औरव बहुत लोग आके रहवे लगे। राम नारायण भगवान शंकर को परम भक्त हतो। वो रोज सवेरे जल्दी उठ के गंगा नहातो और भगवान शंकर के दर्शन करतो। फिर घर पे जाके पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम को पाठ, महामृत्युंजय जप भक्ति पूर्वक करतो। दोपहर तक तो बाको पूजा पाठ ही निपटतो। बाकी घरवारी और बाको बेटा शंभुराज भी भगवान शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त हते। ओम नमः शिवाय का नाम तो उनके परिवार के मुंह पे ही रखो रहतो। आशुतोष भगवान शिव जी की कृपा ते बाको काम धंधो भी खूब बढ़िया चलवे लगो। वो थोड़े ही दिनन में खूब पैसा वालो है गयो। जब आदमी पे धन दौलत बढ़े तो अभिमान और स्वार्थ भी बढ़ जावे। पर जा भक्त के यहाँ पे शंकर जी की कृपा ते ऐसो नाय भयो। श्री राम नारायण पे जैसे जैसे धन बढ़ो, वामे त्याग विनय और नम्रता के संग संग वे धन का उपयोग दूसरे की सेवा में भी करवे लगो। जाते वाको नाम बड़ो प्रचलित है गयो। पंजाब ते जो लोग उनके संग आए उनमें एक को नाम लाला दयाली राम हतो। बू राम नारायण की उन्नति ते मन ही मन बड़ो जलतो। जे बात अलग है कि राम नारायण के मन में ऐसी कोई बात ना हती। राम नारायण को जा बात को बिल्कुल अंदाजो ना हतो। लाला दयाली राम की जलन राम नारायण के प्रति बढ़ती ही चली गई। अब तो वो खुल्लम खुल्ला राम नारायण को ललकारवे लगो। वो बाकी बेज्जती करवे को एक हो मौको अपने हाथ से जाने देवे। एक दिन राम नारायण जी गंगा में नहा के घर को जा रहे के रास्ता में अचानक दयाली राम बाकी सामने आ गयो और बाकी खूब बेज्जती करी और साथ ही दो जूते भी लगा दिए। इतने पर भी भक्त राम नारायण हंसते हुए वहां ते चल दिए। भक्त राम नारायण को लाला दयाली राम पे बड़ी दया आ रही हती। बाने मन ही मन सोचो कि मैं ऐसो का करूं के दयाली राम को बर्ताव मेरे प्रति बदल जावे। अब बाने मन ही मन दयाली राम को अपने प्रेम भरे व्यवहार से बदलने को निश्चय कर लियो। प्रेम प्रेम का और द्वेष द्वेष का जनक होवे। अब लाला दयाली राम राम नारायण से जो कछु भी कहतो राम नारायण जी बाको बड़े प्रेम से उत्तर देवे। धीरे धीरे लाला दयाली राम पे भक्त राम नारायण की बातन को असर हैवे लगो। अब लाला दयाली राम मन ही मन अपने किए पे पछतावे लगो। इधर भक्त राम नारायण को पूरी तरह विश्वास ना भयो कि दयाली राम को स्वभाव बदल गयो है। अतः भक्त राम नारायण दयाली राम को पूरी तरह से बदलवे को आतुर है गयो। अब बाने एक दिन रात को एकांत में बड़े करुण

है के भगवान आशुतोष से प्रार्थना करी, हे भगवान, मुझे अपने साथी दयाली राम के इस स्वभाव का बड़ा दुख है। आप तो अंतर्यामी हो, यदि मेरे मन में बाके लिए जरा सो भी बैर होए तो मोए कठिन ते कठिन दंड दे दो, मोए स्वीकार है। परंतु बाके मन में मेरे लिए प्रेम शांति पैदा कर दियो, यदि मेरे दुख ते वाय सुख मिले तो आप मोकू भरपूर दुख दे दियो। मेरा सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा सब कछु ले लियो, परंतु बाके मन में मेरे प्रति द्वेष को खत्म कर दियो। मैंने तो आपते कबहू नाय मांगो, फिर भी जो कछु आपने मोय दियो बाय में आपकी कृपा समझ के लोगन की भलाई में ही लगा रहे हूँ। परंतु मेरो ऐसो कहनो भी मेरो अभिमान ही है, मैं कौन हूँ कछु करवे वारो। भगवान सब कछु तो आप ही करा रहे हो, मो में ही कछु दोष छिपो भयो है। जाके कारण लाला दयाली राम के मन में मेरे नैया इतनी बैर भावना पल रही है और मेरे ही वजह ते बाको मन इतनो अशांत है। यद्यपि पाप मोय दीख ना रहे हो, परंतु अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ और वरदानी महादेव मो पे आपकी बड़ी कृपा है। जे बात मैं अच्छी तरह जानू, अब जैसो आपे उचित लगे वैसो ही करो। परंतु मेरो मन बार बार जई बात को सोच के दुख से भर रहे हो कि कैसे दयाली राम को समझाऊं कि बाके मन में मेरे नैया वैर भावना मिट जाए। जे बात कहते कहते भक्त राम नारायण को नींद आ गई। हृदय की सच्ची प्रार्थना तो भगवान जरूर सुने, अतः भगवान हाथ में डमरू और त्रिशूल लेके बड़े ही मनमोहक रूप में बाके सामने प्रकट है गए और बोले, भक्त मैं तेरी सच्ची प्रार्थना ते बड़ो ही प्रसन्न हूँ। भगवान के दर्शन करके राम नारायण को सबरो शरीर रोमांच ते भर गयो। भगवान बतावे लगे, यह दयाली राम पहले जन्म में एक पिशाच हतो, आगे के और पहले जन्म में जो दक्षिणापत में ब्राह्मण हतो और तू एक व्यापारी हतो, तेरी बुद्धि बा समय भी सही हती और जे ब्राह्मण है के इनके बावजूद भी मांस मदिरा को सेवन करतो और चोरी करके धन कमातो, वो बड़ो ही दुराचारी है गयो हतो। एक दिन बाने तेरे घर में चोरी करी, तब भी तेने बाकी संग बड़ो ऐ अच्छो व्यवहार करो और बाय जो चाहिए हो वो देके बाय मेरी भक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करवे को कहो, तेरी बातन को बापे बड़ो असर भयो और वो मेरी भक्ति करवे लगो। एक बार रामेश्वर जाके बाने मेरे ऊपर जल और बिल्व पत्र चढ़ाए, अपने इन्हीं पापन की वजह से वो दूसरी योनि में पिशाच भयो, परंतु तेरे संग और मेरी भक्ति की वजह से बाकू वो योनि 10 वर्ष में ही छूट गई और बाने पुने क्षत्रिय कुल में जन्म लियो। पिछले मानव शरीर में बाको जीवन द्वेष हिंसा क्रोध और भय की भावना से भरो भयो, निरीहों को सतानो भले करवे वाले इनके संग भी बुरो करवो बाको स्वभाव बन गयो। भई प्रवृत्ति की वजह ते बाने तोते जा जन्म में भी बैर पाल रखो है, परंतु तेरे हृदय में अब भी पहले जैसे ही निर्वैर तथा पवित्र प्रेम भरो भयो है। तेरी जई अच्छाई की वजह ते बाके बुरे व्यवहार को तोपे तो कोई असर ना भयो, परंतु बाको हृदय जरूर परिवर्तित है गयो। आज तेने बाके नैया जो प्रार्थना करी है बातें वो हमेशा के नैया पवित्र है गयो। तुझे धन्य है जो अपने प्रेम और सद्भावना ते बड़े बड़े असुरन को भी संत बना रहे हो है। मैं तो पे बहुत ही प्रसन्न हूँ, जे बात मैं भली भांति जानू कि धन दौलत में तेरी बिल्कुल भी रुचि ना है। जा नैया ही तू मेरे द्वारा दी गई संपत्ति को दूसरे की सेवा में लगा रहे हो है, हर कोई व्यक्ति मेरी सेवा नहीं कर सकतो। तू सुख शांति पूर्वक यहाँ का कर्तव्य पूरा करके मेरे दिव्य लोक को जाएगो, तू तो निश्चिंत है के मेरो भजन करतो रहे। भगवान शंकर जी जो ही इतनी बात कहके तर ध्यान भई कि राम नारायण की नींद टूट गई। बाने देखो दयाली राम बाके पैरन में पड़ो रो रहे हो है। राम नारायण ने भाई भगवान शंकर की कृपा समझ के सीने ते लगा लियो, दयाली राम बाके पैरन में ते उठवे को काई कीमत पे तैयार ना हो रहे हो, वे बार बार अपने किए पे पछता रहे हो और भक्त राम नारायण ते माफी मांग रहे हो, बाकू अपने किए पे बहुत ही पछताताप है रहे हो। भगवान शंकर जी की कृपा
और राम नारायण के प्रेम

0: भाव ने बाकी सब पापन को और पाप बीजन को नष्ट कर दियो। राम नारायण ने बाकू उठा के अपने गले ते लगा लियो और बाय बहुत ही अच्छी तरह से समझा बुझा के तथा बाय शंकर जी की भक्ति को उपदेश दे के विदा कर दियो। श्री दयाली राम को भी अपने पहले जन्म की याद आ गई। वो ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करवे लग गयो तथा भगवान शंकर जी की उपासना में लग गयो। भक्त राम नारायण के नैया अब बाको प्रेम अटूट है गयो। अब बाको बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान करवे लगो। दोनों साथी मिलके भगवान शंकर जी की सेवा में ही अपनो पूरो समय बितावे लगे।
1: अभी आपने जो ब्रज लोक कथा सुनी, भक्त राम नारायण, कथाकार ही गौरी अग्रवाल, और अब यही के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है।

हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस. हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ. शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान.

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन परिजनों को। तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
1: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ

0: जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
1: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
3: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
2: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
4: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों

0: पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक, अमरीश पुरी, अनुपमा देशपांडे और साथियों की आवाज़ों में हातिम ताई फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत हसन कमाल का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के हैं, संगीत निर्देशक हैं नदीम श्रवण।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में सुना। और आइए सुनते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर को, फिल्म है दीवाना, गीत समीर का, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण।

ये थे हिमेश रेशमिया, फिल्म थी रॉकी, गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे हिमेश रेशमिया। और अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म है प्यार दीवाना होता है, गीत मदन पाल का है, संगीत निर्देशक हैं बाबुल बोस।

لیلا مجنو، شیریں فرح، ہیر رانجھا،

नाम है मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर आरडी बर्मन और साथियों का था, संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

समवेत स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब

अभी आपने बादशाह, निकिता गांधी और साथियों को सुना, और आइए अब सुनते हैं इसी फिल्म में लियो जॉर्ज, दर्शन रावल और साथियों को।

इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म है स्त्री। और आइए सुनते हैं इसी फिल्म में मीका सिंह और साथियों की आवाज में गाया ये गीत।

आशिक किंग और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी स्त्री। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे सचिन जिगर।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री

0: मिश्रा भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा

0: साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कमाल खान की आवाज में डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत रजत अरोड़ा का था, संगीत निर्देशक थे विशाल और शेखर। और आइए सुनते हैं इरशाद कामिल की रचना, संगीत निर्देशक विशाल और शेखर, गायक स्वर दलेर मेहंदी, मोनाली ठाकुर, विशाल ददलानी और साथियों के हैं। फिल्म का नाम है रास्कल।

0: इंग्लिश बाबू देसी में। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की थी। गीत योगेश का था, संगीत निर्देशक थे निखिल बेने। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:30 होने को है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: मनी टॉक,
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द प्रोग्राम मनी टॉक, नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन की हाइलाइट्स एंड टेकअवेज फ्रॉम नीति आयोग्स ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। द पार्टिसिपेंट

0: सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम पोर्टल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद प्रियंका जी।
1: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
2: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केटप्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस रहा। DGSND एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
1: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
2: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
1: जी,
2: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
1: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जैम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जैम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
2: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जैम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहां पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहां पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, आपका GSTN है उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
1: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जैम की क्या भूमिका है और छोटे व्यवसाय, हम MSME की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
2: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है, वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को,

0: कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है।
1: जी, तो जो जेम है एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
0: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है। तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है।
1: जी।
0: एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण। उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही हैं। जो स्टार्टअप हैं, जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
1: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी ही किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
0: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली एमसीडी के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
0: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
0: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मिहिर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही, ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस, जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी है।

0: अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AIML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जेम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जेम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जेम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस इसको बढ़ाने में रहेगा।
1: बिल्कुल, और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जेम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है। और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जेम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: मंथन।

खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मनवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाली साइक्लिस्ट भारत भूषण शाह यानी

0: माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाले साइक्लिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी। जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
0: जी।
1: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए, ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना यही जरूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आप के अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके यानी कि 15-16 ईयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गर्ल्स हम ऐसा नहीं करते, फाइट जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए, और अपना आत्मरक्षा के लिए तो ये है ही अच्छी चीज।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
1: बिल्कुल।
0: और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग, तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
0: जी, तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता। तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं, या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीजें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
0: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो। आप अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
1: 5 साल
0: से जी। तो आप ही मान के जी, तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीजों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस चॉकलेट चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूंगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीजें उसमें आप उसको प्लस करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो

0: है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में क्या नहीं खाना है, तो ये चीज़ें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती हैं?
0: मैं हूँ क्योरगी, हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना वो दो इवेंट में डिवाइड हो चुका है,
1: जी
0: एक होता है
1: हाँ
0: क्योरगी एक होता है पुमसे, तो एक्चुअली मैंने ही क्योरगी ही खेला है तो मैं क्योरगी ही उनको खिलाती हूँ। क्योरगी मीन्स होता है फाइट,
1: जी
0: तो फाइट के लिए हमें ज़रूरी है किक और पंच का आना, तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट यानी कि स्पारिंग, तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें,
1: जी
0: ये चीजें बताई जाती
1: जी
0: है।
1: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है कुछ,
0: बिल्कुल
1: जिससे तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इस तरह
0: जी
1: की सुविधा यहाँ पर है?
0: जी जी टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं हमारे स्टेडियम में भी, एक साल में करीब दो या तीन टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और
1: जी
0: बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में,
0: जी
1: तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब
1: जी
0: जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है, उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
1: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल
0: जी
1: कंडीशनिंग कोचेस का भी है,
0: बिल्कुल,
1: सब एक ही कोच की
0: सब
1: जिम्मेदारी।
0: एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
1: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
0: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत उनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, हार जीत तो लगी रहती है कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए, और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है, तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को,
1: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे
0: नहीं
1: टूर्नामेंट
0: वेट
1: से,
0: एक दिन
1: तो
0: पहले हो
1: उसमें फिर
0: जाते हैं,
1: घबराने की कोई बात नहीं है।
0: नहीं
1: उसमें
0: नहीं
1: अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4, 5, 6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने की
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी
0: बिल्कुल,
1: भी।
0: ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन डी जो है इलेक्ट्रॉल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
1: टूर्नामेंट के दौरान जब
0: जी
1: आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
0: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का, कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल
0: तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया वेइंग से पहले की
1: जी
0: बात, अब आ जाती है फाइट से, तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं, जिस बच्ची की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीजें बोलते हैं, स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे,
1: जी
0: लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं रहती है, अभी जैसे हम
1: हाँ
0: गोलापार गए थे यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था, जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीजें। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीज़।

0: तो बहुत सी चीज़ों का हमें प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ जाती है।
1: जी, साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं। अब आप, मैं चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया।
0: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में। अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
1: जी,
0: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला, उसको सुनाई नहीं दिया, दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें, एटी राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना जरूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरी कर चुकी हूँ।
1: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी अरेना चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी?
0: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा।
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर है जो काफी सीनियर है, वो भूषान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो है आगे नाम रोशन करते रहे, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है। एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं तो खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है मैं कहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो अखिलेश, बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात याद है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल
1: रही
2: है, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफर आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है।

0: ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है। तो उसके लिए बस गेम के, अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्प्रेरी। पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो, अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो। आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको
1: जी
0: दोनों मैनेज करते हुए चलना है। तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे
1: जी
0: से बेस्ट देना है। तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स, उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी। और पर बस पैशन था अंदर, और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया। उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं। लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए, मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता। तो ये मैं जानना चाहूँगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस।
0: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैम्पियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए। तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप्स में, और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैम्पियन बना मैं उस टाइम पे। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया। और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का।
1: जी
0: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया की बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ।
0: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
1: वहाँ पर जब आपके कोचेज होते हैं तो एक, आप जब स्थानीय स्तर पे आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेज अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेज से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
0: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारे एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़े अलग कोचेज़ मिलते हैं, जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है। पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में।
1: जी इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, आप जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं कि
0: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती होती है।
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
0: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं।
1: जी
0: तो एक उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है, उनकी फैसिलिटीज़ क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है
1: जी
0: पर
1: मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका
0: चाइना।
1: चाइनीज
0: हाँ
1: था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
0: वही गेम पढ़ना था उसका, सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से

0: स्कोर निकालने का ट्राई किया, वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
1: तो ये ऐसे खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहां पर?
0: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत जरूरी है, कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
0: चाइनीज अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था,
1: अच्छा।
0: कोरिया से मैं हार गया था।
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहां लैग करें?
0: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था,
1: अच्छा।
0: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
1: टेक्निक वाइज
0: टेक्निक
1: आप
0: वाइज मैं कहूँगा
1: टैकल कर रहे थे
0: कि
1: मतलब उनको?
0: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल वो स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है?
0: अभी नेक्स्ट मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे, इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है इजीली। हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से।
1: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
0: फिलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तो अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पर कोच
0: मैं
1: किया है?
0: विक्रम भंडारी सर,
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की? उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफी डिफरेंट होती है, तो क्या चीजें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको, इतनी देर रेंज में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
0: स्टैमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टैमिना बिल्ड होता है।
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं,
2: जी
3: लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की, और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
2: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे, और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहाँ कहाँ तक की यात्राएं की हैं?
3: अनुभव तो साइकिल में, जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है,
2: जी
3: तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है, और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की

0: पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे।
1: जी
0: और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया, तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया, और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले। और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
1: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
0: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं। और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं।
1: जी
0: लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
1: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके। और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
2: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: DARPA.
1: Hail DARPA.
0: Hail DARPA.
2: राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति थी, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग धानी और राग काफी में ख्याल गायन। कलाकार हैं बाला साहब पूंछ वाले। तबले पर इनके साथ संगत की है अब्दुल सलाम ने और सारंगी पर हैं हरिबाबू कौशिक।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग कॉफी में ख्याल गायन, कलाकार थे बाबा साहब पूंछ वाले। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण

भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और

0: संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।